0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 122 से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घतमस, देवता हैं विश्वे देवा, छंद है त्रिष्टुप और विराग रूपा त्रिष्टुप।
1: प्रवह पांतम रघुमन्यवोंधो यज्ञम रुद्राय मीडहुषे भरध्वम दिवो अस्तोष्य सुरस्य वीरै ऋषुध्येव मरुतो रोदस्योः। हे अक्रोधी ऋत्विजो, आप हर्ष प्रदायक रुद्रदेव के निमित्त अन्न रूपी आहुति प्रदान करें। जिस प्रकार धनुर्धारी वाणों से शत्रु पक्ष का विनाश करते हैं, वैसे ही दिव्य लोक से आकर असुरता के संहारक दिव्य लोक और भूलोक के मध्य शूरवीरों के साथ वास करने वाले मरुद्गणों की हम प्रार्थना करते हैं। पत्नीव पूर्वहूतिम वावृधध्या उषा सानक्ता पुरुधा विदाने स्तरीर्नात्कम व्युतम वसाना सूर्यस्य श्रिया सुदृशी हिरण्यैहि। जिस प्रकार धर्मपत्नी अपने पति का सदैव सहयोग करती है, उसी प्रकार देवी उषा और रात्रि हमारी पूर्व प्रार्थनाओं को जानकर हमें प्रगति मार्ग पर अग्रसर करें। अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्यदेव के समान स्वर्णिम वस्त्रों से सुसज्जित सूर्यदेव की सुषमा से सुशोभित तथा दर्शन में अति रूपवती देवी उषा हमें समुन्नति के शिखर पर पहुंचाएं। ममत्तु नह परिजमा वसरहा ममत्तु वातो अपाम वृषणवान शिशीत मिंद्रा पर्वता युवम नस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः। तिमिरनाशक और दिन लाने वाले सर्वत्र विचरणशील सूर्यदेव हमें सभी सुखों को प्रदान करें। वायुदेव जल वृष्टि करके हमें आनंदित करें। इंद्रदेव और मेघ आप दोनों को एवं हमें परिष्कृत करें तथा सभी देवगण हमें ऐश्वर्यों से संपन्न बनाएं। उतत्या में यशसा श्वेतनायै व्यंता पांतौषिजो हुवध्यै प्रवो नपातमपाम कृणुध्वं प्रमातरा रास्पिनस्यायोः। उषिक पुत्र कक्षीवान द्वारा अपनी यशस्विता और तेजस्विता उपलब्ध करने हेतु सर्वत्र है। हे मनुष्यों, आप सत्कर्मों के संरक्षक अग्निदेव के निमित्त श्रेष्ठ प्रार्थना करें तथा स्तुति करने वालों के माता पिता के सदृश दयावा पृथ्वी की भी प्रार्थना करें। आवो रुवण्यु मौषिजो हुवध्यै घोषेव शंसमर्जुनस्य नंसे प्रवह पूषणे दावन आम अच्छा वोचेय वसुतातिमग्ने। हे देवो, जिस प्रकार घोषा नामक स्त्री ने रोग निवारण के निमित्त अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। उसी प्रकार उशिक पुत्र कक्षीवान अपने दुखों की निवृत्ति के लिए आपके आवाहन हेतु सस्वर स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। आपके साथ ही धनदाता पूषा देव की भी प्रार्थना करते हैं। अग्निदेव द्वारा प्रदत्त संपदाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। श्रुतम मे मित्रा वरुणा हवे मोत श्रुतम सदने विश्वतः सीम श्रोतु नः श्रोतु राति सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिंधुरद्भिः। हे मित्र और वरुणदेव, आप दोनों हमारा निवेदन सुने तथा यज्ञ मंडप में चारों ओर से उच्चारित प्रार्थना को भी सुने। सुविख्यात दानशील

वरुण मित्र रातिर्गवाम शता वृक्षयामेषु पज्रे श्रुतरथे प्रियरथे दधाना सद्यः पुष्टिम निरुंधानासो अगमन। हे वरुण

मुख्य गौवों रूपी धन को उपलब्ध करते हैं। आप दोनों उस विख्यात एवं अपने प्रिय रथ में बैठकर शीघ्र यहां आकर हमें पुष्ट करें।

रथिनो महियम सूरी, जो सामर्थ्यवान मनुष्य घोड़ों और रथों से सुसज्जित योद्धाओं को हमारे संरक्षणार्थ प्रेरित करते हैं, ऐसे महान वैभवशाली मनुष्यों का धन सभी जनों द्वारा सराहा जाता है। श्रेष्ठ शौर्यवान हम सभी मनुष्य एक साथ संगठित हों। जनो यो मित्रा वरुणा वभिद्रु गपो न वाम सुनोत्यक्षण याद्रुक स्वयं स यक्ष्मम हृदये निधत्त आप यदीम होत्राभिर रितावा। हे मित्र और वरुण देवो, जो मनुष्य आपसे निष्कारण द्वेष करते हैं, जो सोमरस निष्पादित करने से वंचित हैं तथा यज्ञी भावना से रहित हो कुमार्ग पर चलते हैं, वे अनेक प्रकार के मानसिक और हृदय संबंधी रोगों

मुक्त करते हैं। सव्राधतो नहुषो दंसु ज्योतिर्याति बाढ़ श्रुत्वा विश्वासु पृथ्वीसु सदमिच्छुरः। हे देवो, यजन करने वाले साधक अश्वों से युक्त होकर शत्रुओं के भयंकर विनाशकर्ता अति तेजस्वी याचकों के प्रति उदारता युक्त तथा महान बलशाली होते हैं। वे सभी युद्धों में अति सामर्थ्यवान शत्रुओं का भी विध्वंस करते हुए अग्रसर होते हैं। अधग्मन्ता नहुषो हवम सूरे स्रोता राजानो अमृतस्य मन्द्राः नभो जुवो यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते। हे आकाशव्यापी देवो, आप अपनी सामर्थ्य से अकल्याणकारी दुष्टों की संपदा को प्रशंसा के योग्य श्रेष्ठ रथधारी शूरवीरों के लिए हस्तांतरित करते हैं। तेजवान, हर्षदायक और अमृत स्वरूप यज्ञ की ओर प्रेरित करने वाले हे देवो, मनुष्यों की स्तुतियों को सुनकर आप यहां पधारें। एतम शर्धम धाम यस्य सूरे रित्यवोचन दशतस्य यस्य नंशे द्युम्नानीयेषु वसुताति रारन विश्वे सन्वन्तु प्रभृतेषु वाजम। जिस स्तुतिकर्ता द्वारा 10 चमस पात्रों में रखे गए सोम के लिए आपको बुलाया गया है, आप उसकी सामर्थ्य शक्ति को बढ़ाएंगे, ऐसा देवों का कथन है। जिन देवताओं में तेजस्विता युक्त ऐश्वर्य सुशोभित हो, ऐसे सभी देव हमारे यज्ञों में आकर हविष्यान्न का सेवन करें। मंदा महे दशतयस्य धासेर द्विर यत पंच बिभ्रतो यन्त्यन्ना किमिष्टाश्व इष्ट रश्मिरेत ईशाना सस्तरुष रिंजते नृन। याज्ञिक 10 चमस पात्रों में रखे सोमरूपी हविष्यान्न को लेकर आते हैं। उन पात्रों में रखे सोमरस रूपी अन्न से हम प्रशंसित हैं।

0: वरिवस्यन्तु देवाः, अर्यो गिरः सद्य आ जग्मुषी रोस्राश्चाकन्तु भयेष्वस्मे। संपूर्ण देवता हमें कानों में स्वर्ण आभूषण तथा कंठ में मणियों को धारण किए हुए सुसंतति प्रदान करें। ये श्रेष्ठ देवता हमारे द्वारा उच्चारित प्रार्थनाओं एवं घृतादि आहुतियों को दोनों प्रकार के यज्ञों में शीघ्र ही ग्रहण करें। चत्वारो मा मशर्षारस्य शिश्वस्त्रयो राज्ञ आयवसस्य जिष्णोः, रथो वाम मित्रा वरुणा दीर्घाप्साः स्युमगभस्तिः शूरो नाद्यौत। विजयी तथा शत्रु संहारक मशर्षार राजा के चार काम क्रोध लोभ और मोह पुत्र को अन्नों के अधिपति आयवस नरेश के तीन पुत्र त्रिताप दैहिक दैविक और भौतिक हमें पीड़ित करते हैं। हे मित्र और वरुण देवो, आप दोनों का विशालकाय सुखकारी रश्मियों से युक्त रथ सूर्य देव के सदृश आलोकित हो।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 122 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। श्रोताओं, मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता।

जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है।

कबीर कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो, ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निंद्रा में सो ही जाना है, जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते।

भक्ति और योग के रास्ते पर मनुष्य तब कामयाबी से आगे बढ़ सकता है जब वो आनंद के माया जाल से मुक्त हो। इसकी प्राप्ति का सबसे सरल तरीका है परमात्मा का ध्यान करना।

व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है।

कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले हैं, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी।

वो मनुष्य जिसकी आत्मा सत्य असत्य ज्ञान अज्ञान कर्म अकर्म और पाप पुण्य से ऊपर उठ चुकी है, उस मनुष्य को किसी भी तरह की रणभूमि में परास्त करना असंभव है।

90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नब्बे दशमलव 8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। सराभा पंजाब के लुधियाना जिले का एक चर्चित गांव है। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को सराभा गांव में हुआ था। करतार सिंह के बचपन में ही उनके पिता मंगल सिंह का निधन हो गया और करतार सिंह और उनकी छोटी बहन धनकौर को उनके दादा बदन सिंह ने पाल पोस कर बड़ा किया। करतार सिंह के तीन चाचा बिशन सिंह, वीर सिंह और बख्शीश सिंह ऊंची सरकारी नौकरियों पर काम करते थे। करतार सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना के स्कूल में हासिल की। बाद में उन्हें उड़ीसा में अपने चाचा के पास जाना पड़ा। उड़ीसा उन दिनों बंगाल प्रांत का हिस्सा था जो राजनीतिक रूप से अधिक सचेत था। दसवीं कक्षा पास करने के बाद उनके परिवार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अमेरिका भेजने का निर्णय लिया और 1 जनवरी 1912 को सराभा ने अमेरिका की धरती पर पांव रखा। और अमेरिका प्रवास के प्रारंभिक दिनों में सराभा अपने गांव के रुलिया सिंह के पास ही रहे थे। उनके जीवन के ऐतिहासिक अंश उनके अमेरिका प्रवास के दौरान ही शुरू हो गए, जब उनके भीतर एक आजाद देश में रहते हुए अपनी राष्ट्रीय अस्मिता, आत्मसम्मान और आजाद देश के नागरिक की तरह जीने की इच्छा पैदा हुई। अमेरिका के 2-3 महीने के प्रवास में ही जगह जगह पर मिले अनादर ने सराभा के भीतर सोई चेतना जगानी शुरू कर दी। एक बुजुर्ग महिला के घर किरायेदार के रूप में रहते हुए उन्होंने देखा कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिला ने अपने घर को फूलों और वीर नायकों के चित्रों से सजाया था। सराभा ने जब इसका कारण पूछा तो महिला ने बताया कि अमेरिका के आजादी दिवस पर अमेरिकी नागरिक ऐसे ही घर सजाकर खुशी का इजहार करते हैं। तब सराभा के मन में भी ये भावना जागृत हुई कि हमारे देश की आजादी का दिन भी होना चाहिए।

करतार सिंह सराभा की गजल भगत सिंह को बेहद पसंद थी। वे इसे अपने पास हमेशा रखते थे और अकेले में अक्सर गुनगुनाया करते थे। यही पाओगे मशर में जबां मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूं है हिंदोस्ता मेरा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटी से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। और फिर बाल सभा लेकर आपको तो पता ही है, मैं हर सप्ताह आपसे मिलती हूँ। बच्चों की बातें, बच्चों की दुनिया, उनके मन से जुड़े हुए विषय, और एक बार फिर से उन सब विषयों पर बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों आप जानते हैं आज का विषय क्या है? आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है। बच्चों खेल बचपन की ना सबसे सुंदर पहचान होते हैं, क्योंकि खेल केवल समय बिताने के माध्यम नहीं है, बल्कि ये खेल बच्चों को स्वस्थ, आत्मविश्वासी और मिलनसार बनाते हैं। खेल में एक बात और होती है बच्चों, वो होती है जीवन की छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सीखें। अब आप सोचोगे कि खेल से कैसे सीख मिलती है, तो ये तो बच्चों आपको पता ही है कि मैं आपसे कोई भी बात, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, वही बात करती हूँ जिसमें कोई ना कोई सीख छुपी होती है। क्योंकि बच्चों हमेशा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, थॉटफुल हो, जो हम देख रहे हैं उसका कोई अर्थ निकले। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। अगर हम सिर्फ ऐवें ही कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों वो समय का दुरुपयोग है। और इस विषय पर हमने पिछली बाल सभा में बात की थी। आज जो बच्चा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आने वाला था, उसका मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया, बोला दीदी मैंने ना आज ही सुबह बहुत ज़रूरी काम से जाना है। मैंने कहा किस काम से जाना है? तो उसने बताया कि एक कॉलोनी में उनकी खेल प्रतियोगिता है, उसमें जाना है। तो बोला दीदी सॉरी, मैं आज स्टूडियो ना आऊँ, आज मैं अपनी खेल प्रतियोगिता में चला जाऊँ। बस वहीं से मुझे ये विषय मिल गया। मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ प्रतियोगिता में, ना सिर्फ खेल के आओ बल्कि जीत के आओ। और आज मैं अपने सभी श्रोताओं से, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने श्रोताओं से बात करूंगी कि खेलना क्यों ज़रूरी है, और क्यों मैंने उस बच्चे से कहा कि हाँ यहाँ बच्चों से बात करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जो प्रतियोगिता में तुम नाम लिखवा चुके हो पहले जाकर उसमें खेलो, और ना सिर्फ खेलो बल्कि जीतने का प्रयास भी करो। क्योंकि बच्चों ये तो आप जानते हैं कि आज के समय में जब बच्चों का अधिक समय स्क्रीन पे जा रहा है, और ये बात बिल्कुल सच भी है, छोटे छोटे बच्चों को, मैं कितने इतने छोटे बच्चों को देखती हूँ, 4 साल के, 5 साल के, जो खाना खाते वक्त अपनी मम्मा से ये बात ज़रूर कहते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन दे दीजिए। मतलब भाषा में तोतलापन है, मतलब आप सोचिए मम्मा पानी पीना है लेकिन स्क्रीन देखते हुए पीना है। कितने बच्चे छोटे छोटे वजहों से स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन स्टडी भी है, उसका एक रीज़न है। लेकिन बच्चों जितना ज़रूरी है उसके अलावा हमें स्क्रीन पर समय नहीं बिताना है, बल्कि हमें खेलने जाना है। अब मैं पूछूं आप लोगों को कौन कौन से खेल पसंद हैं, तो वहाँ से आवाज़ आएगी कि मुझे कबड्डी पसंद है, क्रिकेट पसंद है, रस्सी कूद पसंद है, है ना, जो मैं अपने दोस्तों के साथ रोज़ खेलता हूँ या खेलती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को खेल खुश भी रखते हैं, पता है आपको। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाले समय में ले जाऊँ, जब हम लोग खेलते थे, ये सारे खेल तो खेलते ही थे, इसके साथ साथ कुछ और भी खेलते थे बच्चों। क्या होता था कि मम्मियाँ ना दोपहर में काम करके थक जाती थीं। अब जब थक गईं तो उन्हें एक चीज़ ये भी है कि दोपहर में धूप बहुत है, तो धूप में एकदम बाहर तो खेलने आपको नहीं जाना है, लेकिन जब तक मम्मी सो रही हैं, जब तक माँ और घर में दादी नानी ये लोग सो रही हैं, तब तक बच्चों का हल्ला करना, शोर करना बिल्कुल मना था। और हम लोग अपनी पेरेंट्स की ना बात बहुत मानते थे। तो अब ऐसे में क्या खेल खेलें कि आवाज़ भी ना आए, तो छोटे छोटे से खेल बना लेते थे हम लोग। जैसे आंगन में गए और अष्टाचंगा खेलने लगे। अब आप सोचो अष्टाचंगा क्या होता है। इमली बहुत खाते थे बच्चे गर्मियों में ना, इमली खा रहे हैं तोड़ तोड़ के पेड़ों से, उसके जो बीज निकल रहे उससे हम लोग खेलते थे। आप लोग जैसे पासा और ये सब खेलते हो, लूडो खेलते हो आप लोग, उसी तरीके से हम लोग पत्थर पे किसी चीज़ से, चौक से या और पेंसिल किसी ऐसी चीज़ से जिससे वहाँ पर निशान बन जाए, एक चौकोर खाना बना लेते थे और उसमें अष्टाचंगा खेलते थे। सारे दोस्तों को बहुत मज़ा आता था। और फिर जैसे ही सब लोग जग जाते थे और हमें परमिशन मिल जाती थी थोड़ा शोर मचाने की, थोड़ा ऊधम करने की, तो हम लोग पिट्ठू खेलते थे, कंचे बहुत खेलते थे बच्चे। उससे एक चीज़ होती थी बच्चों, जो कंचे कई जगह उसे अंटा भी बोलते थे, उससे ना निशाना बहुत अच्छा साध पाते थे। तीरंदाजी बच्चे छोटी छोटी जगहों पे बहुत करते थे, गुलेल खेलते थे आप सोचो, और तो और पिट्ठू के अलावा खो खो खेलते थे। खो खो तो अभी भी अब बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। एक खेल हुआ करता था गिल्ली डंडा, उसमें छोटी सी लकड़ी से बच्चे अपने लिए वो बना लेते थे। और तो और जो साइकिल के पुराने टायर होते थे ना बच्चों, उसको भी मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे छोटी सी लकड़ी से बहुत दूर दूर तक दौड़ा कर ले जाते थे। अब आप सोचिए कि इस खेल में क्या है। इस खेल में जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि बहुत सारा खर्चा नहीं है, है ना। ठीक है, हमको हर चीज के लिए बाजार का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। हम अपने खेल न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि उनको बना भी खुद रहे। अब आप सोचिए कि जो बच्चा साइकिल के पुराने टायर को एक लकड़ी से दूर तक दौड़ाता हुआ ले जा रहा है, उसका फोकस कितना अच्छा हो जाता होगा। सोचिए सोचिए, क्योंकि ये सोचना जरूरी है बच्चों। अगर वो बच्चा अपनी मम्मा से रोज कहे कि आज मुझे ये खेल खेलना है, कल मुझे वो खेल खेलना है, आज ये बाजार से ले आइए, आज वो बाजार से, तो पता चलता है कि गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी पापा का बजट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। तो हमको ये नहीं करना है, हमको ऐसे खेल खेलने की कोशिश करनी है जिसको हम थोड़े थोड़े खुद भी बना सकें। और सच बताऊं बच्चों, इसमें मजा भी बहुत आता है। एक और खेल हम लोग खेलते थे, वो पता है क्या था। उस खेल का नाम था किल किल कांटे। अजीबो गरीब सा नाम है ना, पर मुझे आज था कि मैं स्टूडियो में जब आप लोग के साथ खेलों की बात करूंगी तो वो सारे खेल आपको बताऊंगी जो हम लोग खेला करते थे, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन तब बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होते थे बच्चों, है ना, कि छोटी छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग बाजार भाग जाए, नहीं होता था। इनफैक्ट बाजार में भी इतने खेल नहीं थे जैसे आजकल मैं देखती हूँ, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों काम करें उसके लिए नए नए गेम्स आ रहे हैं, नई नई बुकलेट्स आ रही हैं। ठीक है, बाजार में नई चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आप जब खुद कोई खेल बनाते हैं उसमें जो मजा आता है, उसमें जो आपका ब्रेन यूज होता है ना, वो कहीं नहीं होता और कभी नहीं होता, सच मानिए। जैसे वो किल किल कांटे में हम लोग क्या करते थे कि आपको खूब सारी लाइनें खींचनी है, लेकिन ऐसी जगह जो दूसरे को पता ना चले, वो फिर आपकी लाइनें ढूंढता था कि आपने कहां बनाई है और उसको काटता था। तो जो आपने लाइन बनाई है उसने अगर सारी काट दी तो वो जीत गया, और नहीं तो बाकी बच्चे ना एक कपड़ा लेते थे और उसकी पीठ पर कपड़े से मारते थे, तो चोट भी नहीं लगती थी, मजा भी आता था और खूब दौड़ा भागी होती थी, खूब दौड़ा भागी होती थी। ऐसे ही खो खो खेलते वक्त हम लोग बोलते थे कि घोड़ा जमाल खाए पीछे देखा मार खाए, तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा हमारी भाषा को भी समृद्ध करती थी। इसलिए मैं आज आपसे खेलना क्यों जरूरी है इस विषय पर बातचीत करना चाह रही थी। एक बात और थी कि मेरी कुछ दोस्तों को ना गुड़िया के कपड़े बनाना बहुत पसंद था। अब वो अपनी मम्मी से पुराने कपड़े लेती थी, उसमें फिर सुई धागा लेती थी और हाथों से छोटे छोटे से कपड़े बनाती थी कैंची से काट काट के, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट उनमें से एक दोस्त थी जिसको लगता था कि गुड़ियों को थोड़े से वेस्टर्न कपड़े पहनाने चाहिए, तो वो पता है किससे कपड़े बनाती थी, आश्चर्य करोगे, वो बैलून से कपड़े बनाती थी। वो गुब्बारे को पहनाकर गुड़िया को सजाती थी, और मैं आज आपको बताते हुए बहुत गर्व भी हो रहा है कि मेरी वो दोस्त इंडियन फैशन इंस्टीट्यूट में है। तो आपके बचपन के खेल की यात्रा कहाँ तक जाएगी बच्चों, ये किसी को नहीं पता, है ना। और आपको पता है आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे चूंकि स्क्रीन टाइम बहुत है और चूंकि आंखों की बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, पहले हरियाली देखना, घूमना, टहलना, दूर दूर निशाना साधना, तो आपने देखा होगा कई बच्चों को आजकल बहुत कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं। पहले हमारे यहाँ सुई धागा रेस भी होती थी, सुई में धागा डालो। अब सोचो आप सुई में धागा डालना, अब अगर आप आज कोशिश करना कि अपनी मम्मी पापा को बोलो कि एक सुई और धागे की आपसे रेस करवाएं, कितने लोग सुई में धागा डाल पाएंगे ये आप मुझे अगली बाल सभा में जरूर बताना, ठीक है? या तो आप मुझे, जो बच्चे यहाँ स्टूडियो में आएंगे वो बताएंगे, या तो मैं कैसे ना कैसे अपने बच्चों से पूछ ही लूंगी, आज पार्क जाऊंगी शाम को तब भी पूछूंगी और ये बोलूंगी कि घर पे जाके एक्सरसाइज करो। अब आप देखिए कि सुई में धागा डालना कहने को बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन उसमें भी बच्चों आपका फोकस काम आता है ना। आप कितने ध्यान से सुई में जो छोटा सा बहुत बारीक सा छेद है उसको देख पा रहे हो और उसमें धागा पिरो पा रहे हो, है ना। ये छोटी छोटी सी चीज़ है, जैसे बैलेंसिंग के लिए एक बहुत अच्छी होती थी, चम्मच में नींबू को रखकर और फिर रेस करवाते थे, तो ये मैंने अभी भी बहुत देखी है, अभी भी बच्चे बहुत खेलते हैं। तो इससे क्या होता था, इससे बैलेंसिंग आती थी। अब ये संतुलन, ये फोकस, ये हर चीज़ क्या आपकी जिंदगी में काम नहीं आती बच्चों? आती है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमें ये समझना होगा कि खेलों से दरअसल हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है, क्या खास बात हम सीख पा रहे हैं, है ना। क्योंकि बैलेंस तो वैसे भी बहुत जरूरी है लाइफ में। अब जैसे एक छोटी सी बात बताऊं आपको, एक बच्ची है, वो जहां मैं रहती हूँ उसके पास में ही रहती है। अब उस बच्ची में मैं हमेशा देखती हूँ कि थोड़ा व्यवहार में संतुलन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जैसे उसे बाहर खेलना पसंद है तो वो पूरे समय बाहर खेलना चाहती है, ठीक। अब उसका देखिए बैलेंस्ड बिहेवियर कैसे डगमगा रहा है कि मैंने देखा कि कल वो बहुत धूप में भी ना सबके घर जाकर बच्चों को बुला रही थी, बाहर आओगे खेलने आओगे। अब क्या हुआ कि एक दो घरों में गई वो, मैं वापस लौट रही थी कहीं से कुछ सामान लेकर, तो मैं चुपचाप खड़े होकर उसकी गतिविधियां देख रही थी, तो उसने किसी एक का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा अभी हम नहीं भेजेंगे क्योंकि धूप बहुत है। फिर उसने क्या किया, बगल वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया, आंटी उसको भेज दीजिए ना, मुझे उसके साथ खेलना है। तो उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं बेटा धूप बहुत है अभी नहीं भेजेंगे, शाम को आना। अब जब दो तीन घरों में उसे मना किया गया तो चूंकि मैं सिर्फ उसी को देख रही थी, वो बच्ची थोड़ी देर बाद ना रुआंसी हो गई, तो मैं उसके पास गई क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं, आप लोगों को तो पता ही है मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, कोई बच्चा दुखी हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसके पास गई, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा क्या हो गया, जबकि मैं देख सब रही थी, समझ सब रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, उसने मतलब ऐसा लगा जैसे वो रोने के लिए तैयार बैठी थी, वो रो पड़ी एकदम से, आंटी मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता। मैंने कहा सब तो आते हैं, कहाँ आया आंटी, मैं पिछले कितनी देर से सबके घर पे जाके बैल बजा रही हूँ कोई नहीं आया। मैंने कहा बेटा टाइम देखो कितना बज रहा है, तो उसने टाइम देखा, उसने बताया कि 3 बज रहा है। फिर मैंने कहा कि इस वक्त धूप देखो, तो ऊपर देखा उसने, मैंने कहा ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है सच में, मतलब ऐसा लगता है थोड़ी देर अगर खड़े हो जाओ बाहर तो जैसे जल रहे हैं। मैंने कहा इतनी धूप में आप कहाँ खेलोगे? बोली वो आंटी पेड़ के नीचे खेलूंगी। मैं कहा ये जो इतना धूप से एक्सपोजर होगा आपका उसका क्या, और कई बार लू जैसी भी स्थिति हो जाती है, गर्म हवा भी चलती है धूप में। तो वो रोने लगी, बस उसको एक ही जिद थी कि नहीं मुझे अगर मैं बुलाऊं तो तुरंत दोस्त आ जाने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो वो अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर रखना ही पड़ेगा, आपको टाइम देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने आपसे मना किया है तो क्यों मना किया है। कई बार बच्चों हम सोचते हैं ना कि हमारे किसी दोस्त ने या दोस्त की मम्मी ने या उसकी बड़ी दीदी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, तो मैं देखती हूँ बच्चे तुरंत बोलते वो अच्छी नहीं है, उसकी दीदी अच्छी नहीं है, उसकी मम्मी मेरी बात नहीं मानती है। आजकल मैं ये वाले चर्चाएं बहुत सुन रही हूँ बच्चों से, तब मुझे लगता था कि मैं बाल सभा में बैठूंगी तो आपसे ज़रूर बैलेंस्ड बिहेवियर की बात करूंगी बच्चों, है ना। पता है इसके लिए आप लोग छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए। मैं जो बाद में आपसे संकल्प के वक्त करवाती हूँ ना कि हम एक धीमा संगीत सुनेंगे, शांति से बैठेंगे, संकल्प लेंगे कि हम कुछ अच्छी चीज़ें करें, हम क्या करें और क्या ना करें, तो बच्चों सबसे पहले आप अपने अंदर धैर्य लाइए, सबसे पहले अधीर होना बंद कीजिए, है ना। थोड़ा शांति से 2 मिनट सोचना शुरू कीजिए। जो आपका कंसंट्रेशन टाइम है ना बच्चों, वो बहुत कम होता जा रहा है। मैं देखती हूँ एक बच्चा एकदम बैठता है, फिर दूसरे काम में लग जाता है, दूसरे काम से तीसरे काम में लग जाता है, और जब तक उसको उसके मन की चीज़ ना दे दी जाए वो तब तक शोर करता है। ऐसे कितने बच्चों की कहानियाँ है मेरे पास बच्चों, पर मुझे पता है जो बच्चे मेरी बाल सभा सुनते हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में आते हैं और जो हर बार मुझे बहाने बहाने से कहीं कभी स्कूल जाती हूँ मैं तब बच्चे बताते हैं कि बाल सभा सुनकर दीदी हमने ये सीखा। तो बच्चों जो भी मुझे सुन रहा है ना, एक चीज़ ज़रूर सीख लेना, अधीर होना नहीं अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको किसी ने कुछ चीज़ के लिए मना किया है तो आप खुद भी आत्म मूल्यांकन कीजिए। बच्चों रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि आपको इस काम के लिए मना क्यों किया गया। कोई ना कोई कारण जरूर होगा। वापस अपने विषय पर आ जाएं कि खेलना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से बच्चे, आपने देखा ही है कि किस तरीके से अभी जो बातें मैं बता रही हूँ, एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, एक बहुत खास बात है, खेल भावना की विकास होता है खेल खेलने से। इसमें जो सबसे बड़ी सीख है ना, जब बच्चे टीम में खेलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल हो, या आपने देखा होगा कि फुटबॉल हो, या इवन वॉलीबॉल हो, ये जो आउटडोर गेम है और जो टीम गेम है, आपने देखा होगा कि सिर्फ जो गोल करता है या जो बॉल को बास्केट में डालता है वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, वही चैंपियन नहीं है। जो बॉल को पीछे से लेते चला रहा है, लाता चला रहा है, नेट के पास तक जो बॉल को लाया है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है ना। तो कई बार हमें ये होता है ना, अरे ये काम मेरे कारण हुआ। कई बच्चे आपने देखा होगा जब बहुत अच्छे आप जाते होगे, खेलते होगे पार्क में, कहीं टीम में, स्कूल टीम की तरफ से आप खेल रहे होगे, या आपने देखा होगा स्कूल में भी कई बच्चों को ना हल्का सा, बहुत छोटा सा ही सही, पर अहंकार जैसा आ जाता है, अरे उस मैच में तो मैंने गोल मारा था, अरे उस वाले गेम में तो मैंने सिक्स मारा था। नहीं, पूरी टीम का सपोर्ट था आपके उस सिक्स के पीछे। पूरी टीम चाहती थी कि आप जब नेट तक बॉल पहुंच जाए तो आप उसको बास्केट में डाल दें, सब चाहते थे। समझ रहे हैं आप? तो बच्चों कभी भी ये मत सोचिएगा कि खेल सिर्फ खेल है। खेल में बहुत छोटी छोटी छोटी छोटी सी इतनी माइक्रो सीख छुपी हुई है कि आपको ना अपने दिमाग का लेंस लगाना पड़ेगा कि अरे इसमें तो ये भी छुपा था। जैसे अभी मैंने बताया ना कि टीम में जब आप रहते हो तब आप सपोर्ट सिस्टम सीखते हो। दूसरा, जिन बच्चों को लगता है कि हार गए तो झगड़ लिए, आपने कई जगह देखा होगा कि कई बच्चे एकदम से खेलते खेलते अगर हार रहे तो बैट पटक देते हैं, या झल्ला जाते हैं, या उनका टोन ऑफ वॉइस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता फिर। तो बच्चों हमें वो चीज़ें भी सीखनी है और हमें वो चीज़ें भी सोचनी है। अब अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही मुझे एक बच्चे के पापा बता रहे थे कि वो बहुत मोबाइल पर खेलता है, मतलब हर खेल मोबाइल पर खेल लेता है, और बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अब कौन कौन से गेम खेलता है, तो आजकल तो क्रिकेट भी आप मोबाइल पे खेल सकते हो, आजकल तो आप फुटबॉल भी मोबाइल पे खेल सकते हो, आप गाड़ी की रेस मोबाइल पे लगाते रहते हो। लेकिन आप बच्चों बस मुझे ये बताओ कि हाथ में स्क्रॉल करते करते आप कितना भी खेल लेना, उससे क्या होगा? उससे आप बैठे बैठे अनफिट होते जाओगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी फूड क्रेविंग बढ़ती है ना। फिर आप सोचोगे कुछ पैकेट में आपको खाने को मिल जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप कुछ खा लोगे, फिर आप टॉफी चॉकलेट मुंह में डाल लोगे, और फिर थोड़ी देर बाद आप थक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं खेल रहे हैं, खेल कोई और ही रहा है जो वो खेल बना रहा है मोबाइल के लिए, है ना, और आप उसमें बंधते जा रहे हो, ठीक है। और बच्चों फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप रियलाइज करना, आप अकेले होते जाते हो, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे, मोबाइल बात तो कर नहीं सकता आपसे, है ना, बस वो आपके लिए खूब सारी गाड़ियां दौड़ाता जा रहा है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो और आपको लग रहा है आप खेल रहे हो। और ये बात मैं कर रही हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों की, 7 साल के 8 साल के 9 साल के ऐसे बच्चों की। तो बच्चों ये बात आपको बहुत समझना जरूरी है कि जब आप बहुत समय मोबाइल पर गेम खेलते हुए बिताओगे, आपका दोस्त कौन बचेगा? सोचो आप किसके कंधे पर हाथ रखोगे। अगर आप स्कूल जाते वक्त आपके दोस्तों से बात नहीं करोगे तो आप बात करने का तरीका ही भूल जाओगे। सच्ची मानिए, मैंने बहुत बच्चों में ये चीज देख रही हूँ कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या बात करें। हेलो, बस चुपचाप बैठ गए, ये नहीं पूछते आज तुमने क्या पढ़ा, कहानी पढ़ी क्या कोई, और आज तुम खेलने गए थे, कौन सा खेल खेल रहे हो, तो क्या बताओगे आप? मैं मोबाइल पर गाड़ियों की रेस लगा रहा हूँ। क्या बताओगे आप? मैं मोबाइल पे वो खेल रहा हूँ, क्रिकेट। मैं मोबाइल पे ही बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। तो ठीक है, आपके टीम प्लेयर्स कौन है? वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप अकेले रहते हो। जब आप स्क्रीन पे खेलते हो तब आप अकेले होते हो, और जब आप बाहर खेलते हो तो आपके साथ पूरी टीम होती है जो आपको एक संवेदनशील नागरिक बनाने में बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि जब कोई गिर जाता है तो आप उसका हाथ पकड़ के उठाते हो, जब किसी के चोट लग जाती है तो आप उसको पानी से साफ करते हो, उसके घर तक उसको लेके जाते हो। तो इससे आपको बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। आप अचानक से हेल्पिंग होने लगते हो, आप अचानक से बहुत मीठा बोलने लगते हो, आप अचानक से फ्रेंडली हो जाते हो, है ना? लेकिन ये सब कब आता है? जब आप घर के दरवाजे खोलते हो, अपने अकेलेपन से बाहर निकलते हो, जब आप लोगों के बीच उठते बैठते हो। नहीं तो क्या होता है? नहीं तो एक कमरा, आपकी स्क्रीन, आपका हाथ, और उससे आपका सारा खेल, खेलते जा रहे हो। तो बच्चों, मैं नहीं सुनूं अब कि कोई भी बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा ले रहा है। मैंने आज खेल क्यों ज़रूरी है इस विषय पे बात ही इसलिए रखी थी कि ये जो छुट्टियां चल रही हैं इसमें आप कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलोगे, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, जूडो हो, कराटे हो, कुछ भी हो, सेल्फ डिफेंस से लेकर गेम जो भी जुड़े हुए हैं वो आपको ज़रूर सीखने चाहिए, वो भी आपको काम आते हैं, है ना? वो खेल ज़रूर खेलिए, क्योंकि यही खेल बच्चों आपको न सिर्फ फिट करेंगे बल्कि आपको, मैं बार बार बोलती हूँ कि खेल से खेल भावना का विकास होता है, और खेल भावना से आप एक बहुत अच्छे बच्चों में बढ़ते जाते हो, तब्दील होते जाते हो। आपकी अचानक से सारी कमजोरियां आपको बाय बाय कहने लगती हैं, है ना? और अब ऐसी ही एक, आपको तो पता ही है एवरेस्ट की बातें हम लोग कर रहे हैं आजकल, तो अब हम फिर से आपको सुनाते हैं बचेंद्री पाल जी का आगे का हिस्सा कि उनका जो प्रथम अभियान था एवरेस्ट का वो कैसा रहा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिसमें वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। काठमांडू में कुछ दिन बिताने के पश्चात हम जीरी चले गए, जो वहां से 4-5 घंटे की यात्रा पर था। जब हमने नामचे बाजार तक की 8 दिन की यात्रा आराम से की, पर्वतों के स्वभाव के विपरीत हम रोज लगभग 1000 मीटर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते, जिससे हम में मजबूती आई और ऊंचाइयों के वातावरण और जलवायु के अनुकूल स्वयं को ढालने में हमें मदद मिली। रास्ते में हमें हसमुख और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ उस क्षेत्र के व्यक्ति विशेष शेरपा मिले। नामचे बाजार शेरपा लैंड की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरी क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को यहीं से निहारा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था। मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से लगभग 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ का पत्थर उड़ता रहता था। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। हम पर्वतीय लोग सदा से पर्वतों की पूजा करते आए हैं, अतः इस भय मिश्रित प्रेरणास्पद दृश्य के प्रति मेरे ऊपर हावी भावना एक प्रकार से श्रद्धा भाव की थी। मैंने अपने हाथ जोड़े और सागर माथा की तरफ श्रद्धा से सिर झुकाया। एक दिन के बाद हम प्रसिद्ध थ्यांग बोके मठ तक पहुंचे, जहां मूर्तिमान थामा ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सफलता तथा सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। थ्यांग बोके न केवल सुंदर था बल्कि उसकी 4000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई हमारी जलवायु अनुकूलता प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थी। तो बच्चों, ये पर्वत पर जाने की, आप जो हिमालय तक पहुंचने की यात्रा सुन रहे हैं बचेंद्री पाल जी की, वो भी हमें हर पल यही संदेश देती है कि हमें जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, थोड़ी हिम्मत करना ज़रूरी है। तो बस एक बार जो आप सोच लें उसे पूरा करके दिखा दीजिए। और यहाँ जो बच्चे अभी हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट टीम में हो, किसी स्टेट टीम में हो या फिर हमारे यहाँ के कुछ बच्चे नेशनल भी खेल रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जूनियर, सब जूनियर, ऐसे बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। और एक बार आप स्कूल का जो खेल विभाग है बच्चों, उसमें ज़रूर जाना। और जो आपके कोच, जो आपके स्पोर्ट्स टीचर, जो भी होंगे, उनसे मिलकर कहना कि आपको कोई ना कोई खेल ज्वाइन करना है। और जब आप कोई खेल खेलने लगोगे तो सच बोल रही हूँ, आपकी मनीषा दी को बहुत अच्छा लगेगा। और यही बाल सभा में मेरी आपसे बातें करने का जो पूरा पूरा मंतव्य है, वो यही है कि हम यहाँ जो बोलते हैं ना बच्चों स्टूडियो में बैठ के, बस उसका असर बच्चों पे पड़े, है ना। तो अगर आप में से दो बच्चों ने भी अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया, दो चार बच्चे अगर किसी खेल टीम में चले गए, तो सच मानिए मेरा तो पर्पस पूरा हो गया। और रेडियो आज़ाद हिंद भी यही चाहता है कि जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमको सुनते हैं ना, बस वो धीरे धीरे अच्छे मार्ग पर चलें, है ना। एक बात चलते चलते और बताऊंगी कि जो पारंपरिक खेल थे ना, जिनके बारे में आज मैंने चर्चा की थी आपसे, उसके बारे में अपनी मम्मी से, अपने पापा से पूछना कि आप लोग कौन से खेल खेलते थे जब छोटे थे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ मज़ेदार कहानी किससे बताएंगे। और तो और एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ना, धीरे से अपनी दादी, दादा, नाना, नानी से भी पूछ लेना, दादू आप छोटे थे तो कौन सा खेल खेलते थे, देखना कितनी मज़ेदार कहानियाँ निकल के आएंगी और देखना कितने अच्छे अच्छे खेल आपको पता चलेंगे। और फिर आप उन पारंपरिक खेलों को खेलने की कोशिश करना, उससे क्या होगा, अच्छी चीज़ें अगली पीढ़ी तक ऐसे ही पहुँचेंगी। तो बच्चों अब चलने का वक्त आ गया है, आपको पता ही है हमारा आपसे जो अंतिम संवाद होता है वो होता है संकल्पों का। तो वो संवाद शुरू करते हैं, एक धीमा संगीत और उसके बाद अपनी बातें। शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अब आज खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप कोई ना कोई खेल जरूर खेलेंगे। जो भी बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो अगर वीडियो गेम या स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, उसे कम करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक इंडोर गेम साथ ही साथ एक आउटडोर गेम में महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले में या जहां भी आप रहते हैं, आसपास बच्चों की एक टीम बनाएंगे और सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोई ना कोई टीम गेम खेलेंगे, ताकि आप में खेल भावना का विकास हो। अब आंखें आप खोल सकते हैं और अब मुझे बाय बाय भी कह सकते हैं, क्योंकि बाल सभा का समय पूरा हो चुका है। बच्चों चलती हूँ, अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए और ये प्रॉमिस कीजिए, भले ही चाहें तो रेडियो के पास आ जाइए। अगर आप मुझे कार में सुन रहे हैं, मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो अपने मन ही मन खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे और कोई ना कोई खेल में हिस्सा ज़रूर लेंगे। तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, गर्मी से खुद को बचा कर रखिए, थोड़ा सा धूप में कम निकलिए जैसे मैंने उस बच्चे की कहानी सुनाई थी, और शाम को खूब जम कर खेलिए। बाय बाय और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।
3: बाल सभा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था खेलना क्यों ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त मनीषा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। एक अंतराल के बाद सुनेगा हमारा अगला कार्यक्रम।

नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौर। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए अब आपको सुनवाते हैं विश्व सिज़ोफ्रेनिया जागरूकता दिवस के ऊपर हमारा विशेष कार्यक्रम।
2: मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओं, 24 मई, ये तारीख मानवीय स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये दिन विश्व सिज़ोफ्रेनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया क्या होता है और इसे 24 मई को मनाने का क्या उद्देश्य है। हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल, जो कि प्रोफेसर और एचओडी हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में। सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: सर। प्रश्न सबसे पहले यही आता है कि सिज़ोफ्रेनिया क्या है।
3: सिज़ोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो हमारे व्यवहार, काम करने के तरीके, सोचने के तरीके को सीधे तौर पे प्रभावित करता है।
2: अच्छा,
3: इसके बारे में जागरूकता की कमी रहती है। इसका बहुत से लोग जिनको बीमारी है, उनके परिजन भी उन्हें इलाज के लिए समय पर नहीं ला पाते हैं, और इलाज नहीं मिलने की दशा में बीमारी के लक्षण बढ़ते हैं और बीमारी धीरे धीरे लाइलाज हो जाती है। उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सबको जागरूक करें कि क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसका उपचार है और क्या उसके बारे में ऐसे मिथक है जिन्हें तोड़ा जाना आवश्यक है, जिससे कि उसके रोगियों को उचित उपचार मिल सके। और उसी उद्देश्य के रूप के पूरा करने के लिए हर वर्ष 24 मई को विश्व सिज़ोफ्रेनिया दिवस मनाया जाता है।
2: तो सर, सबसे पहले मन में यही प्रश्न आता है कि सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि ये मरीज सिज़ोफ्रेनिया का है।
3: सिज़ोफ्रेनिया एक तरह से क्लस्टर ऑफ डिसऑर्डर्स है, उसमें कई अलग अलग तरह की बीमारियों के लक्षण या अलग अलग तरह के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, उसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो दो तरह के लक्षण है। एक जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं, जैसे एक होता है जिसे हम कहते हैं डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स मतलब ऐसा भ्रम या ऐसा विश्वास जो सच नहीं है पर वो व्यक्ति उसे सच मानता है।
2: अच्छा,
3: जैसे किसी को ये लगे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरे खिलाफ बातें कर रहा है, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन।
2: अच्छा,
3: ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि लोग जो बातें कर रहे हैं वो उसके बारे में कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस।
2: अच्छा,
3: किसी को कई बार ऐसा विश्वास होता है कि उसे पति पत्नी या किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का संबंध किसी और से चल रहा है, जबकि वास्तविकता में मान लीजिए नहीं चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी।
2: अच्छा, यानी सर मूलतः ये भ्रम है कि ऐसा हो रहा है,
3: ऐसा विश्वास हो जाता है व्यक्ति को कि ऐसा हो रहा है जबकि वास्तविकता में वैसा नहीं हो रहा। ऐसा विश्वास इस हद तक होता है कि उस व्यक्ति को कोई भी सबूत दे दिया जाए कि तुम्हारा विश्वास सही नहीं है, फिर भी वो नहीं मानता। तो बेसिकली डिल्यूजन कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी अमाउंट ऑफ रीजनिंग। वो आदमी कुछ सुनने को, कुछ मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है जैसा वो सोच रहा है, जैसा वो मानता है, जैसा उसका विश्वास है, वो बिल्कुल सत्य है। इसमें अलग अलग तरह के डिल्यूजन है। एक होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जहां इंसान को लगता है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, बहुत पावर है, ताकत है। या एक ऐसा होता है जहां इंसान को लगता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, में ऐसा लगता है कि कहीं उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के डिल्यूजन्स हो सकते हैं, और उसको कंट्रोल या उसको समय पर इलाज मिलने से उसका उपचार हो सकता है।
2: अच्छा,
3: इसके अलावा जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो डिल्यूजन्स के अलावा जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, एक होते हैं हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस मतलब अलग अलग तरह के हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी, गस्ट्रेटरी, टेक्टाइल, तो अलग अलग सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हेलुसिनेशंस हैं।
2: अच्छा,
3: तो जैसे किसी को कोई आवाज सुनाई दे रही है, वो आवाज वास्तविकता में कहीं है ही नहीं। किसी को कुछ चीजें दिखाई दे रही है, वो वास्तविकता में कहीं है ही नहीं। तो ऐसी चीजें सुनाई देना या दिखाई देना या महसूस होना शरीर पे, या ऐसी स्मेल आना या ऐसा टेस्ट आना जो वास्तविकता में कहीं नहीं है, तो इन चीजों को हम कहते हैं हेलुसिनेशंस।
2: अच्छा,
3: इसके अलावा ऐसा व्यक्ति कभी कभी आक्रामक हो सकता है, एजिटेटेड हो सकता है, कुछ उसके बॉडी के मूवमेंट ऐसे हो सकते हैं कि अगर उसका हाथ किसी पोजीशन में रख दिया तो उसी पोजीशन में रह जाए। ठीक है, उसे साइकोमोटर सिम्टम्स कहते हैं।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो ये मेनली पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। इसके अलावा सिज़ोफ्रेनिया में कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स मतलब इंसान की जीने की उमंग है वो कम हो जाती है।
2: हाँ।
3: उसके जो इनिशिएटिव टेकिंग है, वो काम करने की शुरुआत कैसे करता है, कैसे उत्साह से वो काम करता है, उसका मोटिवेशन कम हो जाता है, प्लेजर की फीलिंग आनी कम हो जाती है, बंद हो जाती है. तो जो सामान्य व्यक्ति में होते हैं उन चीजों का अभाव हो जाता है, इसके अनुसार नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं. तो नेगेटिव सिम्टम्स में एनहेडोनिया, अपैथी, अवोल्यूशन, अबुलिया, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, इस तरह की कई सारी लक्षण नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं. किसी सिज़ोफ्रेनिया में प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव सिम्टम ज्यादा मिलते हैं किसी मरीज में, किसी में नेगेटिव सिम्टम्स ज्यादा मिलते हैं, किसी में मिक्स सिम्टम मिलते हैं.
2: सर मेरा यही प्रश्न था कि ये सारे मिले जुले लक्षण हो सकते हैं या नहीं.
3: तो सिज़ोफ्रेनिया में कभी पॉजिटिव अधिक मिल सकता है, कभी नेगेटिव अधिक मिल सकता है, कभी मिक्स भी मिल सकता है.
2: अच्छा.
3: पर ये सब सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण है. कभी कभी उसे ऐसा विचार लगता है कि कैसे किसी ने कोई अपना विचार मेरे दिमाग में डाल दिया, उसे हम कहते हैं थॉट इंसर्शन. कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे उसके जो विचार है, मरीज को ऐसा लगता है उसके जो विचार है वो रेडियो वेव्स के थ्रू या टेली वेव्स के थ्रू लोगों को पता चल रहे हैं.
2: अच्छा.
3: उसे थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं. तो इस तरह के कई लक्षण सिज़ोफ्रेनिया के व्यक्ति में होते हैं. कई बार उसे ऐसे सोमेटिक पैसिविटी, पैसिविटी मतलब जैसे अगर उसका हाथ भी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी और ने उसका हाथ उठा के वहां रख दिया.
2: अच्छा अच्छा अच्छा.
3: ठीक है.
2: इतने भ्रम में चले जाते हैं.
3: बिल्कुल. तो ये एक मानसिक बीमारी है जो दिमाग के अंदर रासायनिक बैलेंस है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस है, उसके चेंज होने से होती है.
2: अच्छा.
3: और इसके कई कारण हो सकते हैं. तो बेसिकली अगर कोई भी हम बात करें कि मानसिक रोग क्यों होते हैं,
2: जी जी,
3: तो मानसिक रोग के होने का जो इटियोलॉजिकल मॉडल है उसे हम कहते हैं बायोसाइकोसोशल. तो देयर आर सम बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, हेरिडिटरी हो सकते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्ले करते हैं. तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मानसिक रोग जैसे कि सिज़ोफ्रेनिया हो रहा है तो उसको एक तरह से बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली हमें उसके कारण तलाशने पड़ते हैं और उस हिसाब से उसका उपचार चालू करना पड़ता है.
2: जी. तो मतलब ये एक मानसिक अस्वस्थता के लक्षण है लगभग, है ना. तो सर जैसे आपके पास कोई उपचार के लिए आता है तो आप उनका के उत्तरों से ही समाधान कर देते हैं या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है.
3: देखिए, जैसे कोई व्यक्ति आता है तो उसको डायग्नोसिस किया जाता है. डायग्नोसिस बेसिकली उसके लिए हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट की, उससे भी, उसके घर वालों से भी.
2: अच्छा.
3: उसके अलावा एक हम होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एमएससी.
2: जी.
3: एमएससी की जाती है. अब सिज़ोफ्रेनिया जैसे संबंधित लक्षण किसी और बीमारी में भी हो सकते हैं. मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर में भी उससे संबंधित लक्षण आ सकते हैं.
2: अच्छा.
3: कि कोई और ब्रेन का इन्फेक्शन उससे भी आ सकते हैं. तो उन्हें रूल आउट भी करना पड़ता है कि भाई ये किसी नशे की वजह से या किसी दिमाग की किसी और बीमारी की वजह से ऐसे लक्षण नहीं आ रहे हैं. उसे रूल आउट करने के लिए हमें कुछ टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं. एक बार हमारा डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो गया कि सिज़ोफ्रेनिया है, उसके बाद उसका उपचार चालू होता है. ऐसे व्यक्ति को कई बार भर्ती करके उपचार की जरूरत पड़ती है.
2: अच्छा.
3: ऐसे व्यक्ति के अंदर खासियत कई बार ये होती है कि वह व्यक्ति खुद को बीमार नहीं मानता.
2: जी.
3: तो जो व्यक्ति खुद को बीमार नहीं मानता वो इलाज लेने से भी कई बार
2: मना कर देते हैं. जी.
3: तो कई बार उसे हमें कानून का पालन करते हुए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है 2017 का, उसके प्रावधानों के अंतर्गत भर्ती करना पड़ता है.
2: अच्छा.
3: तो भर्ती करने का भी अलग अलग प्रकार हो सकता है. कि एक होता है कि जहां व्यक्ति के अंदर खुद की डिसीजन लेने की कैपेसिटी इंटैक्ट है तो उस हिसाब से एडमिट करते हैं. जहां व्यक्ति खुद के लिए डिसीजन लेने की उसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है वहां पे हमें सपोर्टेड एडमिशन करना पड़ता है. सपोर्टेड एडमिशन मतलब उसकी सूचना हमें न्यायालय को देनी पड़ती है और उस हिसाब से उस पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है. तो उपचार के लिए कुछ मरीजों को हो सकता है ओपीडी ट्रीटमेंट देके ही ठीक किया जा सकते हैं.
2: अच्छा.
3: और कुछ पेशेंट्स को हो सकता है हमें भर्ती करके इलाज की जरूरत पड़े.
2: अच्छा.
3: क्योंकि दिमाग से संबंधित बीमारी है और दिमाग वैसा ही एक शारीरिक अंग है जैसे कि बाकी हमारे लीवर, किडनी, हार्ट और लंग्स हैं.
2: जी बिल्कुल.
3: तो इसके लिए विशिष्ट दवाइयां हैं जिन्हें एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है.
2: अच्छा.
3: तो वो दी जाती है समय के साथ में. जैसे जैसे मरीज ठीक होता है उसकी दवाइयों में कमी आती है. और अगर मरीज समय के साथ में पूरा ठीक हो चुका है तो कुछ समय के बाद उसकी दवाई बंद भी की जा सकती है.
2: अच्छा.
3: तो ऐसा नहीं है कि एक बार दवाई चालू हो गई तो जीवन भर चलेगी ही चलेगी.
2: जी.
3: तो आमतौर पर कई बार ऐसा भ्रम होता है कि एक बार दवाई चालू होगी तो जीवन भर चलेगी. पर अगर रेगुलर पेशेंट इलाज के लिए आ रहा है, दिखा रहा है, सुधार हो रहा है तो धीरे धीरे उनकी दवाई बंद भी की जा सकती है.
2: सर यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि क्या सिज़ोफ्रेनिया का उम्र से भी संबंध है क्या?
3: सिज़ोफ्रेनिया आमतौर पे 15 से 25 साल की एज में चालू होता है.
2: अच्छा.
3: ये बीमारी आमतौर पे 15 से 25 साल की उम्र में चालू होती है और इसका अलग अलग तरह का कोर्स या प्रोग्रेशन होता है.
2: अच्छा अच्छा.
3: किसी किसी व्यक्ति में हो सकता है जीवन भर रहे, किसी में हो सकता है कुछ टाइम रहे और कुछ टाइम नहीं रहे, किसी में हो सकता है कुछ टाइम रहे फिर वापिस आए. तो सिज़ोफ्रेनिया का कोर्स और प्रोग्नोसिस अलग अलग मरीजों में अलग अलग हो सकता है और नियमित उपचार से अधिकांश मरीजों में फायदा होता है और एक सामान्य जीवन जी पाते हैं।
2: जी सर, यही प्रश्न आता है कि मतलब सिज़ोफ्रेनिया को इलाज के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं।
3: बिल्कुल कर सकते हैं
2: जी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति है तो सबसे पहला हमारा क्या कदम होना चाहिए उसके लिए?
3: देखिए, लक्षणों की जानकारी बहुत आवश्यक है। कभी भी आपको अपने परिवार में किसी के असामान्य लक्षण लगे कि कोई अधिक गुमसुम रह रहा है, उदास रह रहा है, अपने दैनिक कार्य भी ठीक से नहीं कर रहा, नहाना धोना, शौच जाना, खाना, कपड़े पहनना, बाहर जाना, वो भी अगर ठीक से नहीं कर पा रहा है, या वो अजीब व्यवहार कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके कोई खिलाफ काम कर रहा है, शक कर रहा है
2: जी,
3: उसे कोई भ्रम हो रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, या उसके कुछ मूवमेंट ऐसे हो गए हैं कि एक डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन में देख रहा है, एक जगह हाथ अगर उसका हमने कर दिया तो वैसा का वैसा ही हाथ रह रहा है
2: जी।
3: तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं, इवन अगर आप देखें सड़क के किनारे कई बार जो हमें विक्षिप्त से मरीज दिखाई देते हैं, जिनके कपड़े फटे हुए होते हैं, ऐसा लगता है सालों से नहाए नहीं हैं, बाल उलझे हुए होते हैं, जटाएं बनी हुई होती हैं, और थोड़ा सा पास जाओ तो कई बार वो आक्रामक भी हो जाते हैं, पत्थर मारने की कोशिश करते हैं, आमतौर पे वो सब सिज़ोफ्रेनिया बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो सिज़ोफ्रेनिया इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम विश्व के अंदर देखें तो रफली 0.3 से 0.7% लोगों में पाया जाता है।
2: अच्छा,
3: तो अगर हमारे देश की करीब करीब 150 करोड़ आबादी है
2: जी,
3: तो अगर हम 0.3% के हिसाब से भी देखेंगे तो करीब करीब आप ये मान लीजिए 50 लाख से ज्यादा सिज़ोफ्रेनिया के मरीज हमारे देश में हैं।
2: इतना गंभीर है।
3: हर साइकेट्रिस्ट बहुत से सिज़ोफ्रेनिया के मरीज डेली देखता है और भर्ती भी रहने की जरूरत पड़ती है, पर जितने मरीज हैं उतनों का उपचार नहीं हो पाता क्योंकि समाज में जागरूकता की कमी है।
2: कमी है,
3: कमी की वजह से या तो वो व्यक्ति पहुंच नहीं पाते
2: जी,
3: या कई बार वो अलग अलग सिज़ोफ्रेनिया से या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अलग अलग मिथकों के शिकार हो जाते हैं कि कोई रिश्तेदार कई बार कह देता है कि भाई दवाई दोगे तो दवाई से ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, हमेशा चलेगी, कई बार मिथकों के प्रभाव में आके इलाज छूट जाता है, कई बार परिवार का सामर्थ्य उतना नहीं होता कि वो फाइनेंशियली या इमोशनली उतना सपोर्ट कर पाए मरीज को, कई बार सोचते हैं कि भाई शायद शादी कर देंगे उससे ठीक हो जाएगा, पर ऐसा भी नहीं होता है
2: जी, जी।
3: तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, पर अगर उचित मार्गदर्शन मिले तो अधिकांश मरीजों की जिंदगी सुचारू रूप से चल सकती है।
2: तो सर, प्रश्न अगला मैं यही पूछना चाहूंगी कि हम इस बीमारी के प्रति हमारा अपना नजरिया कैसे बदल सकते हैं, या हम ये कैसे समझ जाएं कि नहीं नहीं हमें ये बीमारी है, या हमारे घर में या हमारे किसी परिचित को है और इसे जाना चाहिए।
3: सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है कि मानसिक रोग शर्म का विषय नहीं है
2: जी,
3: कलंक का विषय नहीं है। मानसिक रोग वैसे ही हैं जैसे शरीर के बाकी रोग हैं
2: जी, जी।
3: अगर हम किसी को ये बता सकते हैं कि हमें या हमारे परिवार में किसी को डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या किडनी की या लीवर की कोई खराबी है, तो हमें ये बात में भी बताने में भी संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारे परिवार में किसी को सिज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि शारीरिक रोग मानसिक रोगों की तरह होते हैं। शारीरिक रोग अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड हो सकते हैं, वैसे ही मानसिक रोग है जो हमारा प्राइमरी कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, ब्रेन या मस्तिष्क, उससे संबंधित है। और हम अगर सबको समान दृष्टि से देखेंगे तो हम उसको स्वीकार कर पाएंगे। दूसरा, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे रोगियों को उपचार भी बेहतर हो रहा है। सरकार के भी अलग अलग प्रयास हैं जिससे मदद मिलती है लोगों को डायग्नोसिस करने में
2: जी।
3: वैसा ही एक प्रयास है मन हित करके, एक एंड्रॉइड बेस्ड ऐप है
2: जी,
3: जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा तैयार किया है मध्य प्रदेश।
2: अच्छा, मनहित।
3: मनहित
2: जी।
3: तो मनहित ऐप के द्वारा आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं जिनके आधार पर आप अपनी जांच और ये पता कर सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कैसा है।
2: अच्छा।
3: और उसका लिंकेज टेलीमानस जो हेल्पलाइन है या जो मन कक्ष या मेडिकल कॉलेजेस के साइकेट्री डिपार्टमेंट उनसे किया गया है
2: जी।
3: तो एक तरह से सरकार का एक प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग उपचार ले पाए
2: जी। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास है सर।
3: अगर लक्षणों की पहचान होगी तो परिवार के लोगों को समझ आएगा कि हाँ इसका उपचार हो सकता है। जो मनहित है या टेलीमानस है उसके थ्रू ये पता चल सकता है कि कहाँ हो सकता है
2: जी।
3: और जैसे उपचार लेंगे वैसे वैसे मरीज बेहतर होंगे।
2: सर, आज की तो इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव और चिंता से ग्रस्त जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही है। तो ऐसी समय में जिस ऐप का आप नाम ले रहे हैं मनहित का, वो हम सभी के लिए लगभग उपयोगी है सर?
3: कायदे से ऐसा ऐप सभी के मोबाइल में होना चाहिए जी। और प्ले स्टोर पे उपलब्ध है
2: जी।
3: बहुत अच्छी बात है कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। उस ऐप के माध्यम से आप जितने भी मानसिक रोग हैं उससे संबंधित आपको जानकारी मिल सकती है, उससे जागरूकता से संबंधित वीडियोस भी हैं, पैम्फलेट्स या सामग्री भी है और सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चनियर भी हैं।
2: तो
3: अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसे पता चल सकता है उसे डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है या कोई स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई नशे रिलेटेड प्रॉब्लम है या सिजोफ्रेनिया है या बाइपोलर है, तो ये पता चल सकता है, घर बैठे पता चल सकता है
2: जी। इतनी बढ़िया जानकारी है सर, इससे हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित होंगे। तो सर अगला यही प्रश्न बनता है कि सिजोफ्रेनिया से जुड़े सबसे बड़े मिथक कौन कौन से हैं?
3: सबसे पहला मिथक ये है कि ये ऊपरी हवा से होता है
2: जी,
3: भूत प्रेत करते हैं।
2: जी जी जी,
3: हम अब 21वीं सदी के एक क्वार्टर पूरा कर चुके हैं और कोई भी रोग, सिर्फ सिजोफ्रेनिया की बात नहीं है, कई लोग टाइफाइड को मानते हैं कि साहब झाड़ फूक से ठीक हो जाता है।
2: हाँ, जी, जी, जी,
3: तो कोई भी रोग किसी ऊपर की हवा से नहीं होता है, सबके वैज्ञानिक कारण हैं और सबके वैज्ञानिक इलाज हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये भूत प्रेत या ऊपर की हवा से नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि ये दिमाग की बीमारी है, ये किसी की आदत या व्यवहार की समस्या नहीं है, तो इसे रोग की तरह समझना बहुत आवश्यक है। फिर जो हैं कि भाई शायद शादी करने से ठीक हो जाते हैं, तो ऐसे शादी करने से ठीक नहीं होते हैं
2: जी।
3: आजकल शादियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं
2: जी, बिल्कुल
3: कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि मान लीजिए आपने किसी सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त व्यक्ति की कहीं शादी कर दी और उनको बताया नहीं कि भाई हमारे बच्चे को इस बीमारी से प्रॉब्लम है
2: जी,
3: तो एक की जगह दो से तीन परिवार के अंदर प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि क्या होता है, कई पेशेंट बहुत अच्छे चल रहे होते हैं दवाई के ऊपर, जब उनकी शादी की जाती है तो बताते नहीं है, नहीं बताने से उनकी दवाई छूट जाती है और वापस बीमार हो जाते हैं, तो फिर वो वहां परेशान करते हैं, फिर वो वापस यहां आ जाते हैं और ऐसे ही एक की जगह दो तीन परिवारों की जिंदगी खराब होने लग जाती है,
2: कई लोग प्रभावित होते हैं।
3: तो शादी करने से ऐसी समस्या का समाधान नहीं होता। दूसरा ये है कि इलाज से संबंधित बहुत सी भ्रांतियां हैं, इलाज लंबा चलेगा, सबसे एक भ्रांति ये रहती है कि सिर्फ नींद की गोली दी जाती है, जबकि ऐसा कुछ सच नहीं है
2: जी।
3: नींद से संबंधित गोली नहीं दी जाती है, बीमारी को ठीक करने की गोली दी जाती है। क्योंकि सिजोफ्रेनिया के मरीज का एक लक्षण यह है कि उसकी नींद कम हो जाती है
2: जी।
3: तो कई बार नींद भी करेक्शन होता है, नींद में भी ठीक कमी ठीक आती है। तो इलाज और बीमारी से संबंधित कई सारे भ्रम है, उनको एड्रेस किया जाना, उनका उपचार किया जाना बहुत आवश्यक है। ये देवी प्रकोप से नहीं होता है, ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है कि भाई ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व्ड हैं और ये थ्योरीज हैं, ये इलाज है, ये सब वैज्ञानिक आधार हैं और विज्ञान को स्वीकार करते हुए हमें मानना चाहिए कि इसका इलाज संभव है। और सिजोफ्रेनिया का मरीज अगर उसे उचित इलाज और उचित मार्गदर्शन मिले तो एक सामान्य जीवन जी सकता है।
2: सर यही आता है कि चलिए जो मरीज है वो आपके पास आया, तो कितना लंबा समय लगता है उपचार में और हम ये कैसे जान सकते हैं कि अब ये मरीज जो है वो ठीक हो गया है?
3: देखिए लंबा समय हर मरीज का अलग अलग हो सकता है।
2: अच्छा।
3: तो जब मरीज पहली बार आता है, अगर वो मुझसे पूछे कि मेरे को कितने समय तक इलाज लेना पड़ेगा
2: जी,
3: तो इसका हमारे पास कोई स्पष्ट जवाब उस समय नहीं होता। हम ये कहते हैं कि मिनिमम 6 महीने लेना पड़ेगा कम से कम
2: जी,
3: और मैक्सिमम इस बात पे निर्भर करता है कि दवाई से आप कितने ठीक हो पाते हैं, दवाई आपको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप दवाई को
2: जी जी जी।
3: तो जो मरीज दवाई को जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं उनकी दवाई हम धीरे धीरे कम करके बंद कर सकते हैं। कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनकी दवाई कम करने से उन्हें प्रॉब्लम वापस आती है, तो उनकी दवाई बंद करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है
2: जी।
3: तो कुछ मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनको जीवन पर्यंत मेडिसिन खानी पड़े, कुछ मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनको हो सकता है 1 साल 2 साल 6 महीने के आसपास ही मेडिसिन खानी पड़े
2: जी।
3: तो इलाज की जो लंबाई है वो कई फैक्टर्स पे निर्भर करती है
2: जी।
3: उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इलाज कितना रेगुलर चल रहा है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जो दवाई खाते हैं उन्हें लगता है वो ठीक हो गए हैं और दवाई बंद कर देते हैं, और बंद करने के महीने या दो महीने में वो वापस बीमार हो जाते हैं
2: जी।
3: और उनके इलाज की टोटल ड्यूरेशन और बढ़ जाती है।
2: अच्छा।
3: वो मरीज शायद हम 1-2 साल में उसकी दवाई बंद कर सकते थे, पर उसने स्वयं से सोचा और बंद किया तो उसका इलाज और लंबा खिंच गया
2: जी। यानी लगातार चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है,
3: रेगुलर ट्रीटमेंट एंड रेगुलर फॉलोअप भी जरूरी है, क्योंकि हर दवाई के कुछ फायदे नुकसान हो सकते हैं
2: जी।
3: तो जब मरीज हमारे पास रेगुलर आ रहा होता है तो मान लीजिए हमें उसका ब्लड शुगर टेस्ट करना है कि उसका लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करना है, तो हम उससे संबंधित जांचें करा सकते हैं और उस आधार पर भविष्य का इलाज दे सकते हैं।
2: तो सर एक बात तो हमें ये समझ में आई कि सिज़ोफ्रेनिया जो है वो एक मानसिक अस्वस्थता है या मानसिक बीमारी है, तो समाज में मानसिक बीमारी के मरीजों के प्रति अपना नजरिया किस तरह से बदला जा सकता है?
3: देखिए समाज के नजरिए का बहुत फर्क पड़ता है
2: जी।
3: मेंटल हेल्थ के लिए जो ट्रीटमेंट गैप है, हमारे यहाँ एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया कि 13.9% आबादी को मध्य प्रदेश में कोई ना कोई मानसिक रोग है।
2: अच्छा,
3: पर उसमें जो ट्रीटमेंट गैप है वो 90% से भी ज्यादा है।
2: अच्छा।
3: मतलब इसमें से 90% से ज्यादा को तो कभी इलाज ही नहीं मिल पाता। वो ट्रीटमेंट गैप इस कारण ज्यादा है क्योंकि समाज में जागरूकता की कमी है या इलाज की उतनी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है। इलाज की फैसिलिटी तो धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि पहले कई जिलों में भी जैसे साइकियाट्रिस्ट

0: है।
1: जी
0: पर जब मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक रोग की बात आती है तो इंसान खुद से डील करने की कोशिश ज्यादा करता है।
1: जी
0: सबसे पहले तो वो कई बार डिनाइल में होता है या उसका परिवार डिनाइल में होता है कि कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
1: सहज स्वीकार नहीं कर सकते।
0: जब धीरे धीरे प्रॉब्लम के सिम्टम बढ़ते हैं
1: जी
0: और विकरालता दिखाई देती है बीमारी की, तब भी कई बार सामाजिक प्रेशर की वजह से या स्टिग्मा की वजह से वो इलाज को स्वीकार नहीं कर पाते।
1: जी
0: तो समाज को अपने नजरे में ये परिवर्तन लाना जरूरी है, उसका जागरूक होना बहुत आवश्यक है।
1: जी
0: उसे मानसिक रोग को शारीरिक रोगों की तरह समझना बड़ा आवश्यक है।
1: जी
0: ये बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं।
1: जी
0: तो वो समझते हुए अगर वो समय पे रहते इलाज कराएंगे तो बीमारी लाइलाज नहीं होगी। जितनी जल्दी मरीज को इलाज मिले उतना उसके लिए लॉन्ग टर्म अच्छा रहता है।
1: जी तो सर, मुझे जहाँ तक ऐसा आपकी बातों से ये चीज़ समझ में आई कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमको शिक्षा देनी चाहिए, बचपन से ही कुछ हमारे एजुकेशन में कुछ अध्याय इस तरह के जोड़ना चाहिए जिससे हम मानसिक स्वस्थता और अस्वस्थता को पहचान सके।
0: बहुत आवश्यक है
1: जी।
0: इसी नजरिए से या इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह के दिवस जैसे विश्व सिज़ोफ्रेनिया दिवस है या विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है या वर्ल्ड बाइपोलर डे है, इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं। पर और ज्यादा करने की आवश्यकता है मीडिया के माध्यम से भी, सरकारों के माध्यम से भी। जैसे मान लीजिए पल्स पोलियो के लिए जो अभियान चलाया गया या ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो अभियान चलाया जाता है, वैसा ही एक अभियान मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी चलाया जाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: और आत्महत्या एक गंभीर विषय है। कई बार सिज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त व्यक्ति भी आत्महत्या कर लेता है।
1: अच्छा।
0: तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, हो सकता है वो मानसिक रोगी हो सकता है वो मानसिक रोगी ना हो, उसके अंदर आत्महत्या को कम करने के लिए भी मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझना बहुत आवश्यक
1: बहुत जरूरी है। जी तो सर, आपने सिज़ोफ्रेनिया से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसके बारे में कहा भी जाता है कि चुप्पी नहीं, समझ और सहारा ही मानसिक स्वास्थ्य की असली दवा है। तो आप स्टूडियो में आए और आपने हमसे इस बीमारी के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जो कि आधारित था सिज़ोफ्रेनिया पर। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। श्रोताओं, मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व सिज़ोफ्रेनिया जागरूकता दिवस के ऊपर हमारा विशेष कार्यक्रम। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सीना हमारा गर्व। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामाजी से चर्चा।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम भारतीय सेना के इतिहास के उन गौरवशाली पलों को जी रहे हैं जिसमें कि हमारी सेना के तीनों अंगों, चाहे वो थल सेना हो या फिर वायु सेना या फिर हमारी नौसेना हो, उनके एक बेहतरीन समन्वय, उनके अदम्य साहस और उनके बेहतरीन रण कौशल का अद्भुत मेल हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की, जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था और एक नए देश बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ। कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने जिक्र किया है कि लड़ाई में हमारी वायुसेना ने और हमारी नौसेना ने अपनी अपनी भूमिकाएं किस तरह निभाई। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारी आर्मी यानी कि थल सेना ने इस युद्ध में किस तरह अपना पराक्रम दिखाया कि मात्र 14 दिनों के भीतर पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक बार फिर हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर।
4: नमस्कार बुरुआ जी एंड नमस्कार श्रोताओं। इट इज सेड दैट विक्ट्री लाइज अंडर द फीट ऑफ सोल्जर।
3: जी,
4: नो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री कैन बी क्लेम अंटिल बूट्स आर फिजिकली ऑन द ग्राउंड। जो विजय होती है
3: जी,
4: वो तभी मानी जाती है जब उस जमीन पे आपका
3: हक हो, अधिकार
4: हो, कब्जा हो,
3: जी बिल्कुल
4: खड़े होते हैं। तो ये काम जो है आर्म फोर्सेस में आर्मी करती है।
3: जी बिल्कुल
4: ठीक। एंड आर्मी जो है तीनों अंगों में, मतलब उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इट्स अ डिसाइसिव फैक्टर।
3: जी,
4: तो सिमिलरली 71 वॉर में भी आर्मी प्लेड द डिसाइसिव रोल।
3: जी,
4: एंड उसने लैंड, एयर और सी तीनों में जो है
3: जी
4: हिस्सा लेके जो है ये ऑपरेशन पूरा किया
3: जी
4: था। जो 71 वॉर था वो हम जैसे समझते हैं कि ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ा गया था
3: जी,
4: लेकिन जो आर्मी है वो एक्टिवली सारे बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड थी, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में भी जो चाइना है
3: जी जी
4: उससे भी हमें खतरा था
3: जी बिल्कुल,
4: कि इस दौरान अगर उन्होंने वो फ्रंट खोल दिया
3: जी, पाकिस्तान का साथ दे दिया,
4: पाकिस्तान का साथ दे दिया तो भी उसको हमें कंट्रोल करना है
3: जी बिल्कुल।
4: ये ऑपरेशन है 71 का, इसको हम दो भागों में जो है डिस्कस करेंगे
3: जी बिल्कुल,
4: ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर
3: जी।
4: तो ईस्टर्न सेक्टर में बांग्लादेश जो इसको कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहते थे,
3: हाँ जी,
4: जहाँ की मेन मतलब जो है जिसको आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी। तो वॉर जैसे हम सबको पता है कि 3 दिसंबर को जो है शुरू हुआ था, लेकिन उसके बारे में जो है संकेत जो है काफी पहले से आने शुरू हो गए थे और दोनों कंट्रीज जो है अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है, बांग्लादेश में जो है काफी जो है टर्मोइल चल रहा था, रिवोल्ट चल रहा था, पाकिस्तान ने जो है काफी फोर्सेस डिप्लॉय कर रखी थी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइमरली अगेंस्ट मुक्ति वाहिनी और अवामी लीग लीडर्स के अगेंस्ट वो लोग लड़ रहे थे
3: जी।
4: 71 की शुरुआत में ईस्ट पाकिस्तान में तकरीबन एक डिवीजन की फोर्सेस थी
3: जी,
4: जो कि वहां उन्होंने डिप्लॉय कर रही थी कि कंट्रोल करने के लिए, और ये बढ़ते बढ़ते जो है
3: जी
4: 5 डिवीजन तक पहुंच गया था।
3: यानी उन्हें भी लगने लगा था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर
4: जा रही है
3: जी।
4: उसके अलावा जो है वहां पे तकरीबन 75,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी
3: अच्छा
4: पाकिस्तान की। और ये जो सिचुएशन थी जब डिटोरिएट होने लग गई तो इससे क्या है इंडिया में जो है रिफ्यूजीज आने शुरू हो गए थे, और इसके अलावा जो है ये बिल्डअप जो पाकिस्तान कर रहा था वो एक कॉज ऑफ कंसर्न बन गया था इंडिया के लिए। तो इसको काउंटर करने के लिए आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टस लिली लॉन्च किया था।
3: अच्छा,
4: काउंटर बिल्डअप के लिए जो पाकिस्तान जो बिल्डअप कर रहा था उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए इंडियन फॉर्मेशन ने उसी तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन करना शुरू किया, ट्रेनिंग करनी शुरू करी, वेपन्स वगैरह जो है कलेक्शन एंड देन कंसंट्रेशन जो है बॉर्डर के ऊपर मिड अगस्त से शुरू हो गया जो है। ईस्टर्न सेक्टर जो है एक और उसमें इशू ये है कि अगर आप देखें कि उसके साथ चाइनीज बॉर्डर भी लगता है, और तो आर्मी को यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी लड़ना था
3: जी,
4: और चाइनीज के साथ भी अलर्ट रहना था जिनका बॉर्डर सिक्किम हो गया अरुणाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ है। साथ ही साथ उस समय नॉर्थ ईस्ट में एक और जो प्रॉब्लम चल रही थी वो थी इंसर्जेंसी की।
3: अच्छा,
4: जो कि कुछ स्टेट में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम थी
3: जी,
4: उनसे भी जो है उसको
3: निपटना
4: था क्योंकि ये भी एक तरह से अगर आप देखें खतरा रहता है कि पाकिस्तान काउंटर इंसर्जेंसी के जो ग्रुप्स थे
3: जी,
4: उनका साथ देके उनको भड़का के जैसे कि वो करते भी
3: है
4: ना अगेंस्ट में खड़ा कर सकता
3: था। हाँ जी, अलगाववाद को बढ़ा दे।
4: हाँ, तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जब बांग्लादेश के साथ ईस्टर्न सेक्टर में भी लड़ रहे थे तो उस समय फोर्सेस जो थी वो और भी जगह पे एंगेज थी, उनको और भी जगह पे जो है अलर्ट रहना,
3: उतना ही सतर्क रहना
4: जरूरी था। तो अब इसमें जो प्लान किया था वो इस तरह से था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके जो इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं, इम्पोर्टेंट वाइटल लोकेशंस हैं उसको कब्जा करना है, और जल्द से जल्द जो है ढाका जो कि सीट ऑफ गवर्नेंस है उसके वहां पहुंच के उसके ऊपर
3: कब्जा करना है।
4: और इस दौरान जो पाकिस्तान की वॉर मशीनरी है
3: उसको
4: ज्यादा से ज्यादा नष्ट करना है ताकि उनका रेजिस्टेंस खत्म हो सके
3: जी।
4: अब इसमें एक अच्छी बात थी दिसंबर के महीने में कि जो ठंड का मौसम होता है जिससे जिस दौरान स्नोफॉल गिरती है तो उसमें जो हमारे हिमालयस हैं जहाँ पे नॉर्दर्न बॉर्डर चाइना के साथ बॉर्डर है
3: जी,
4: वो काफी कुछ सेफ हो जाते हैं क्योंकि बर्फ के कारण जो है रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये एक हमारे फेवर में एक बात थी। तो आर्मी लॉन्च अ वेरी वेल प्लान्ड अटैक ठीक है फ्रॉम द मल्टी डायरेक्शंस। अगर आप बांग्लादेश को देखें तो वो तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है
3: जी, बिल्कुल
4: चौथी तरफ बे ऑफ बंगाल
3: जी।
4: तो तीनों तरफ से जो है आर्मी ने जो है अटैक लॉन्च किया था। इसमें 2 कोर 4 कोर 33 कोर और 101 कम्युनिकेशन जोन एरिया, ये अलग अलग फोर्सेस थी जो अलग अलग डायरेक्शन से बढ़ी थी।
3: अच्छा,
4: और हम पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बे ऑफ बंगाल में नेवी ऑलरेडी
3: उपस्थित थी
4: और वो ऑपरेशन कैरी आउट कर रही थी है ना, और साथ साथ एयरफोर्स भी सपोर्ट में थी। तो अभी जब फोर्सेस बढ़ रही थी इनको एक और बहुत बड़ा एडवांटेज था इन द सेंस की जो लोकल पॉपुलेशन है वो सपोर्ट कर रही थी और मुक्ति वाहिनी भी जो है सपोर्ट कर रही थी, तो उनसे इनको जो है इंटेलिजेंस और गाइडेंस मतलब जो है सी देखिए रात के टाइम ऑपरेशंस कर रहे हैं और तो आपको अगर मालूम है कि रास्ता कहाँ है किधर से जाना है दुश्मन किधर है ऑलरेडी तो बहुत बड़ी मदद
3: आसानी है।
4: हाँ, जितना इंटेलिजेंस लोकल इंटेलिजेंस वाज अवेलेबल
3: जी,
4: वेल प्लान्ड ऑपरेशंस जो थे, लीडरशिप बहुत अच्छी थी
3: जी,
4: और हमने जैसे पहले जिक्र किया कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का जो है काफी अच्छा सपोर्ट था। तो इन सबको मिला के इंडियन आर्मी वॉज एबल टू कैप्चर द ऑब्जेक्टिव ठीक है ढाका पहुंचने में सफली 14 दिन के अंदर जो है
3: जी।
4: ये हम 2-3 बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं कैसे हुआ था। इस बीच में जो है आर्मी ने हेलीबॉर्न ऑपरेशंस भी कैरी आउट किए, जैसे हमने जो है एयरफोर्स के एपिसोड में जिक्र किया था उनका, एयरबॉर्न ऑपरेशंस भी किए, एम्फीबियस ऑपरेशंस भी लॉन्च किए थे है ना, एंड विच डेमोंस्ट्रेटेड इन वेरी क्लियर कट टर्म्स द जॉइंटमैनशिप बिटवीन द 3 फोर्सेस,
3: तीनों का समन्वय
4: जी, और एक एक्सपर्टीज कि ये मल्टीफेसेट ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते हैं, और इसी के कारण जो है जो फोर्सेस थी उनको विक्ट्री हासिल हुई
3: जी।
4: और हम सबको जैसे विदित है कि 93,000 सोल्जर्स के साथ पाकिस्तान ने सरेंडर किया
3: जी।
4: था। अब जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हमने इसको बहुत ही जल्दी समेट दिया
3: छोटा
4: है,
3: कर दिया,
4: छोटा कर दिया है जैसे लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 14 दिन भी होते हैं इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है
3: जी, बहुत बड़ी व्यूह रचना है सर इसके
4: पीछे, बिल्कुल बहुत
3: प्लान है बनाया हुआ पहले से ही,
4: बिल्कुल इसके ऊपर प्लानिंग है, इसके ऊपर इसमें मूवमेंट्स है, एक एक बटालियन को एक एक को जो टास्किंग दी जाती है और हर बटालियन को जैसे छोटे छोटे टास्क होते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स कैप्चर करेंगे, तो वो बहुत छोटे छोटे जो बैटल्स होती हैं
3: जी
4: मिलके जो है फिर वो
3: बड़ा उद्देश्य बनते हैं, बिल्कुल सर।
4: तो बहुत छोटी छोटी बैटल्स जो थी वो बटालियन लेवल पे, कंपनी लेवल पे, प्लेटून लेवल पे ये लड़ी गई। अगर आप बांग्लादेश का मैप भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे नाले और बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं
3: जी, बिल्कुल।
4: तो उनको एग्जैक्टली कहाँ क्रॉस करना है, वहाँ पे कई जैसे जो ब्रिज हमने देखा था कि उन्होंने तो पाकिस्तान ने ब्रिज को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो एयरबॉर्न ऑपरेशंस हेलीबॉर्न ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे, ठीक है, टांगेल में एयर ड्रॉप किया था। तो ये चाहे हमें लगे कि हमने जो है छोटा वो है लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे और बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस रहे थे जिसके कारण कि हमें ये सफलता प्राप्त हुई थी। ईस्टर्न सेक्टर में जो सारे ऑपरेशंस है इसमें मैं एक का जिक्र करना चाहूंगा,
3: जी बिल्कुल सर।
4: एक नाम है जो वीरता के तौर पे तौर के नाम पे हमेशा लिया जाता है, लांस नाइक अल्बेटिक का,
3: जी बिल्कुल,
4: 14 गार्ड्स के। तो इस बहादुर सोल्जर की कहानी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा
3: जी, बिल्कुल सर।
4: तो अल्बर्ट इक्का जी जो थे वो रांची के रहने वाले थे, 62 में उन्होंने 14 गार्ड्स ज्वाइन करी थी
3: जी,
4: और 71 वॉर में जो 14 गार्ड्स का यूनिट है उसको टास्क मिला था पाकिस्तान की एक पोजीशन जो कि गंगा सागर नाम की लोकेशन पे थी
3: जी,
4: ये अगरतला के वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, उसको ऊपर कैप्चर करने के लिए। तो जो एनिमी की जो पोजीशन थी वो काफी वेल फोर्टिफाइड थी, मतलब इन द सेंस उसमें उसको काफी मजबूती से बनाया गया था, माइनफील्ड्स लगे हुए सब कुछ था जो है, और उसमें काफी लोग थे, स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा थी। तो इसको जो है कैप्चर करना जरूरी था क्योंकि इसके कारण जो है एक और आगे लोकेशन थी अकूरा
3: जी,
4: वो उसको कैप्चर करने में मदद मिल रही थी।
3: अच्छा।
4: तो जब ये अटैक 3 दिसंबर को लॉन्च किया गया तो अल्बर्ट इक्का जी जो थे वो जो लीडिंग कंपनी थी उसका हिस्सा थे, जो कंपनी सबसे आगे जा रही थी
3: जी।
4: तो जब ये लोग आगे बढ़े तो इनके ऊपर बहुत ही इंटेंस आर्टिलरी शेलिंग और स्मॉल आर्म्स फायर आया
3: जी।
4: तो उस दौरान अल्बर्ट इक्का ने ऑब्जर्व किया कि दुश्मन की एक LMG है जो कि बहुत ज्यादा जिसके कारण की उन्हें नुकसान हो रहा, कैजुअल्टी हो रही थी। अब उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए उस बंकर के ऊपर चार्ज किया।
3: अच्छा।
4: और जो दुश्मन के जो सोल्जर्स थे दोनों उनको मार गिराया, और इस तरह से जो उन्होंने इस LMG को बिल्कुल जो है नष्ट कर दिया, ठीक है, इसमें उनको भी काफी चोटें लगी
3: जी।
4: बट इसके बावजूद जो है बहादुरी से अपने जो साथी थे कॉम्रेडशिप के साथ बढ़ते रहे आगे और जो है लड़ाई लड़ते रहे। ये और आगे बढ़े तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर जाने के बाद वो एक और अपने ऑब्जेक्टिव के पास जब पहुंचे हैं
3: जी, जी।
4: तो इनके ऊपर फिर से जो है काफी हैवी फायर आया।
3: अच्छा।
4: अब इस हैवी फायर में जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी वो मीडियम मशीन गन थी, जिससे काफी ज्यादा मतलब जो फायरिंग राउंड फायर होते हैं, तो उसके कारण जो इनका एडवांस रुक गया था। और ये जो मीडियम मशीन गन थी उसकी लोकेशन भी जो थी वो जो एक फोर्टिफाइड बंकर था जो कि बिल्डिंग के डबल स्टोरी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे थी।
3: अच्छा।
4: तो मतलब
3: ऊंचाई पर
4: ऊंचाई पे थी
3: जी।
4: वंस अगेन जो अल्बर्ट इक्का जी है उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि मैं जाके इसको नष्ट करूंगा और अपनी पर्सनल सेफ्टी का वो दरकिनार रखते हुए जो है ये बहादुर जवान आगे बढ़े और जो है वहां तक पहुंचे। वहां तक पहुंचने के बाद उन्होंने उसमें ग्रेनेड फेंका, ठीक है, जिससे कि एक जो है था अंदर सिपाही वो मर गया और दूसरा घायल हो गया, लेकिन MMG फिर भी एक्टिव थी।
3: अच्छा।
4: तो अब उन्होंने ये देखा तो फिर उन्होंने साइड से जो है चढ़ के ऊपर पहुंच के दोबारा उसके ऊपर अटैक किया
3: जी।
4: अटैक करने के बाद जो है MMG को उन्होंने मतलब न्यूट्रलाइज करा
3: जी।
4: नहीं सी, सुनने में आपको अभी भी लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन जब सामने से फायर आ रहा होता है दुश्मन होता है
3: जी।
4: और ये नहीं है कि उनको, आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ अकेले
3: कितने
4: लोग हैं
3: जी,
4: अंदर
3: जी।
4: कैसे हैं, और उन सब के बावजूद आप इनिशिएटिव लेके जो है आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने एक बार नहीं किया, ये दो बार तीन बार लगातार जो है करते रहे। एंड दिस ब्रेव सोल्जर लड़ते रहे
3: जी।
4: और इस बीच में इनको काफी इंजरीज हुई एंड अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो इन्होंने जो है लड़ते लड़ते देश के लिए अपने प्राण दिए थे। तो इसके लिए उनको जो है परमवीर चक्र से
3: सम्मानित
4: किया गया था। तो ऐसे और भी कई बैटल्स थे, ऐसे और भी कई जवान थे, ऑफिसर्स थे जो उन्होंने बहुत बहादुरी से ये जंग में हिस्सा लिया। और उसी के कारण जो है ये विजय हमें हासिल हुई
3: है। बिल्कुल सर, बिना बलिदान के इतनी बड़ी विजय मिलना तो नामुमकिन है।
4: जी। तो ये एक तरह से जो है ईस्टर्न सेक्टर का वो था
3: जिक्र
4: था जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके कारण जो है हमें विजय हासिल हुई।
3: तो सर यहाँ पर तो ये कहानी तो अधूरी है क्योंकि ये तो केवल पूर्वी भाग की बात
4: है। एग्जैक्टली,
3: क्योंकि युद्ध तो पश्चिमी भाग पर भी उतनी ही गति से जारी था।
4: बिल्कुल।
3: तो जब तक दोनों ओर से युद्ध समाप्त नहीं हो जाता या विजय नहीं मिल जाती तो युद्ध समाप्त नहीं हो सकता।
4: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: फिर अब आप हमें ये बताइए कि ऐसे ही समय में, इसी समय पर थल सेना की क्या भूमिका थी पश्चिमी भाग में।
4: अगर हम पश्चिमी भाग देखेंगे तो उसका जो फ्रंटेज है वो काफी बड़ा है
3: जी।
4: अब आप ये देखिए, लद्दाख सेक्टर से शुरू होके जो है नीचे रण ऑफ कच्छ तक The complete thing is on the western border with Pakistan, जो है हमारा। तो इस पूरे के पूरे एरिया में you can visualize कि कितना diverse terrain है,
3: high
4: altitude area है, steep mountains है, 19,000 से 20,000 की ऊंचाई पे, उसके plains हैं पंजाब के, फिर desert है राजस्थान का, सब कुछ आता है,
3: समुद्र की सीमा भी है।
4: हाँ जी। और हर एक इलाके के लिए आपको अलग अलग तरह से एक्सपर्टीज चाहिए लड़ने के लिए, अलग तरह की टैक्टिक्स चाहिए, अलग तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए, अलग तरह के हथियार चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए।
3: जी बिल्कुल।
4: हर एक कुछ अलग अलग करना पड़ता है।
3: बिल्कुल।
4: तो इट्स अ मैसिव जॉब टू कोऑर्डिनेट ऑल दीज एस्पेक्ट्स।
3: जी।
4: इसके लिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ लीडरशिप चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग, उनको जो कोऑर्डिनेट करना। एंड दिस वॉज अचीव्ड बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है। तो अगेन अगर हम बात करें, वही 3 दिसंबर से शुरू हुआ था जो है। और इसका अगर मैं जिक्र करना चाहूंगा तो अगर हम ऊपर लद्दाख सेक्टर से देखें तो लद्दाख में जो है श्योक वैली जहाँ है उसको प्रतापपुर सेक्टर बोलते हैं।
3: अच्छा।
4: तो प्रतापपुर सेक्टर जो है इट इज वन ऑफ द टफेस्ट। इसी के अंदर सियाचिन ग्लेशियर आता है।
3: अच्छा।
4: ठीक है। उस समय ऑफकोर्स सियाचिन ग्लेशियर वॉज नॉट एक्टिव इन द सेंस वहां पे ये हमारा जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं चल रहा था, वो बाद में आया था। उस समय वो एरिया डॉर्मेंट था। लेकिन उसका जो बाकी एरिया जो है LOC जो है वो तो मतलब POK का एरिया था जो है। तो उसमें जो है एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन थी, दिसंबर का महीना था और माउंटेन्स जो है मतलब 16,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई पे है वहां पे। तो वहां पे लद्दाख स्काउट और नुब्रा गार्ड्स थे, उनके अंडर में एक बहुत ही हाईली डेकोरेटेड सोल्जर थे, ऑफिसर थे, मेजर सी रेंचन।
3: अच्छा।
4: जो ऑलरेडी महावीर चक्र और सेना मेडल से
3: सम्मानित
4: थे।
3: जी, बिल्कुल।
4: तो उन्होंने जो है POK एरिया में अटैक लॉन्च किया था। और ये देखे कि कितना मतलब उन्होंने जबरदस्त अटैक करके जो है एक के बाद एक उन्होंने ऑब्जेक्टिव कैप्चर करके ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 5 गांवों के ऊपर कब्जा किया था।
3: क्या बात है।
4: जी। तुर्तुक, त्याक्षी सेल होते हुए 5 गांव थे जो उन्होंने कब्जा किए थे और ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर की जो है टेरिटरी
3: कवर करी
4: उन्होंने
3: जी।
4: एक और मजेदार बात यह है कि जो 5 गांव थे जिसमें मुस्लिम्स रहते थे उन सबने जो है इंडियन सोल्जर्स का वेलकम किया था।
3: यानी वो पाकिस्तान से त्रस्त है।
4: तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है
3: जी,
4: जो है।
3: बिल्कुल।
4: और इसके अलावा वहां पे उन्होंने एक पोस्ट पे भी कैप्चर किया था जो कि 19,000 की हाइट पे थी। तो उस मौसम में जहाँ सांस नहीं आती है
3: जी,
4: और उन दिनों तो इवन साधन भी नहीं होते थे इतने ज्यादा, उस वक्त इतनी ऊंचाई पर लड़ना काबिले तारीफ है।
3: बिल्कुल। अविश्वसनीय
4: है। अविश्वसनीय है
3: जी।
4: मैं खुद इन हाइट्स पर रहा हूँ, सचिन में रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल अभी के हालात में जबकि हमारे को इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल तब 71 के टाइम पे मतलब जो है इसमें लड़ना बहुत बड़ी बात थी। एंड इसके कारण नो डाउट ये जो ट्रुप्स थे इन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहादुरी का काम किया था। उसके लिए मेजर रिंचन साहब को एक बार फिर से महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और भी जो है काफी सारे जो लीडर्स थे, जवान थे, उनको जो है गैलेंट्री अवार्ड्स मिले थे। उसके पश्चात अगर हम थोड़ा वेस्ट में आते हैं तो कारगिल सेक्टर आता है। तो अगेन कारगिल सेक्टर वी ऑल नो के इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट सेक्टर, ठीक है, हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि उसमें सबसे हमारे लिए सबसे जरूरी है कि पूरा लद्दाख जो है उसी रोड से जुड़ता है जो कि श्रीनगर से ले जाती है
3: जी।
4: और उसको डोमिनेट जो है कुछ पोस्ट करती थी पाकिस्तान की। तो इसको सेक्टर को समय भी 1-to-1 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ग्रुप जो है इसके डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था।
3: अच्छा।
4: और ब्रिगेडियर एमएल विग जो थे वो इसको कमांड कर रहे थे, ठीक है। तो इस सेक्टर में ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किए थे इंडियन आर्मी ने और पाकिस्तान की 80 में से जो है 36 पोस्ट पे कब्जा किया था।
3: 80 में से 36
4: जी। और एक तरह से मतलब जो है पाकिस्तान का जो डोमिनेशन था इस रोड के ऊपर वो एक तरह से पूरी तरह खत्म कर दिया। इफ यू सी इट इज अ मेजर अचीवमेंट
3: जी, बिल्कुल
4: मेजर सक्सेस, ठीक है। एंड इसी दौरान जो है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से ऊपर, स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर जो है पाकिस्तान के टेरिटरी भी कब्जा किया था। और जो पाकिस्तान की वहां की जो डिफेंसेस थी
3: जी
4: उसको एक तरह से खत्म कर दिया,
3: पीछे हट गए वो
4: बिल्कुल
3: जी।
4: इसके लिए जो ब्रिगेड कमांडर साहब थे तो उनको जो है महावीर चक्र से
3: सम्मानित
4: किया गया था। एंड वेरी राइटली ही डिजर्व्ड दिस ऑनर
3: जी, बिल्कुल,
4: फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लीडरशिप एंड ब्रेवरी, ठीक है। एंड और भी जो ऑफिसर्स जो थे जिसियोस और जवान लड़े थे बहादुरी से उनको भी अवार्ड्स मिले थे जो है
3: जी।
4: इसी तरह से और हम वेस्ट में आते हैं तो श्रीनगर वैली उरी सेक्टर में जो है वी वर डिप्लॉयड इन डिफेंसिव रोल, ठीक है। यहाँ पे भी ऑफेंसिव ऑपरेशंस लॉन्च करके जो है डिफेंसिव पोस्चर्स को इम्प्रूव करा गया था एंड पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर जो है कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली जो है प्रेशर बनाए रखा था। सबसे ज्यादा जो मेजर ऑफेंसिव पाकिस्तान ने लॉन्च किया था वो पुंछ सेक्टर में 3 दिसंबर को किया था, जिसमें कि उन्होंने हमारी लोकेशन थी थानपीर और मंडी हाइट्स उस पर कब्जा किया था। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो है उसके ऊपर जो है काउंटर ऑफेंसिव करके वो दोबारा कैप्चर कर ली थी एंड उसके बाद जो है पुंछ में
3: जी
4: उनका जो है अटैक नहीं आया था, फिजल आउट हो गया था, खत्म हो गया था। फिर पाकिस्तान का और सबसे जो है फियर्स अटैक आया था वो था छम सेक्टर, जहाँ पे कि दे सक्सीडेड कैप्चरिंग मंडियाला हाइट्स, ठीक है। और उसके बाद फिर से जो है पाकिस्तान लॉन्च अ मेजर अटैक एंड कैप्चर छम। और इस सफलता के बाद पाकिस्तान ने जो है मुनव्वर तवी रिवर के अक्रॉस जो है ऑपरेशन लॉन्च करा था। यहाँ पे जो इंडियन आर्मी ने उनको जो है काफी फियर्स फाइट दिया था एंड जो इसमें जो है पाकिस्तान के काफी सारे टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए थे एंड जिससे कि पाकिस्तान जो फोर्सेस हैं उनको पीछे हटना।
3: यानी सर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के इलाके में यदि हम देखें तो लगभग सारे क्षेत्र में भारतीय सेना युद्ध में हावी रही थी और लगभग उसकी विजय थी
4: आप कह सकते हैं
3: जी,
4: क्योंकि हमने जो ऑपरेशंस वहां करे थे उसमें क्लियर कट जो है कारगिल सेक्टर, प्रतापपुर सेक्टर में हमें जो है विजय हासिल हुई थी
3: जी।
4: ऑफ कोर्स जैसे अभी हमने जिक्र किया कि छम सेक्टर में वी लॉस्ट टेरिटरी एंड इसके अलावा भी श्रीनगर में जो उरी सेक्टर था, ठीक है, उसमें इट इज नॉट दैट कि वी लॉस्ट एनीथिंग बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट मेड मेजर सक्सेस। तो ये एक तरह से इस तरह का ऑपरेशन वहां पे चला था जो है। मेजर जो लड़ाई हुई थी उसके बाद वो थी शकरगढ़ बल्ज पंजाब में
3: जी। तो सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी कि ये शकरगढ़ बल्ज कहाँ है और ये बल्ज क्या होता है।
4: देखिए बल्ज का मतलब होता है कि जमीन जो है वो एक तरह से हमारी तरफ अंदर से उठी हुई, जैसे आपने गुब्बारे में अगर हवा भरी होती है तो किस तरह से फूलता है
3: जी।
4: उसी तरह से जमीन का जो हिस्सा है जो एक तरह से पाकिस्तान का हिस्सा है जो हमारे अंदर आया हुआ है।
3: अच्छा अच्छा।
4: जिसमें कि मतलब इनफैक्ट अगर आप देखें जैसे अगर एक गुब्बारा है उसके मतलब गुब्बारे के जो पूरी बॉर्डरी है
3: जी जी जी
4: उसपे इंडियन फोर्सेस लगी हुई हैं और अंदर जो एरिया है वो पाकिस्तान का है।
3: अच्छा जी जी।
4: उसको हम बल्ज बोलते हैं,
3: मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे देश के क्षेत्र में अंदर तक
4: आया हुआ है
3: जी
4: और ये गोल शेप में
3: जी
4: है तो उसको हम बल्ज कहते हैं।
3: ओके।
4: तो ये शकरगढ़ बल्ज का जो एरिया है ये चिनाब और रावी रिवर के बीच में पड़ता है।
3: अच्छा अच्छा।
4: और इसका जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ये है कि इससे जो है हमारी जो मेन कम्युनिकेशन लाइन है जो जम्मू से जुड़ती है
3: जी,
4: जो रोड है वो इसके पास से गुजरती है।
3: अच्छा।
4: तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है कि वहां से अपने फोर्सेस लाके अटैक करके सांबा के पास हमारा जो रोड कम्युनिकेशन है उस पे कब्जा कर। तो अगर वो ऐसा कर पाने में सफल होता तो उससे जम्मू सेक्टर नदन सेक्टर को वो पूरा काट सकते थे, जिससे कि हमारे लिए काफी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। तो ये एक्सपेक्टेड था एक तरह से कि पाकिस्तान वहां पे अपना ऑपरेशन ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करेगा।
3: जी।
4: उसके कारण जो है हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो भी इस एरिया में काफी सजग थी,
3: पूर्व तैयारी में थी
4: काफी सजग थी। एंड एक तरह से जो है इंटेलिजेंस अवेलेबल भी यही थी, जैसे अभी मैंने कहा कि पाकिस्तान ने अपना आर्मर डिवीजन और एक इन्फेंट्री डिवीजन ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए इस सेक्टर में डिप्लॉय करा हुआ है। और पाकिस्तान ने जो बल्ज है इसकी जो डिफेंसेस भी बहुत स्ट्रांग बनाई हुई थी, क्योंकि उसको भी एक खतरा है कि अगर हम चारों तरफ हैं तो हम भी अंदर आ सकते हैं और या उसको कट कर सकते हैं। और उन्होंने काफी एक्सटेंसिव माइंड फील्ड उसमें वहां पर लगा रखी थी ताकि किसी तरह से भी उनको टेरिटरी लॉस ना हो, मतलब पराजय का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस इलाके में जो है पाकिस्तान ने ऑपरेशन नहीं लॉन्च किया।
3: अच्छा।
4: इन स्पाइट ऑफ दिस कंफर्मेशन की उनकी फोर्सेस थी, उन्होंने ऑफेंसिव नहीं लॉन्च किया, इंडियन आर्मी लॉन्च इस ऑफेंसिव।
3: अच्छा, यानी पहले मौका भारतीय सेना को मिल गया।
4: हाँ,
3: ले लिया भारतीय सेना ने।
4: तो 5 दिसंबर को जो हमारी वन कोर थी उसके साथ जो है इंडियन आर्मी लॉन्च ऑफेंसिव विद द एम ऑफ कैप्चरिंग शकरगढ़ बल्ज, मतलब इस बल्ज को कैप्चर करने के लिए लॉन्च किया था। और इस ऑफेंसिव में अगेन जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, अब की एक जैसे अब हम बात कर रहे हैं बल्ज पर अगर अटैक किया है तो इसमें अलग अलग डिविजन्स को टास्क दिए गए थे, तो उसमें जो है अलग अलग जो यूनिट डिविजन के अंदर ब्रिगेड्स थे उनके टास्क थे, फिर यूनिट्स के टास्क थे, तो बहुत सारी बैटल्स मतलब जो है लड़ी गई थी।
3: अच्छा।
4: एक ही टाइम पे जो है कई जगह पे जो है बैटल्स लड़ाई चल रही थी। इसमें जो एक बैटल लड़ी गई थी जिसको बैटल ऑफ बसंतर के नाम से जाना जाता है,
3: बेहद मशहूर है सर,
4: बेहद मशहूर है
3: जी।
4: एंड दिस वाज वन ऑफ द फियर्सेस्ट बैटल ऑफ 71 वॉर, मतलब सबसे ज्यादा जो है आप ये देखिए इस बैटल के अंदर 2 परमवीर चक्र लोगों को सम्मानित किया गया था ऑफिसर्स को, तो मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि कितना मतलब जो है फियर्स बैटल रहा था।
3: सर इस सिलसिले को हम तो जारी रखना चाहते हैं लेकिन समय अभाव है और आज के एपिसोड का यहीं पर समय जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो यदि बसंतर की इस लड़ाई को हम अगले एपिसोड में यदि आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए और हम भी सुनने के लिए बेताब रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। सर
4: ज़रूर पूर्वा जी, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे
3: जी सर
4: अगले एपिसोड में।
3: जी बिल्कुल सर, और हम भी इंतज़ार करेंगे इस बैटल को सुनने के लिए क्योंकि ये एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही बहादुरी से भरी हुई एक जंग है।
4: जी बिल्कुल सही कहा
3: जी सर। तो श्रोताओं, सन 1971 में भारत ने केवल युद्ध ही नहीं जीता बल्कि इतिहास को बदल के रख दिया, इतिहास की दिशा बदल दी और इस युद्ध ने विश्व का भूगोल ही नहीं बदला बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी बढ़ा दिया। और ये जंग जिसमें हम शकरगढ़ बल्ज तक पहुंच गए हैं इसे हम यूं ही जारी रखेंगे आगे भी और इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले हफ्ते तक। थैंक यू सर, आज आप हमारे बीच आए और इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी हमारे साथ शेयर की।
4: थैंक यू पूर्वा जी एंड थैंक यू श्रोताओं। जय हिंद।
3: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने और ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का और मैं थी आपके साथ आपके अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति अब इस कार्यक्रम से, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक भारत के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे
4: भारतीय वायुसेना आकाश की विजेता।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: ओ दादू, ये क्या था? इतनी तेज आवाज और कितना तेज उड़ रहा था दादू। वो देखो ना, कितना छोटा दिख रहा है इतनी ऊपर, लेकिन आवाज अब भी कितनी तेज आ रही है।
2: वो कोई आम जहाज नहीं था, वो भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट था।
1: वायुसेना दादू, इसके बारे में बताइए ना। ये सेना युद्ध के समय किस तरह से काम करती है, क्या क्या काम करती है और कब कब काम करती है?
2: अरे अरे अरे रुचि बेटा, थोड़ा आराम से। एक साथ इतने सारे सवाल पूछोगी, मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा?
1: सॉरी दादू। अच्छा ठीक है, अब मैं एक एक करके आपसे सवाल करूंगी।
2: ये हुई ना बात, चलो अब बाकी की एक्सरसाइज कल करेंगे। तो आज बात करते हैं वायुसेना पर। पहले मैं बेटा बैठ जाऊं कहीं?
1: हाँ दादू बिल्कुल।
2: हाँ तुम भी बैठो बिटिया।
1: हाँ दादू मैं बैठ गई।
2: हाँ अब पूछो, तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल हैं?
1: सवाल ये हैं दादाजी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वायुसेना क्या है।
2: बिटिया भारतीय वायुसेना सिर्फ विमान उड़ाने वाली फोर्स नहीं है।
1: अच्छा?
2: ये देश की हवाई सुरक्षा की ढाल है। ये आसमान में तैनात वो ताकत है जो हर पल हर दिशा से आने वाले खतरे पर नजर रखती है। तुमने तीन सेनाओं के बारे में तो सुना है ना, जिसमें से दो के विषय में हम पहले बात भी कर चुके हैं।
1: थल सेना, नौसेना।
2: वेरी गुड। थल सेना जमीन की रक्षा के लिए, नौसेना समुद्र की रक्षा के लिए, और वायुसेना
1: आकाश की रक्षा के लिए। मतलब अगर कोई दुश्मन आसमान से हमारे ऊपर हमला करे तो उसे वायुसेना ही रोकती होगी।
2: बिल्कुल सही बेटा। और वायुसेना सिर्फ दुश्मन को रोकती ही नहीं, जरूरत पड़ने पर जवाब भी देती है।
1: दादू, भारतीय वायुसेना का कोई आदर्श वाक्य भी है क्या?
2: हाँ बिटिया, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम्, जिसका मतलब होता है महिमा के साथ आकाश को छूना।
1: वाह दादू, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका अर्थ और भी गहरा होगा, सही कहा ना मैंने?
2: हाँ हाँ बिटिया, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक प्रेरणा है। तुम जानती हो इस वाक्य को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, उस समय अर्जुन देखते हैं एक ऐसा रूप जो तेजस्वी है, जो अनगिनत रंगों से भरा हुआ है, जो आकाश तक फैल रहा है। और उस अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन के मन में आश्चर्य भी होता है और एक गहरा भय भी।
1: मतलब वो दृश्य बहुत शक्तिशाली रहा होगा दादाजी।
2: हाँ बेटा, उसी भावना को ये श्लोक बताता है। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेक वर्णम् व्यात्ताननम् दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितांतरात्मा धरतिम नाविंदामी शमम च विष्णु।
1: इसका भाव क्या है दादाजी?
2: इसका भाव है बेटा, हे प्रभु, आपका रूप इतना विशाल, इतना तेजस्वी है कि वो आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। आपकी चमकती आंखें और विराट स्वरूप देखकर मन भय और आश्चर्य से भर जाता है और आत्मनियंत्रण भी डगमगा सा जाता है।
1: लेकिन दादाजी, इस श्लोक का वायुसेना के आदर्श वाक्य से क्या संबंध है भला?
2: बिटिया, जैसे भगवान का वो रूप असीम शक्ति और तेज का प्रतीक था, वैसे ही भारतीय वायुसेना भी अपनी ताकत, गति और तकनीक से दुश्मन को अभिभूत कर देती है। वायुसेना का उद्देश्य है आकाश में इतनी ताकत से उड़ना और पहरा देना कि कोई भी दुश्मन भारत की ओर देखने से पहले कई बार सोचे।
1: दादाजी, मैं समझ रही हूँ। मतलब नभः स्पृशं दीप्तम् सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि वायुसेना की आत्मा है।
2: बिल्कुल बिटिया, ये उस ऊंचाई की पहचान है जहां सिर्फ ताकत नहीं, हम भारतीयों का गौरव भी दिखाई देता है।
1: दादू, अब मैं जब भी आसमान में देखूंगी ना, मुझे वही दीप्त शक्ति याद आएगी।
2: और याद रखना बिटिया, जो आकाश को छूने का सपना देखते हैं, वही इतिहास बनाते हैं।
1: दादू, पहले के जमाने में तो लोग तलवार और बंदूक से लड़ा करते थे, तो फिर ये वायुसेना कब और कैसे बनाई गई?
2: देखो बेटा, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसी तरह समय के साथ युद्ध का तरीका भी बदल गया। पहले युद्ध जमीन पर ही हुआ करते थे, फिर तोपें और जहाज आए, और फिर युद्ध आसमान तक पहुंच गया। जब दुश्मन आसमान से हमला करने लगा तो जरूरत पड़ी एक ऐसी ताकत की जो आसमान में जाकर दुश्मन का मुकाबला कर सके।
1: ओ, अब समझी मैं। दादू, आपने बताया था कि वायुसेना बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर से वही सवाल कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये भी तो बताइए।
2: बिटिया, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी।
1: मतलब आजादी से पहले ही?
2: हाँ बिटिया, और इसकी पहली उड़ान हुई थी 1 अप्रैल 1933 को। उस समय वायुसेना बहुत छोटी थी, सिर्फ 6 अधिकारी और 19 वायु सैनिक थे।
1: मतलब बहुत छोटी सी शुरुआत थी दादाजी।
2: हाँ बेटा, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। उस समय जो विमान थे वे थे वेस्टलैंड वापिती, और इनसे बनाया गया पहला स्क्वाड्रन।
1: दादाजी, ये स्क्वाड्रन क्या होता है?
2: बेटा, स्क्वाड्रन मतलब विमानों और सैनिकों की एक टीम जो मिलकर मिशन पूरा करती है। कुछ ही सालों में 1936 से 1938 के बीच वायुसेना ने उत्तर पश्चिम के इलाकों में भारतीय सेना की मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने मीरान शाह उत्तरी वजीरिस्तान से उड़ान भरकर उस समय के अभियानों में सहयोग दिया।
1: मतलब ये शुरुआत से ही सारी सेना एक साथ काम कर रही थी।
2: हाँ बिल्कुल, फिर धीरे धीरे वायुसेना की ताकत बढ़ती गई, और ए फ्लाइट से सन 1936 में बी फ्लाइट बनी, और फिर सन 1938 में सी फ्लाइट, और इस तरह नंबर 1 स्क्वाड्रन पूरी ताकत में आ गया।
1: ओ, यानी धीरे धीरे एक पूरी टीम तैयार की गई थी।
2: हाँ बेटा, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय भारतीय वायुसेना सिर्फ एक ही सक्रिय यूनिट थी, लेकिन तब तक 16 अधिकारी और लगभग 600 से ज्यादा जवान इसमें शामिल हो चुके थे।
1: दादू, ये सेना हमारी रक्षा के लिए समय के साथ बनी, और इतनी छोटी शुरुआत से आज इतनी बड़ी ताकत बन गई दादाजी।
2: बिल्कुल बेटा, बहुत बड़ी ताकत बन गई है।
1: दादू, इतनी बड़ी वायुसेना को कौन संभालता है? इतने सारे विमान, अधिकारी, ये सारा सिस्टम मला कैसे चलता है?
2: बताता हूँ बेटा, अच्छा सवाल है। हर बड़ी ताकत को चलाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व जरूरी होता है। वायुसेना का सिस्टम भी ऐसा ही काम करता है। सबसे ऊपर होते हैं एयर चीफ मार्शल, यही पूरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख होते हैं।
1: मतलब ये पूरे सिस्टम को चलाते हैं, और पूरी वायुसेना की कमान इनके ही हाथ में होती है।
2: बिल्कुल सही बेटा, लेकिन बिटिया, इतनी बड़ी सेना को एक इंसान अकेले नहीं चला सकता, इसलिए उनके नीचे अलग अलग अधिकारी होते हैं जो अलग अलग काम संभालते हैं।
1: वो कैसे दादाजी?
2: ये विभाग तय करता है बेटा कि कहां, कब और कैसे कार्यवाही करनी है। हर विभाग प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करता है। ट्रेनिंग विभाग में जवानों को, पायलट्स को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। तकनीकी विभाग विमान, मशीन और उपकरण सही हालत में रहें, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह लॉजिस्टिक्स, ईंधन, हथियार, खाना, जरूरी सामान सब समय पर पहुंचे, ये काम इस विभाग का होता है।
1: मतलब हर काम के लिए अलग अलग टीम होती है दादाजी।
2: बिल्कुल, यही वजह है कि वायुसेना इतनी सटीक और मजबूत तरीके से काम करती है। और सबसे जरूरी बात, पूरी वायुसेना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है बेटा।
1: मतलब ये सिर्फ सेना नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है दादाजी।
2: हाँ बिटिया, ये सिर्फ एक संगठन नहीं, ये देश की सुरक्षा की रीढ़ है। रीढ़,
1: दादू, जब कोई खतरा आता है तो वायुसेना कैसे काम करती है?
2: देखो बेटा, मान लो रडार पर कोई संदिग्ध विमान दिखाई देता है, तुरंत कंट्रोल रूम अलर्ट होता है, पास के एयरबेस को सूचना दी जाती है, पायलट्स को आदेश मिलता है, कुछ ही मिनटों में फाइटर जेट उड़ान भरता है और फिर हवा में जाकर उस खतरे को पहचानता है और जरूरत हो तो कार्यवाही करता है।
1: वाह दादू, ये तो फिल्मों के जैसा लगता है।
2: अरे बेटा, फिल्में तो हमारे देश के इन असली हीरोज से प्रेरणा लेकर बनती हैं।
1: दादू, आपने बताया था कि वायुसेना आसमान से देश की रक्षा करती है, वो कैसे भला? और इनके पास कौन कौन से जहाज होते हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं, जरा ये भी तो बताइए।
2: बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। देखो, वायुसेना की असली ताकत है उसके आधुनिक विमान और घातक हथियार। सबसे पहले लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट्स के बारे में सुनो। ये लड़ाकू विमान वो जेट होते हैं जो सीधे दुश्मन से लड़ते हैं, जैसे भारतीय बेड़े की सुखोई 30 MKI। ये बहुत ताकतवर और लंबी दूर तक उड़ सकता है।
1: जी दादू, टीवी पर अक्सर इसके बारे में मैं सुनती रहती हूँ।
2: फिर है बेटा राफेल, जो बेहद ही आधुनिक तकनीक वाला बहुत सटीक हमला करता है। इसके बाद आता है सुखोई, जो भारत का स्वदेशी जहाज है और सबसे तेज और हल्के जेट में आता है।
1: मतलब ये आसमान में ही दुश्मन से लड़ लेते हैं दादाजी?
2: बिल्कुल, यही हमारे आसमान के पैनी नजर वाले योद्धा हैं बेटा।
1: दादू, भारतीय वायुसेना के बेड़े में और कौन कौन से जहाज हैं?
2: ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिनके बारे में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ बेटा। इसके अलावा दो बेहद ही खास विमान भारतीय वायुसेना के पास हैं, C-17 ग्लोबल मास्टर तृतीय, जो भारी सामान ले जाने के लिए है, और C-130 जे सुपर हरक्यूलस, जो कि बेहद ही खास मिशन के लिए उपयोग किया जाता है।
1: ओ, मतलब ये सेना की मदद करते हैं।
2: बिल्कुल बेटा, इसके अलावा HAL ध्रुव रेस्क्यू और सपोर्ट के लिए AH-64 अपाचे दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निगरानी और रडार, इन विमानों का जखीरा भी हमारे पास है।
1: अच्छा दादाजी, एक सवाल और आता है दिमाग में।
2: पूछो बेटा।
1: क्या कुछ ऐसे विमान भी होते हैं जो सिर्फ नजर रखने का काम करते हो?
2: हाँ बिल्कुल बेटा, DRDO नेत्र और इवाक्स ऐसे ही विमान हैं। ये आसमान में आंख की तरह होते हैं, दुश्मन को पहले ही पहचान लेते हैं।
1: और हथियार?
2: वायुसेना के पास कई तरह के आधुनिक हथियार होते हैं बेटा, जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र, हवा से हवा में मार के लिए बहुत तेज और सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल है। वहीं लेजर गाइडेड बम, स्मार्ट बम, जो खुद लक्ष्य पहचान लेते हैं और सही जगह जाकर गिरते हैं।
1: साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग दादू।
2: यस इट इज बेटा। आज की वायुसेना सिर्फ ताकत नहीं, तकनीक भी है। GPS सिस्टम, नाइट विजन, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में गिनी जाती है बेटा। एक बात और बेटा, वायुसेना के पास कई तरह के विमान होते हैं।
1: जैसे?
2: जैसे कि फाइटर जेट्स, जो दुश्मन से लड़ने के लिए बहुत तेज और फुर्तीले होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो सैनिक और सामान ले जाने के लिए उपयोगी होते हैं, हेलीकॉप्टर, जिनका उपयोग रेस्क्यू, मेडिकल सहायता, पहाड़ी इलाकों में सपोर्ट के लिए किया जाता है, और निगरानी विमान, जो दुश्मन पर नजर रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: दादाजी, क्या वायुसेना के पास आज के जमाने की ड्रोन और आधुनिक तकनीक भी जुड़ चुकी है?
2: हाँ बिटिया, क्योंकि अब वायुसेना सिर्फ लड़ती नहीं, दुश्मन को देखती है और जरूरतमंद को बचाती है और मदद करती है।
1: दादू, जब वो पायलट इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं या मौसम खराब होने पर कभी कभी तो किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में उन्हें ऊपर से जंप भी करनी होती होगी, तो क्या उन्हें डर नहीं लगता?
2: डर तो बेटा हर इंसान को लगता है, लेकिन सैनिक वो होता है जो डर के बावजूद अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: जो पायलट इतने तेज जेट उड़ाते हैं, उनके पायलट बनने के प्रशिक्षण की शुरुआत कैसे होती है, थोड़ा ये भी तो बताइए।
2: बताता हूँ बेटा, कोई भी पायलट बन सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए चाहिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और मजबूत इरादा।
1: ये तो मैं जानती हूँ दादाजी। आप ये बताइए, वायुसेना में जाने के कौन कौन से रास्ते हैं?
2: बेटा, अगर तुम 12वीं के बाद जाना चाहो ना, तो एक एग्जाम होता है NDA। उसमें पहले पेपर देना होता है, फिर इंटरव्यू और फिर मेडिकल।
1: और अगर कोई कॉलेज के बाद जाना चाहे तो?
2: तब आता है CDS, यानी ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम देना होता है, फिर इंटरव्यू और बाकी सारी प्रक्रिया।
1: और दादू, वायुसेना का अपना भी कोई एग्जाम होता है क्या?
2: हाँ हाँ, बिल्कुल। उसे कहते हैं FCAT, यानी एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये खास वायुसेना के लिए होता है बेटा, जिससे तुम पायलट भी बन सकती हो और ग्राउंड ड्यूटी में भी जा सकती हो। लेकिन बिटिया, इन सब में एक चीज सबसे खास होती है, SSB इंटरव्यू।
1: वो इतना खास क्यों है दादाजी?
2: क्योंकि वहाँ सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देखा जाता, वहाँ देखा जाता है तुम्हारा आत्मविश्वास, सोचने का तरीका और मुश्किल समय में तुम कैसे फैसले लेती हो।
1: मतलब वहाँ होती है इंसान की असली पहचान।
2: बिल्कुल, वहीं तय होता है कि तुम वर्दी के लायक हो या नहीं।
1: अच्छा दादू, किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट होने के बाद फिर क्या होता है?
2: असली सफर तो तभी शुरू होता है मेरे बच्चे, जब एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है और यहीं से तैयार होते हैं भारत के भविष्य के पायलट्स।
1: अच्छा दादाजी, ट्रेनिंग के कितने फेज होते हैं और क्या ये आसान होती है?
2: नहीं बिटिया, बिल्कुल आसान नहीं होती। ट्रेनिंग धीरे धीरे एक एक कदम करके होती है। सबसे पहले उन्हें किताबों से समझाया जाता है कि विमान कैसे उड़ता है, हवा में संतुलन कैसे बनाता है, रास्ता कैसे तय करते हैं। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान थ्योरी, एरोडायनामिक्स, नेविगेशन पढ़ाया जाता है।
1: मतलब पहले दिमाग की ट्रेनिंग होती है?
2: हाँ, और फिर आता है सबसे मुश्किल पार्ट, जिसमें पायलट ट्रेनिंग की शुरुआत छोटे छोटे विमान से होती है, धीरे धीरे बड़े और तेज जेट तक पहुंचने के लिए।
1: हो, मतलब धीरे धीरे एक्सपर्ट बनाते हैं। दादाजी, ये तो बड़ा मजेदार है। फिर अगले फेज में क्या होता है?
2: इसके बाद सिखाया जाता है कि अगर युद्ध हो जाए तो क्या करना है, यानी हथियार कैसे इस्तेमाल करने हैं, दुश्मन का सामना कैसे करना है।
1: मतलब असली जंग की तैयारी यहीं से शुरू होती है।
2: हाँ बेटा, यहाँ अपने जीवन को बचाने की तैयारी कराई जाती है। मानो कि अगर पायलट कहीं फंस जाए तो खुद को कैसे बचाए समुद्र में, जंगल में, पहाड़ों में, हर जगह उन्हें जीना सिखाया जाता है बेटा।
1: मतलब उन्हें हर लिहाज से कठोर बनाया जाता है।
2: बिल्कुल बेटा, इसी ट्रेनिंग से एक आम इंसान एक मजबूत सैनिक बनता है, क्योंकि एक पायलट को सिर्फ उड़ना नहीं है बल्कि हर स्थिति में निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए।
1: अच्छा, अब तो आप जान गए होंगे कि मेरा अगला सवाल क्या होगा।
2: पूछो, मैं कैसे जानूंगा जब तक तुम बताओगी नहीं बेटा।
1: दादाजी, मेरा वही सवाल कि क्या लड़कियां भी फाइटर पायलट बन सकती हैं?
2: अच्छा, तो बेटा मेरा भी वही पुराना जवाब, आज की बेटियां तो सारा का सारा आसमान जीत रही हैं बेटा। महिलाएं अब फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट, इंजीनियर, यहाँ तक कि ग्राउंड ऑफिसर भी बन रही हैं। वो कहते हैं ना कि आज की नारी सब पर भारी, वो सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि देश की रक्षा भी कर रही है।
1: दादाजी, मतलब मैं भी एयरफोर्स में जाकर एक फाइटर जेट उड़ा सकती हूँ ना, और एक वायु सैनिक भी बन सकती हूँ?
2: बिल्कुल बन सकती हो बेटा, जरूर, और बनोगी भी।
1: दादू, वायुसेना में कौन कौन सी पोस्ट होती है?
2: बिटिया, वायुसेना में इन्हें पोस्ट नहीं, रैंक कहा जाता है, रैंक।
1: और इसकी शुरुआत कैसे होती है?
2: फ्लाइंग ऑफिसर, यहीं से एक ट्रेनिंग का करियर शुरू होता है बेटा। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन, फिर एयर मार्शल, और सबसे ऊपर होते हैं एयर चीफ मार्शल।
1: मतलब जैसे जैसे रैंक बढ़ती है काम भी बदलता रहता है।
2: बिल्कुल बेटा, जितना ऊपर रैंक जाता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है।
1: ओह, मतलब हर रैंक के साथ भरोसा और जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है दादाजी।
2: बिल्कुल बिटिया, यही अनुशासन और जिम्मेदारी वायुसेना को मजबूत बनाती है।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: क्या वायुसेना सिर्फ युद्ध में ही काम आती है?
2: नहीं बिटिया, असली महानता सिर्फ युद्ध में नहीं सेवा में भी होती है। जब कहीं बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, लोग किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, तब सबसे पहले वायुसेना उनकी मदद को पहुंचती है।
1: जैसे हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाना, खाना और दवाइयां पहुंचाना

0: ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कईयों ने वीरता से देश के लिए युद्ध लड़े हैं, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र, वीर चक्र मिलते हैं। और ये बस मेडल नहीं है, बल्कि देश के लिए उन वीरों के बलिदान की असली पहचान है।
1: दादू।
0: हाँ बेटा।
1: आपने युद्धों की बात की, क्या वायुसेना ने कभी कोई बड़ा ऑपरेशन भी किया है?
0: बिल्कुल किया है बिटिया। एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, ऑपरेशन सफेद सागर।
1: ये कब हुआ था दादाजी?
0: देखो बेटा, ये ऑपरेशन हुआ था 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, जब दुश्मन ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था।
1: इतनी ऊंचाई पर लड़ाई? वहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल होता होगा दादाजी।
0: हाँ बेटा, यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी। ऑपरेशन में वायुसेना की भूमिका बहुत अहम थी। भारतीय वायुसेना को जिम्मेदारी दी गई कि वो दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाए और भारतीय सेना की मदद करे। और इसके अलावा वायुसेना का एक और काम था, पहाड़ों में छिपे दुश्मन को बाहर निकालना।
1: लेकिन दादू, इतनी ऊंचाई पर हमला करना आसान तो नहीं रहा होगा?
0: बिल्कुल नहीं बिटिया, वहाँ हवा बहुत पतली होती है, तापमान बहुत कम होता है और लक्ष्य साफ दिखाई नहीं देता है बेटा। फिर भी हमारे वायुसेना के जाबाजों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सटीक हमले किए।
1: अच्छा दादाजी, इस ऑपरेशन में कौन कौन से विमान इस्तेमाल किए गए थे?
0: इस ऑपरेशन में कई विमानों का इस्तेमाल हुआ बेटा, जैसे MiG-21, MiG-27, Mirage-2000। तुम्हें पता है, इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका Mirage-2000 की रही, जिसने सटीक बमबारी करके दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया।
1: सच में दादू?
0: हाँ बेटा।
1: इस ऑपरेशन की और भी खास बातें होंगी ना, वो भी तो बताइए।
0: खास बात तो यही है कि ये पहली बार था जब इतनी ऊंचाई पर एयर पावर का इस्तेमाल हुआ बेटा, और हमारी वायु वीरों को हर सेकंड खतरे का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस युद्ध में अद्भुत साहस और कौशल दिखाया।
1: मतलब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ाई लड़ी दादाजी। ऑपरेशन सिंदूर भी तो इसी तरह के साहस का प्रतीक है ना?
0: हाँ बिटिया, यही असली वीरता है। ऑपरेशन सफेद सागर ने कारगिल युद्ध में भारत की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर हमारे गौरव की रक्षा के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। ये ऑपरेशन बताता है कि हम कोई भी सीमा पार करके दुश्मन को उसके घर में जाकर सबक सिखा सकते हैं बेटा।
1: दादू, अब समझ में आया कि वायुसेना सिर्फ आसमान में प्लेन्स नहीं उड़ाती, बल्कि जीत और हौसलों के पंखों से देश की रक्षा भी करती है।
0: बिल्कुल मेरी प्यारी बच्ची, जब देश को जरूरत होती है तो ये आकाश के योद्धा इतिहास रच देते हैं।
1: अच्छा दादाजी, ये पासिंग आउट परेड क्या होती है? मैंने कई बार पहले इसके बारे में सुना हुआ है।
0: पासिंग आउट परेड वो खास दिन होता है जब एक कैडेट की कठिन ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, और उसी दिन वो आधिकारिक तौर पर देश की सेना का हिस्सा भी बन जाता है।
1: मतलब ये उनका फाइनल एग्जाम जैसा होता है?
0: हाँ, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम नहीं होता, ये उनके संघर्ष, मेहनत और सपनों का जश्न होता है बेटा। इस दिन सभी कैडेट्स एकदम अनुशासन में एक जैसी चाल में परेड करते हैं।
1: अच्छा दादाजी, उनके परिवार वाले भी इसमें शामिल होते हैं क्या?
0: हाँ बेटा, माता पिता, परिवार सभी आते हैं। अपने बच्चों को वर्दी में देखकर उनकी आंखों में गर्व के आंसू होते हैं बेटा।
1: दादू, ये पल बहुत भावुक पल होता होगा ना?
0: हाँ बेटा, सबसे खास पल होता है जब कैडेट को उसके विंग्स या रैंक मिलते हैं। उसी पल वो एक प्रशिक्षु नहीं बल्कि देश का रक्षक बन जाता है।
1: मतलब उस दिन उनका सपना सच हो जाता है और सारी मेहनत सफल हो जाती होगी दादाजी।
0: हाँ बेटा, पासिंग आउट परेड सिर्फ एक समारोह नहीं, ये उस वादे का दिन है जब एक जवान कहता है, अब मेरा जीवन देश के नाम।
1: दादू, अब समझ में आया, ये सिर्फ परेड नहीं, एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है।
0: और याद रखना बिटिया, वर्दी पहनना आसान नहीं है, इस सम्मान को तो ता उम्र निभाना होता है, और वही असली वीरता है।
1: दादू, आपने बताया था कि वायुसेना हर समय आसमान पर नजर रखती है, लेकिन अगर अचानक कोई खतरा आ जाए तो क्या होता है?
0: जब भी आसमान में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो सबसे

0: पहले उसे रडार सिस्टम पकड़ता है। अब तुम पूछोगे कि रडार सिस्टम क्या होता है दादू?
1: हाँ दादू, रडार सिस्टम क्या होता है?
0: रडार सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो बहुत दूर से ही विमान की दिशा, गति और ऊंचाई बता देता है।
1: मतलब बिना देखे ही सब पता चल जाता है?
0: हाँ, उसी समय कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी स्थिति का आकलन करते हैं। अगर खतरा लगे तो तुरंत आदेश दिया जाता है स्क्रैम्बल।
1: स्क्रैम्बल, ये क्या होता है दादू?
0: इसका मतलब होता है तुरंत उड़ान भरना। पायलट कुछ ही मिनटों में पूरी तैयारी के साथ अपने लड़ाकू विमान लेकर आसमान में पहुंच जाते हैं बेटा।
1: इतनी जल्दी, ये कैसे हो सकता है दादाजी?
0: यही तो ट्रेनिंग और अनुशासन का कमाल है बेटा। पायलट हमेशा स्टैंड बाय मोड यानी पूरी तरह तैयार रहना, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सके।
1: दादू, जब पायलट उड़ान भर लेते हैं तो उन्हें पता कैसे चलता है कि जाना कहाँ है?
0: इसके लिए होता है ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, यानी जमीन पर बैठे अधिकारी पायलट को हर पल निर्देश देते हैं, जैसे किस दिशा में जाना है और कितनी ऊंचाई रखनी है और लक्ष्य कहां पर है।
1: मतलब पायलट अकेले फैसला नहीं लेते?
0: नहीं बिटिया, ये एक टीम वर्क होता है। रडार, सैटेलाइट, कंट्रोल रूम और पायलट सब मिलकर मिशन पूरा करते हैं।
1: और जब दुश्मन सामने आ जाता है तब क्या होता होगा?
0: तब पायलट पहले लक्ष्य को लॉक करता है, यानी अपने सिस्टम से दुश्मन की सटीक पहचान करता है। उसके बाद आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाती है।
1: दादू, ये तो बहुत खतरनाक होता होगा ना?
0: हाँ बिटिया, ये बहुत जोखिम भरा होता है, लेकिन पायलट को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है तेज निर्णय लेना, दबाव में शांत रहना और सटीक हमला करना।
1: एक शिकारी बाज की तरह सोच समझ कर हर कदम उठाते होंगे।
0: बिल्कुल, और जब मिशन पूरा हो जाता है तो पायलट सुरक्षित वापस लौटते हैं। इसे कहते हैं मिशन सक्सेस।
1: दादू, अब समझ में आया वायु सेना के इन हीरोज को वायु योद्धा क्यों कहते हैं?
0: बिल्कुल बिटिया, वायु सेना की असली ताकत सिर्फ उसके विमान नहीं बल्कि उसकी सोच, तकनीक और टीम वर्क है।
1: सही दादू। जब तक ये आसमान के पहरेदार आसमान में उड़ान भर रहे हैं, तब तक हम सब बेफिक्र रह सकते हैं।
0: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो बेटा, मैं थक गया हूँ, घर चले?
1: चलिए दादू, घर चलते हैं।
0: चलो।
2: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे आकाश की विजेता भारतीय वायुसेना पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
0: और मैं दीपक नेमा।
2: इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान। ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर अपनी ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। नमस्कार, मैं इतिहास हूं। मैं एक आम आदमी की तरह स्वतंत्रता स्वाधीनता में विश्वास रखता हूं और आदमी द्वारा आदमी का खून बहाए जाने का पक्ष नहीं लेता, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के लिए खुद का बलिदान कर देने वाली जाति और आदमी का कदरदान हूं। तारीख गवाह है कि ऐसे बलिदानियों का नाम मैंने आम आदमी की तरह मिटने नहीं दिया, उन्हें अमर कर दिया है।
1: नमस्कार, मैं तारीख हूँ और इतिहास के इस बयान की गवाह हूँ। आज मैं इतिहासविद डॉक्टर लाहिड़ी द्वारा संकलित खामती विद्रोह की गाथा आपको सुनाना चाहती हूँ।
0: हाँ, ये 1857 की मुहिम बनाने वाली गाथा है
1: और अंग्रेजों की कूटनीति का खुलासा भी।
0: अपनी कूटनीति के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बनकर आई और शासक बन बैठी।
1: पहले ये तो बताओ कि अंग्रेजों की कूटनीति कैसी थी।
0: फूट डालो और राज करो, रजवाड़ों व सरदारों के असंतोष का फायदा उठाओ,

0: अच्छा, पर खामती लोग कौन थे पहले ये तो बताओ।
1: खामती जाति बर्मा के इरावदी घाटी के बोरखा मंती अंचल से आसाम आई थी। अहोम राजा ने इन्हें बसा लिया। बाद में उन्होंने सरहद की चौकी सदिया पर कब्जा कर लिया और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। सदिया खबा गोहाई कहलाने लगे,
0: यानी कि सदिया का शासक।
1: ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम में पैर पसारे तो खामती लोगों से एक संधि की 1826 में। उन्होंने स्वतंत्र राज्य रहने दिया, परंतु सिर्फ 200 सैनिक रखने का अधिकार दिया। उनसे कर भी नहीं वसूला।
0: अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया?
1: उनकी कूटनीति ये थी कि जब असम की अन्य जातियां सर उठाएं, तो खामती सरदारों को साथ लेकर उनका दमन कर सकें।
0: इसीलिए 1820 में जब सिंगफो जाति ने अंग्रेजों पर हमला किया, तो खामती ने अंग्रेजों की मित्रता निभाई और उनके दमन करने में भाग लिया।
1: परंतु 1835 के बाद जब सदिया खवा गोहाई के बेटे ने राज्य संभाला, तो अंग्रेज उनके विरोधी हो गए।
0: अचानक ही?
1: नहीं, कारण था, सदिया के बेटे बौद्ध धर्मी थे, हिंदू धर्म की जानकारी थी। अंग्रेजों ने कहा कि अब ये हिंदुस्तान का पक्षपाती है।
0: अच्छा, तब कौन था जो अंग्रेजों की शरण में गया?
1: मुत्रुक जाति का सरदार था। उसका खामती गोहाई से जमीन को लेकर झगड़ा हुआ और वो मुकदमा अंग्रेज शासन के सामने ले आया, परंतु गोहाई ने मुकदमा न लड़कर युद्ध करके जमीन हासिल कर ली।
0: ब्रिटिश शासक तो तिलमिला गए होंगे।
1: कंपनी ने जिस राजनीतिक प्रतिनिधि कैप्टन लाइट को असम में नियुक्त किया था, उन्हें ये एक बड़ा अवसर मिल गया। उन्होंने गहोइयों से सारे अधिकार छीन लिए, उन पर भी कर थोप दिए गए।
0: खवा गोहाई का बेटा अकेला न था, सभी सरदारों तौबा गोहाई, रूनू गोहाई, कैप्टन गोहाई ने एकजुट होकर असंतोष व्यक्त किया।
1: खामती लोगों के बारे में वाइट अच्छे से जानता था कि ये जाति जोश, बुद्धि और नैतिक चरित्र में असम की सर्वश्रेष्ठ जाति है।

0: ये गहोई सरदार ज्यादा गड़बड़ी न करें, इस डर से कंपनी सरदार के एजेंट जेनकिंस ने खवा गोहाई को नजरबंद कर दिया। खवा सरदार के जरिए सभी सरदारों में फूट डालने की नीयत से उसे जासूस बनाकर राज्य लौटाने की पेशकश की।
1: यानी कि खवा गोहाई को सामने दो रास्ते दिखा दिए गए। पहला, जासूस बन के अन्य सरदारों की गतिविधियों की जानकारी दे ताकि अंग्रेज आसानी से उनका दमन कर सके, बदले में राज्य ले। दूसरा, राज्य भी खोए और अंग्रेजों की मित्रता भी।
0: हाँ, यही एक जाति है जिसका सरदार गद्दार नहीं बना, उसने साफ मना कर दिया, आजीवन कैद मंजूर कर ली। परंतु बेकार का बोझ मानकर जेनकिंस ने उसे रिहा कर दिया और बिना शर्त मित्रता की शर्त रख दी।
1: खवा गोहाई जान गए थे कि अंग्रेजों से जीतना है तो उनकी भाषा और विचार जानना जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देना शुरू किया।
0: 1835 में दूसरी ओर सिंगफो विद्रोह का दमन करने के लिए उनका साथ दिया।
1: मतलब सरदार गहोई ने विद्रोह का विचार ही छोड़ दिया था?
0: नहीं, अंग्रेजों के प्रति असंतोष का ज्वालामुखी तो दिल में दबा पड़ा था। इसका पता भी अंग्रेजों को सिंगफो विद्रोह के दौरान ही चला। उन्होंने सिंगफो सरदार को कह दिया कि अंग्रेजों से समझौता न करके उनका साथ दे।
1: यानी खामती सरदार ऊपर ऊपर से अंग्रेजों के साथ रहे लेकिन भीतर भीतर सिंगफो के सहायक बने रहे।
0: खामती सरदार बमियों और सिंगफो सरदार दाफा गाम के साथ पत्र व्यवहार के जरिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना बना रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसकी भनक मिलते ही असम में सैनिक शक्ति बढ़ा दी।
1: अच्छा, खामती सरदारों ने इनसे युद्ध किया या योजना ही रद्द कर दी?
0: नहीं, उन्होंने अवसर की प्रतीक्षा की और 1839 में खामती लोगों ने अंग्रेजों पर उस समय हमला कर दिया जब अंग्रेज पूरी तरह उन लोगों की तरफ से निश्चिंत हो गए थे, लापरवाह हो गए थे।
1: पर इतने लापरवाह कैसे हो गए वे?
0: इसलिए कि खामती विद्रोह के लिए एकजुट होने वाले सरदारों में कोई गद्दार नहीं था। अंग्रेजों को खबर तो अपनों में से ही कोई देता था, यहाँ वे ऐसा कोई खामती न पा सके।
1: मानना पड़ेगा कि कितने दृढ़ चरित्र के होते हैं खामती। फिर क्या हुआ?
0: 28 जनवरी 1839 को खामती अपने सरदारों के साथ सदिया पर टूट पड़े। अंग्रेजों की पूरी रेजिमेंट को साफ कर दिया, मेजर वाइट को मौत के घाट उतार दिया। बैरक, तोपों, बंदूकों सहित अंग्रेजों की सेना से संबंधित सारा लवाजमा कागजात जलाकर खाक कर दिए गए। इस होली में मेडिकल स्टोर भी जला। फिर कब्जा कर लिया सादिया पर।

0: सारा सादिया नगर खामती विद्रोहियों की मेहरबानी पर था, लेकिन उन्होंने नगर में ना लूटपाट की और ना ही किसी नगरवासी को कष्ट दिया, बल्कि अंग्रेजी शासन का हर चिन्ह मिटाकर वो तेजी से वहां से हट गए।
1: कंपनी सरदार ने नई सेना भेजकर फिर सदिया पर अधिकार किया और खामती सरदारों की खोज में जुट गई।
0: लेकिन उनके हाथ कोई नहीं आया। सभी खामती सपरिवार मिसमी पहाड़ियों में चले गए थे। सेना ने सुने गाँव के गाँव चला दिए।
1: कैप्टन वेच खामती सरदारों से बदला लेने पर तुला हुआ था, लेकिन कोई हाथ नहीं आया।
0: सरदारों को पकड़वाने के लिए बड़े बड़े पुरस्कारों की घोषणा की गई, पर किसी ने लालच नहीं दिखाया।
1: कोई भी अपनी जाति अपने राज्य के साथ विश्वासघात करने के लिए बिल्कुल आगे नहीं आया।

0: लेकिन अंत में विद्रोही सरदारों में फूट पड़ गई। एक सरदार ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अंग्रेज अभी भी खामती का सर्वनाश नहीं कर पाए।
1: पूरे 5 वर्षों तक अंग्रेजों और खामती विद्रोहियों के बीच संघर्ष चला।
0: कितनी ही बार अंग्रेजों ने अपनी सेना मिस्की पहाड़ियों पर चढ़ाई करने भेजी। विद्रोहियों का एक दस्ता पकड़ा जाता तो दूसरा जत्था तैयार रहता लड़ाई जारी रखने के लिए। खामती विद्रोहियों के अंतिम दस्ते ने 1843 में आत्मसमर्पण कर दिया।
1: अंग्रेजों ने उन सबको फांसी नहीं दी?
0: उस समय घोर दमन की जरूरत नहीं थी, फिर भी अपनी कूटनीतिक चाल के तहत अंग्रेजों ने उन सरदारों व उनके जत्थों को एक साथ नहीं होने दिया। उन्हें इस तरह बिखेर कर बसाया कि वे फिर कभी राजनीतिक शक्ति न बन सके।
1: और माला टूट गई, मोती बिखर गए, खामती विद्रोह इतिहास में अमर हो गया। आज मुझे गुरूर है कि मैं उनकी साक्षी हूँ।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। परिक्रमा सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की, साथ ही जानकारी देंगे मौसम की भी। तो बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। आकाशवाणी की स्थापना के 90 साल पूरे होने के अवसर पर शनिवार को रविंद्र भवन में सुरों की लोक सूफी शाम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगीत की दो प्रतिष्ठित विभूतियों पुष्पलता शर्मा ने बुंदेली लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम ने सूफी गायन की प्रस्तुतियों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। आकाशवाणी संगीत संध्या का शुभारंभ पुष्पलता शर्मा के बुंदेली विवाह गीत बजा बजा रम तुला आ गए पार्वती के दूल्हा, एक हाथ में डमरू सोहे दूजे में त्रिशूला से हुआ। गीत कैसे लगे हैं पार, अब तो अचल हो गई नैया, धन दौलत कछु काम न आवे सब है माया जाल, ई काया को भरम न करियो जल जाइए है बाजार में उपस्थित श्रोताओं को छू लिया। इसके बाद सूफी गायक उस्ताद मुनव्वर मासूम ने अपनी प्रस्तुति का आगाज हमद बिस्मिल्लाह से किया। लेट्स विन द हार्ट थिएटर सोसाइटी द्वारा मशहूर लेखक सआदत हसन मंटू के चर्चित नाटक शहीद साज का मंचन आज रविवार को किया जाएगा। संस्था की ये नवीन नाट्य प्रस्तुति शाम 7:30 बजे से नेहरू नगर ईस्टमैन थिएटर होम में आयोजित होगी। इस नाटक का निर्देशन एवं इसमें अभिनय वरिष्ठ रंगकर्मी विनोद कुमार द्वारा किया जा रहा है। निराला सृजन पीठ साहित्य अकादमी एवं संस्कृति परिषद की ओर से आज शाम 5:30 बजे रविन्द्र भवन के गुरांजनी सभागार में साहित्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल वर्ड्स द्वारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के सहयोग से जैव विविधता जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। शिविर के दौरान प्रतिभागियों ने करीब 45 प्रजातियों के पक्षियों की पहचान की। बैठक आर्ट हाउस की ओर से 24 मई को अनहद नाद संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 6:30 बजे श्यामला हिल्स स्थित स्टेट म्यूजियम में होगा। चिल्ड्रंस थिएटर अकादमी द्वारा आयोजित मुखौटा वर्कशॉप का समापन रचनात्मक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। 1 मई से शुरू हुई इस वर्कशॉप में 5 से 16 वर्ष तक के बच्चों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान बच्चों ने रंगों, आकृतियों और कल्पनाशीलता के माध्यम से अलग अलग तरह के मुखौटे तैयार किए। रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में शनिवार को ग्रीष्मकालीन नेचर कैंप हरित शावक और हरित किशोर के तहत 2 खास एक्टिविटीज आयोजित की गई। इसमें बच्चों ने ओरिगामी के जरिए प्रकृति और वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में रोचक तरीके से सीखा। भारत भवन में 3 दिवसीय संतवाणी समारोह के दूसरे दिन शनिवार की संध्या भक्ति राग और लोक संवेदना के सुरों से अनुप्राणित रही। संगीत केंद्र अनहद के प्रस्तुति में शास्त्रीय संगीत और संतवाणी का सुंदर संगम देखने को मिला। और श्रोताओं, आज आप जा सकते हैं संतवाणी समारोह में। भारत भवन में शाम 7 बजे से संभावना, जनजातीय संग्रहालय में दोपहर 2 बजे से जाके देख सकते हैं। काव्य गोष्ठी का आनंद ले सकते हैं दोपहर 2 बजे से दुष्यंत संग्रहालय में। साथ ही राष्ट्रीय अस्मिता के स्वर इसमें शामिल हो सकते हैं शाम 5:30 बजे से रविन्द्र भवन गौरांजनी सभागार में। और अब मौसम पर एक नज़र। शहर में आज तेज धूप के बाद हल्के बादल छाने की संभावना है। तापमान में बड़े बदलाव के आसार कम हैं। दिन का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 29.0 डिग्री रहने की संभावना है। परिक्रमा में आज बस इतना ही। रखिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल। हमें दें अनुमति कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त दीप्ति। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं प्यास क्यों लगती है? नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि भूख तो सहन की जा सकती है पर प्यास बर्दाश्त नहीं होती। ये एक ऐसा तथ्य है कि यदि किसी व्यक्ति को 5-6 दिनों तक कुछ भी पीने को ना मिले तो वो मर जाएगा। पानी या अन्य जलीय पदार्थ हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। प्यास हमें जल या जलीय पदार्थों की आवश्यकता महसूस कराती है और ये कहती है कि जल की आपूर्ति बहाल की जाए। आइए देखें क्यों लगती है प्यास। प्यास का एहसास हमारे रक्त में पानी और नमक के संतुलन के बिगड़ने से होता है। हमारे रक्त में जल और नमक एक निश्चित मात्रा में होते हैं, लेकिन जैसे रक्त में जल की कमी और नमक की वृद्धि होती है, हमें प्यास लगनी शुरू होती है। होता यह है कि जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है, मस्तिष्क का थर्ड सेंटर नामक हिस्सा सक्रिय हो जाता है। ये थर्ड सेंटर हमारे गले के पिछले हिस्से को एक संकेत देता है। इस संकेत को पाने के बाद गले का पिछला हिस्सा सूखने लगता है और उसे तर्क करने के लिए कुछ पीने की जरूरत महसूस होने लगती है। इसी अनुभूति को प्यास लगना कहते हैं। थर्ड सेंटर और गले के पिछले हिस्से के बीच संकेतों के आदान प्रदान के कारण प्यास की तीव्रता बढ़ती जाती है। तो श्रोताओं, ये थी छोटी सी जानकारी हमें प्यास क्यों लगती है इसके बारे में। और भी इसी तरह की जानकारियाँ मैं आपको देती रहूँगी। आप सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उमेश वीनस तरकसवार के संगीत निर्देशन में मध्य प्रदेश गान।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य गुंजन।
1: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य गुंजन।

0: पिछले काव्यांश में आपने सुना था राहुल जननी की मना स्थिति। लीजिए अब सुनिए इसके आगे।
1: अगले काव्यांश में यशोधरा राहुल को जगाने का प्रयास कर रही है कि प्रभात हो रहा है, तुम अब जागो।
0: घुसा तिमिर अलकों में भाग, जाग दुखनी के सुख जाग, जागा नूतन गंध पवन में, उठ तू अपने राजभवन में, जाग उठे खगवन उपवन में, और खगों में कलख राग, जाग दुखिनी के सुख जाग, तात रात बीती वह काली, उजियाली ले आई लाली, लदी मोतियों से हरियाली, लो लीला शाली निज भाग, जाग दुखिनी के सुख जाग। किरणों ने कर दिया सवेरा, हिमकण दर्पण में मुख हेरा, मेरा मुकुर मंज मुख तेरा, उठ पंकज पर पड़े पराग, जाग दुखिनी के सुख जाग। तेरे वैतालिक गाते हैं, स्वस्थ लिए ब्राह्मण आते हैं, गोप दुग्ध भाजन लाते हैं, ऊपर झलक रहा है झाग, झाग दुखिनी के सुख जाग। मेरे बेटा भैया राजा, उठ मेरी गोदी में आजा, भौरा नाचे बजे हाँ बाजा, सजे शाम है यासित नाग, जाग दुखिनी के सुख जाग। जाग अरे वृषमत भव मेरे, आतु शम्य उपद्रव मेरे, उठ उठ सोए शैशव मेरे, जाग स्वप्न उठ तंद्रा त्याग, जाग दुखनी के सुख जाग।
2: अम्ब स्वप्न देखा है रात, लिए मेष शावक गोदी में खिला रहे हैं तात, उसकी प्रसू चाहती है पद कर करके प्रतिपात, घेरे हैं कितने पशु पक्षी कितना यातायात, ले लो मुझको भी गोदी में सुन मेरी यह बात, हंस बोले असमर्थ हुई क्या तेरी जननी जात, आँख खुल गई सहसा मेरी माँ हो गया प्रभात, सारी प्रकृति सजल है तुझसी भरे अश्रु अवदात।
0: बस मैं ऐसी ही निभ जाऊं राहुल निज रानीपन देकर, तेरी चिर परिचर्या पाऊं, तेरी जननी कहलाऊं, तो इस परवश मन को बहलाऊं, उबटन कर नहलाऊं तुझको, खिला पिला कर पट पहनाऊं, रीच खींच कर रूठ मनाकर, पीड़ा को क्रीड़ा कर लाऊं, यह मुख देख दुख में भी सुख से देव दया गुण गाऊं, स्नेह दीप उनकी पूजा का तुझ में यहाँ अखंड जगाऊं, डीठ लगे ना डिठोना देकर काजल लेकर तुझे लगाऊं।
2: कैसी डीठ कहाँ काटोना, मान लिया आँखों में अंजन माँ किस लिए डिठोना, यही डीठ लगने के लिच्छन छूटे खाना पानी, कभी कांपना कभी पसीना जैसे तैसे जीना, डीठ लगी तब स्वयं तुझे ही तू है सुदबुद होना, तू ही लगा डिठोना जिसको काट बना बिछोना, कैसी ढीठ कहाँ काटोना। लोहित बिंदु बाल पर तेरे मैं काला क्यों धूमा, लेती है जो वर्ण आप तू क्यों ना वही मैं लूमा, एक इसी अंतर के मारे मैं अति अस्थिर हूँ माँ, मेरा चुंबन तुझे मधुर क्यों तेरा मुझे सलोना, कैसी ढीठ कहाँ काटोना। रह जाते हैं स्वयं चकित से मुझे देख सब कोई, लग सकती है कह माँ मुझको ढीठ कहाँ कब कोई, तेरा अंक लाभ कर मुझको जहाँ नहीं अब कोई, लेकर मुझे कलंक बिंदु तू बना न चंद खिलौना, कैसी ढीठ कहाँ काटोना।
1: राहुल अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैंने तेरे कहने से काजल लगवा लिया, अब डिठोना क्यों? इस काव्यांश के बाद लीजिए अब ये गद्य में वार्तालाप सुनिए। इस वार्तालाप में पात्र हैं यशोधरा राहुल, यशोधरा की सखियां गंगा और गौतमी, यशोधरा की दासियां चित्रा और विचित्रा।
3: देवी, यदि वह घटना सच्ची हो तो तपस्विनी सीता देवी भी इसी प्रकार पति परित्यक्ता होकर आदि कवि के आश्रम में स्वामी का ध्यान करके कुश लव के लिए जीवन धारण करती होंगी।
0: मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ सखी। सीता देवी ने बहुत सहा, संभवतः मैं उतना ना झेल सकती। कहते हैं स्वामी वंचित होने के साथ साथ उन्हें मिथ्या लोकापवाद भी सहन करना पड़ा था।
3: श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों ने भी बहुत सहन किया।
0: हाय, वे उनके लिए कितनी तरसी। परंतु मुझे विश्वास है मैं अपने प्रभु के दर्शन अवश्य पाऊंगी।
3: तुम्हें देखकर मुझे स्वामी वंचिता शकुंतला का स्मरण आता है। उनके पुत्र भरत की भांति ही कुमार राहुल का अभ्युदय हो, यही सबकी कामना है।
0: अहो, अभागिनी गोपा ही एक दुखिनी नहीं है, उसकी पूज्य पूर्वजाओं ने भी बड़े दुख उठाए हैं। उनके बल से मैं किसी भी प्रकार सह लूंगी गंगा।
1: निर्दयी पुरुषों के पाले पड़कर हम अबला जनों के भाग्य में रोना ही लिखा है।
0: अरे, तू उन्हें निर्दयी कैसे कहती है? वे तो किसी कीट पतंग का दुख भी नहीं देख सकते हैं।
1: तभी ना हम लोगों को इतना सुख दे गए हैं।
0: नहीं, वे अपने दुख का भागी बनाकर हमें अपना सच्चा आत्मीय सिद्ध कर गए हैं और हम सबके सच्चे सुख की खोज में ही गए हैं।
1: देवी, तुम कुछ भी कहो, परंतु मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा सोने का घर छोड़कर उन्होंने वन की धूल ही छानी, जननी जन्मभूमि की भी उन्हें कोई ममता ना हुई।
0: अरे, सदा माँ की गोद में ही बैठे रहने के लिए पुरुषों का जन्म नहीं होता, स्त्रियों को भी पति के घर जाना पड़ता है। सारा विश्व जिनका कुटुंब है, जन्मभूमि का बंधन कैसे बांध सकता है?
1: कुमार राहुल कदाचित विश्व से बाहर थे, मोह ममता तो ऐसों को क्या होगी, किंतु उनके पालन पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा की देख रेख करना भी क्या उनका कर्तव्य ना था?
0: हमको तो उस पर भी बड़ी ममता है, हम क्या इतना भी ना कर सकेंगे। मैं कहती हूँ राहुल के जन्म ने उन्हें अमृत की प्राप्ति के लिए और भी आतुर कर दिया। परंतु अब इन बातों को रहने दे, वो आता होगा, मैं उसके सामने हंसती ही रहना चाहती हूँ। परंतु बहुधा आंसू आ जाते हैं, उससे उसे कष्ट होता है, वह अब समझने लगा है।
3: देवी, कुमार को देखकर ही धीरज धरना चाहिए।
0: ठीक है, विपत्ति में जो रह जाए वही बहुत है। चित्रा, देख भोजन प्रस्तुत है, यही एक और उसके लिए आसन लगा। मैंने अपने हाथों उसके लिए कुछ खीर बनाई है, वह ठंडी हुई या नहीं, और जो कुछ हो आम रखना ना भूलना।
3: जो आज्ञा।
0: गंगा, तू दादाजी के यहाँ जाने योग्य उसकी वेशभूषा ठीक कर।
1: गंगा जो आज्ञा कहकर जिस द्वार से जाती है उसी से राहुल अलिंद में आता है। यशोधरा और गौतमी सामने से उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं, परंतु वो चुपके चुपके उनके पीछे आना चाहता है। सामने गंगा को देखकर उससे चुप रहने का आग्रह करता है। गंगा मुस्कुराकर चुप रहती है। राहुल सहसा पीछे से माँ के गले में हाथ डालकर पीठ पर पड़ जाता है और प्रणाम प्रणाम कहकर अपना मुंह बढ़ाकर माता के मुंह से लगाकर हंसता है।
0: जीता रह बेटा।
2: मेरी जीत हो गई है। दादाजी से मैंने कहा था मेरे प्रणाम करने के पहले ही माँ मुझे आशीर्वाद दे देती है। उन्होंने कहा तू प्रणाम करने में पिछड़ जाता है, इसलिए आज मैंने आकर पहले प्रणाम कर लिया। अब तू हार गई ना?
0: वाह, मैं कैसे हार गई? तूने छिपकर आक्रमण किया है, इसे मैं तेरी जीत नहीं मानती।
2: क्यों नहीं मानती? प्रणाम करना क्या कोई प्रहार करना है जो सामने से ही किया जाए? अच्छे काम तो अज्ञात रूप से भी किए जाते हैं। यह तूने ही कहा था, नहीं कहा था?
0: बेटा, अब मैं हार गई।
2: तू हार ना मानती तो मैंने दूसरा उपाय भी सोच रखा था।
0: सो क्या?
2: मैंने दूर द्योड़ी से तुझे देखे बिना ही माँ प्रणाम करता हुआ आता।
0: बेटा, इसकी आवश्यकता नहीं। मेरा आशीर्वाद तेरे प्रणाम की प्रतीक्षा थोड़े ही करता है।
2: परंतु मेरा विनय तो सदा गुरुजनों का आशीष चाहता है। दादाजी कहते हैं, शिष्टाचार के नियम की रक्षा होनी चाहिए। इसी कारण मेरे प्रणाम करने पर ही मुझे आशीष देना चाहिए, नहीं माँ?
0: अच्छी बात है। अब मैं तेरे प्रणाम करने पर ही मुँह से तुझे आशीष दिया करूँगी।
2: मुँह से?
0: मन से तो दिन रात ही तेरा मंगल मनाती रहती हूँ।
2: परंतु माँ, मुझे तो कितने ही काम रहते हैं, मैं कैसे सर्वदा एक ही चिंतन कर सकूँगा?
0: बेटा, तेरे जितने शुभ संकल्प हैं वे सब मेरी ही पूजा के साधन हैं। तू उपवन में घूम आया?
2: हाँ माँ, मैंने जो आम के पौधे रोपे थे उनमें नई कोपले निकली हैं, बड़ी सुंदर हैं, लाल लाल
0: जैसे तेरी उंगलियाँ।
2: मेरी उंगलियाँ तो धनुष की प्रत्यंजा भी खींच लेती हैं। वे हाथ लगते ही कुमला कर तेरे होठों से होड़ करने लगेंगी।
3: कुमार तो कविता करने लगी हैं।
2: गौतमी, इसी को ना कविता कहते हैं। खान पान तो दो ही धन्य, आम और अम्बा का स्तन्य।
3: धन्य धन्य, परंतु ये तो दो ही पद हुए।
2: मेरा छंद क्या चौपाया है, क्यों माँ?
0: ठीक कहा बेटा।
3: भगवान करें तुम कवि होने के साथ साथ कविता के विषय भी हो जाओ।
2: माँ, कविता का विषय कैसे हुआ जाता है?
0: बेटा, कोई विशेषता धारण करके।
2: परंतु माँ, मुझे तो किसी काम में विशेषता नहीं जान पड़ती। सब बातें साधारण यथा नियम होती दिखाई पड़ती हैं। हाँ, एक तेरे रोने को छोड़कर तू हंस पड़ी, यह और भी विचित्र है।
0: अच्छा बेटा, अब भोजन कर। गौतमी, थाली मंगा।
2: माँ, मेरे साथ तू भी खा।
0: बेटा, पीछे खा लूंगी।
2: दादाजी मुझसे कहते थे तू माँ को खिलाए बिना खा लेता है, मुझे बड़ी लज्जा आई।
0: मैं क्या भूखी रहती हूँ? उचित तो यह होगा कि तू दादाजी को साथ लेकर ही यहाँ भोजन किया कर।
2: यह अच्छी रही, दादाजी तेरे लिए कहते हैं और तू दादाजी के लिए कहती है। यह भी कविता का विषय मुझे मिल गया अच्छा। कल से दो बार तेरे साथ खाया करूँगा और दो बार दादाजी के साथ। आज तो तू मेरे साथ बैठ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा।
0: बेटा, हट नहीं करते। मेरी तृप्ति तभी होती है जब मैं सबको खिलाकर खाऊं।
2: तू तो खा लेगी, फिर क्या कोई खाएगा नहीं?
0: परंतु मेरे लिए ये उचित नहीं है कि जिनका भार मुझ पर है मैं उन्हें छोड़कर पहले खा लूं।
2: तो क्या मुझ पर किसी का भार नहीं?
0: बेटा, तू अभी छोटा है।
2: मैं छोटा हूँ तो क्या, बल तो मुझ में तुझसे अधिक है। चाहे परीक्षा करके देख ले, मैं घोड़े पर जमकर बैठने लगा हूँ, व्यायाम करता हूँ, शस्त्र चलाना सीखता हूँ। मेरा बाण जितनी दूर जाता है मेरे किसी समवयस्क का उतनी दूर नहीं जा सकता। तू तो मेरे साथ दो डग दौड़ भी नहीं सकती।
0: फिर भी बेटा, मैं तुझसे बड़ी हूँ।
2: मैं बड़ा होता तो?
0: तो मेरा भार तुझ पर होता।
2: परंतु मैं तो तुझसे छोटा रहूँगा माँ। अच्छा, पिताजी तो बड़े हैं, वे क्यों हमारी सुध नहीं लेते?
0: लेंगे बेटा, लेंगे। तब तक तेरा भार मुझे दे गए हैं।
2: और तेरा भार किसे दे गए हैं? दादाजी को?
0: हाँ बेटा, दादाजी को।
2: और दादाजी का भार?
0: बेटा, पुरुषों के लिए स्वावलंबी होना ही उचित है। दूसरों का भार बनना अपने पौरुष का अनादर करना है। यूं तो सबका भार भगवान पर है, परंतु मेरे लिए तो मेरे स्वामी ही भगवान हैं और तेरे गुरुजन ही।
2: तू ठीक कहती है, मैंने भी पढ़ा है मात्र देवो भव पितृ देवो भव। इसी के साथ माँ आचार्य देवो भव भी है।
0: ठीक ही तो है बेटा, माता पिता जन्म देते हैं परंतु सफल उसे आचार्य देव ही बनाते हैं। हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए इसे बताते हैं वो।
2: सचमुच वे बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। आकाश तो मुझे भी गोल गोल दिखाई देता है, वे कहते हैं धरती भी गोल है। वे मुझको उसकी सब बातें बताएंगे।
0: क्यों नहीं बताएंगे बेटा?
2: परंतु मेरा एक सहपाठी उनसे ऐसा डरता है मानो वे देव ना होकर कोई दानव हो।
0: वह अपना पाठ पढ़ने में कच्चा होगा।
2: तूने कैसे जान लिया?
0: ये क्या कठिन है, ऐसे ही लड़के गुरुजनों के सामने जाने से जी चुराते हैं।
2: माँ मैं तो एक दो बार सुनकर ही कोई बात नहीं भूलता, तो चाहे मेरी परीक्षा ले ले।
0: तेरे पूर्व जन्म का संस्कार है, तू उस जन्म में पंडित रहा होगा, इसलिए इस जन्म में तुझे सहज ही विद्या प्राप्त हो रही है।
2: ऐसी बात है?
0: हाँ बेटा, इस जन्म के अच्छे कर्म उस जन्म में साथ देते हैं।
2: और बुरे कर्म?
0: वो भी।
2: तो एक बार बुरे कर्म करने से फिर उनसे पिंड छूटना कठिन है?
0: यही बात है बेटा।
2: तो मैं आचार्य देव से कहकर बुरे कर्मों की एक तालिका बनवा लूंगा, जिससे उससे बचता रहूं।
0: अच्छा तो ये होगा कि तू अच्छे कर्मों की एक सूची बनवा ले।
2: अच्छी बातें तो वो पढ़ाते ही हैं।
0: तब उन्हीं को स्मरण रखना चाहिए, बुरी बातों का फल भी बुरा।
2: तब एक और मुझे अज्ञ भी बनना पड़ेगा, जैसे आज असमर्थ बनना पड़ा है।
0: सो कैसे?
2: आज व्यायाम शाला में कूदने के लिए बढ़ाकर एक नई सीमा निर्धारित की गई। मेरे साथियों में से कोई भी वहां तक नहीं उतर पाया। मैं कूद सकता था परंतु सबका मन रखने के लिए समर्थ होते हुए भी मैं वहां तक नहीं गया। कल ही मैंने पढ़ा था, आत्मना प्रतिकूलाणि परेशा समाचरे।
0: बड़ा अच्छा पाठ पढ़ा है बेटा तूने, परंतु उसका उपयोग ठीक नहीं हुआ। तेरा कोई साथी तुझसे अधिक योग्यता दिखावे तो क्या इसे अपने प्रतिकूल समझना चाहिए? नहीं, यह तो अपने लिए उत्साह की बात होनी चाहिए। हमारे सामने जो आदर्श हों, हमें उनसे आगे आने का उद्योग करना उचित है। इसी प्रकार हमारा उदाहरण देखकर दूसरों को भी साहस दिखाना चाहिए, नहीं तो वे भी उन्नति नहीं कर सकेंगे और तेरी बल बुद्धि भी विकसित ना हो सकेगी।
2: यह ले, मैं तृप्त हो गया। चित्रा हाथ धुला और थाली ले जा।
0: परंतु तेरी भूल में ही सद्भावना थी, इससे संतोष ही है।
3: माँ बेटे बातों में ही भूल गए, थाली ठंडी हो रही है, उसका ध्यान ही नहीं।
0: सचमुच बेटा, अब भोजन कर।
2: भूख तो मुझे भी लगी थी पर तेरी बातों में भूल गया। चलो अच्छा ही हुआ, दादाजी को सुनाने के लिए बहुत सी बातें मिल गईं। तूने भी कहा था टहलने के पीछे कुछ विश्राम करके ही खाना ठीक होता है।
0: अच्छा अब खा, मैं चुप रहूंगी।
2: तब तो मैं खा ही नहीं सकूंगा।
0: जैसे तुझे रुचे वैसे ही सही।
2: आ खीर बड़ी स्वादिष्ट है माँ, तू नहीं खाती तो चख कर ही देख।
0: बेटा मैं खीर नहीं खाती।
2: मोतीचूर?
0: वह भी नहीं।
2: दाल भात श्रीखंड पापड़ दही बड़े तुझे कुछ नहीं भाते?
0: बेटा मैं तो व्रत करती हूँ, फल और दूध ही मेरे लिए यथेष्ट हैं।
2: तू बड़ी अर्सज्ञ है, मैं दादाजी से कहूँगा।
0: नहीं बेटा ऐसा ना करना, उन्हें व्यर्थ कष्ट होगा।
2: अच्छा तू उपवास क्यों रखती है?
0: मेरे धर्म का यह एक अंग है।
2: मेरे लिए यह धर्म कठिन पड़ेगा।
0: तुझे इसकी आवश्यकता नहीं।
2: क्यों?
0: धर्म की व्यवस्था भी अवस्था के अनुसार होती है, तू अभी छोटा है, बच्चे के व्रत उनकी माताएं ही पूरा किया करती हैं।
2: ऐसी बात है, तब तो बड़ी भूल हुई माँ।
0: अरे अभी खाया ही क्या है?
2: मैं कितना खाऊं, मैं क्या बड़ा हूँ?
0: इसी के लिए तू छोटा है, जैसी तेरी रुचि। आ दादाजी के यहाँ जाने योग्य वेशभूषा बना ले।
2: क्यों माँ, यह वस्त्र क्या बुरे हैं? तू फटे पुराने पहने और मैं स्वर्ण खचित पहनूं? मैं नहीं पहनूंगा। मेरे ही घूमने फिरने के और खेलने के वस्त्र क्या तेरे काशाय वस्त्रों से भी गए बीते हैं?
0: बेटा मैं काशाय वस्त्र पहने क्या तुझे भली नहीं जान पड़ती?
2: नहीं माँ, इनसे तेरा गौरव ही प्रकट होता है, फिर भी मन ना जाने कैसा हो जाता है कभी कभी। तू इतना कठिन तप क्यों करती है?
0: तप ही मनुष्यत्व है बेटा।
2: मैं कब तप करूंगा?
0: जब अपने पिता की भांति पिता बन जाएगा, मैं तो यही जानती हूँ, आगे तेरे पिता जाने।
2: माँ पिताजी की बात आने से तुझे कष्ट होता है, इसलिए मैं उनकी चर्चा ठीक नहीं समझता।
0: बेटा उन्हीं की चिंता करके मैं जी रही हूँ, तू इच्छानुसार जो कहना हो कह।
2: अच्छा मेरे ये वस्त्र तुझे नहीं भाते? साधारण वस्त्रों में तेरा असाधारण महत्व देखकर मुझे भी रत्न खचित वेशभूषा छोड़कर साधारण वस्त्रों का भी लोभ होता है।
0: परंतु तेरी राजोचित वेशभूषा से तेरे दादाजी को संतोष होता है, उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे यह त्याग करना ही चाहिए।
2: त्याग सचमुच त्याग ही है। अच्छा पिता।
0: क्या कह बेटा क्या?
2: क्या पिताजी भी ऐसी ही वेशभूषा धारण करते थे?
0: क्यों नहीं,
2: परंतु तेरे सिरहाने जो चित्र रहता है वह तो साधु सन्यासी के रूप में ही है।
0: उसे मैंने उनकी अब की अवस्था की कल्पना करके बनाया है।
2: उनका कोई राजवेश का चित्र नहीं है?
0: क्यों ना होगा,
2: तो मुझे दिखा।
0: गौतमी है कोई चित्र?
4: वह अशोक उत्सव वाला,
0: वही ला।
2: माँ पहले तू भी ऐसे वस्त्र भूषण पहनती होगी।
0: बेटा कौन सा राज वैभव है जो तेरी माँ ने नहीं भोगा?
2: अब केवल माथे पर लाल लाल बिंदी ही तुझे अच्छी लगती है।
0: बेटा यही मेरे सुख सौभाग्य का चिन्ह है।
2: ऐसी ही बिंदी मुझे भी लगा दे।
0: तेरे लिए केशर कस्तूरी गोरोचन और चंदन ही उपयुक्त है, रोली और अक्षत पूजा के साथ लगाऊंगी।
4: कुमार लो यह देखो पिताजी का चित्र।
2: ओहो कहां ये राजसी वेश विन्यास और कहां वह सन्यास, परंतु मुख पर दोनों स्थानों में प्राय एक ही भाव है, अवस्था में कुछ अंतर है। माँ सौम्य और साधु भाव में कोई विशेष अंतर नहीं है?
0: कोई अंतर नहीं बेटा।
4: कुमार कैसा यह रूप?
2: मेरे जैसा। एक बार दादी जी मुझे देखकर चौंक पड़ी और बोली, मुझे ऐसा जान पड़ा मानो वही आ गया, मैंने भी दर्पण में अपना मुख देखा है। क्यों माँ?
0: बेटा तू ठीक कहता है। अरे मेरे आंखों में यह क्या आ पड़ा?
2: निकल गया माँ, तेरा आंचल तो भीग गया। अरे यह तो देख, पिता के पास यह कौन खड़ी है? वे उसे मरकत की माला उतार कर दे रहे हैं। वह हाथ बढ़ाकर भी संकुचित सी हो रही है, सिर नीचा है, फिर भी अधुखुली आंखें उन्हें निहार रही हैं। माँ यह कौन है?
4: कुमार तुम नहीं समझे?
2: अब ध्यान से देखकर समझ गया, माँ की छोटी बहन मेरी कौन होती है?
4: मौसी।
2: तो ये मेरी मौसी है। मुख माँ के मुख से मिलता है, इतना गौरव नहीं है परंतु सरलता ऐसी ही है। क्यों माँ, है ना मौसी ही?
4: कुमार माँ की आंखें अभी भी किरकिरा रही हैं। मैं तुम्हें बता दूं यह इन्हीं का चित्र है।
2: ओह इतना परिवर्तन।
0: बेटा बुरा या भला?
2: माँ यह मैं पहले ही कह चुका हूँ, तेरे इस परिवर्तन में तेरा गौरव ही प्रकट हुआ है। यह मूर्ति सुख में भी संकुचित सी है और तू दुखहीनी होकर भी गौरवशाली। यह पवित्र है, तू पावन। क्या इस अवस्था के परिवर्तन पर तुझे खेद है?
0: बेटा, तुझे संतोष है तो मुझे कोई खेद नहीं।
2: बस पिताजी आ जाएं तो मुझे पूरा संतोष है।
0: तूने मेरे मन की बात कह दी बेटा।
2: तब आज मुझे वही माला पहना दे जो पिताजी ने तुझे दी थी।
0: मैंने उसे तेरी बहू के लिए रख छोड़ा था। यह भी अच्छा है, उसे वह तेरे ही हाथों पाएगी। गौतमी, ले आ।
2: मेरी बहू की तुझे बड़ी चिंता है, इससे मुझे ईर्ष्या होती है।
0: क्यों बेटा?
2: वह आकर मेरे और तेरे बीच में खड़ी हो जाएगी, इससे मैं सहन नहीं कर सकता।
0: मेरी दो जांघें हैं, एक पर तू बैठेगा, दूसरी पर वह बैठेगी।
2: परंतु जिस जांघ पर मैं बैठना चाहूँगा उसी पर वह बैठना चाहेगी तो झगड़ा ना मचेगा।
0: मैं उसे समझा लूंगी।
2: काहे से समझा लेगी, मुंह तो तेरे एक ही है।
0: इतना बड़ा स्वार्थी होगा तू।
2: इसमें स्वार्थ की क्या बात है माँ, यह तो स्वतत्व की बात है।
4: परंतु कुमार, अधिकार क्या अकेले ही भोगा जाता है?
2: तुम भी माँ की ओर मिल गई।
4: कुमार, मैं तुम्हारी ओर हूँ, समय आवे तब देख लेना, अभी से क्यों झगड़ा। लो यह मरकत की माला।
2: अरे यह तो मुझे बड़ी बैठी, उतार कर माँ एक बार तू इसे पहन।
0: बेटा मैं?
2: इस हंसी से तो तेरा रोना ही भला, पहन माँ मैं देखूंगा।
4: देवी, माथे पर सिंदूर बिंदी धारण करती हुई किस विचार से तुम कुमार की इच्छा पूरी करने में असमंजस करती हो? जो ऐसा करने से पूर्व रोकता है वह धर्म नहीं अधर्म है।
0: आहा, यह राजयोग है। चित्रा, दर्पण तो लाना। रहने दे बेटा, तू ही मेरा दर्पण है। अरे विचित्रा, क्या लाई?
4: जय हो देवी, महाराज ने कुमार के लिए यह वीणा भेजी है और पूछा है कि वे कब तक आते हैं।
2: वे क्या कर रहे हैं?
4: कुमार, महाराज अभी संध्या करने के लिए उठे हैं।
2: जब तक वे संध्या से निवृत्त हो मैं पहुंचता हूँ।
4: जो आज्ञा।
0: अभी आपने सुना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का वाचन। आज के भाग में आपने सुना यशोधरा, राहुल, यशोधरा की सखियां गंगा गौतमी और यशोधरा की दासियां चित्रा विचित्रा के संवाद। आज ये भाग यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, धनांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और कलाकार थे मनीषा चतुर्वेदी, वर्षा सिंह और वत्सला चौबे। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन। ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सन 1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रगनौर के चार जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रगनौर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्मसम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नज़र में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: श्रोता इस समय सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के ठीक 1 बजे हैं। आपके साथ मैं हूँ आज दोपहर कालीन सभा में आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट और दीप्ति गेड़ाम का उपशास्त्रीय गायन।
1: मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट और दीप्ति गेंडाम का उपशास्त्रीय गायन।

जो बंदिश सुना रहा हूँ इसमें साहित्यिक शब्दों का उपयोग नहीं है। स्वरों को इस प्रकार से गठन किया है, वो शब्द का काम भी करते हैं। यमन कल्याण में

बोल हैं, नीर गगरी गिरी नार से, नीर नीरे गगरी गगरे गिरी गरे नार नार नीरे सा, सिर सगरी गंगा मग गिर परी, नीर गगरी गिरी नार से।

ये इस बंदिश की खास बात यही है कि अलग से शब्दों का उपयोग नहीं है, केवल स्वरों को इस प्रकार से योजनाबद्ध किया है कि वही शब्द का काम भी करते हैं।

अंतिम प्रस्तुति चैती की है जो परंपरागत है। इसके बोल हैं, हथवा लगत कुमलाय गैल रामा।

आज के इस कार्यक्रम में आपने पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट और दीप्ति गेंडाम का उपशास्त्रीय गायन सुना। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी खून सफेद।

चैत का महीना था, लेकिन वे खलिहान जहां अनाज की ढेरियां लगी रहती थी पशुओं के शरण स्थल बने हुए थे। जहां घरों से फाग और बसंत की आलाप सुनाई पड़ती वहां आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद तक न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी, किसान फूले न समाये, खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक बार में ही लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े और सूख गए। गोचर भूमि में घास जमी, बादल आते, घटाएं उमड़ती, ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, परंतु वे आशा की नहीं दुख की घटाएं थी। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, ईंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पूजे, बलिदान दिए, पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए, लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी, बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए धूल ही धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुधा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई, और जब जीविका का अन्य कोई सहारा न रहा तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। बहुतेरे वहीं जाकर जमे, जहां जिसको सुभीता हुआ वो उधर ही जा निकला। संध्या का समय था। जादू राय थका मांदा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई। ये कहते कहते वो आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आंतें सिकुड़ी जा रही थी। आज दो दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने, कपड़े, बर्तन, भांडे, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा। केवल तकाबी यानी बीज, बैल आदि के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण उसी का सहारा था। उसी के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन आज वो भी नामंजूर हो गई। आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा, उसकी आंखों में आंसू मड़ाए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलावे। लज्जा के मारे वो हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वो उसकी ओर देखेगा तो उसे वो क्या खाने को देगी। उसने आज कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वो क्षुधा तुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी है, घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वो अपना कर्तव्य समझती है, और चाहिए उसका अन्याय ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है वो पुरुषों को नहीं हो सकती। अचानक उसका बच्चा साधु नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वो बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रातःकाल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा, उसे वर्षा और मिठाइयों में कोई संबंध दिखाई नहीं देता था। जादू राय ने उसे गोद में उठा लिया, उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा, गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन ये परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुषों के चित्त से अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाय पापी पेट, तू सब कुछ करा सकता है। मान और अभिमान, ग्लानी और लज्जा, ये सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं में छिप जाते हैं। प्रभात का समय था, वे दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले। जादू राय ने लड़के को पीठ पर लिया, देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वो गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। देवकी रोती थी, जादू राय चुप था। गांव के 2-4 आदमियों से रास्ते में भेंट भी हुई, किंतु किसी ने इतना भी न पूछा कि कहां जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास न था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे उस समय सूर्य ठीक सर पर था। देखा तो मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे।
बैसाख की जलती हुई धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अनगिनत ढांचे, जिनके शरीर पर किसी तरह का कोई कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे थे। मानो वो मरघट भूमि थी जहां मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्रें खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब के सब ऐसे निराश और विवश होकर अपने काम में लगे हुए थे मानो मृत्यु और भूख उसके सामने बैठी घूर रही है। इस आफत में न कोई किसी का मित्र था और न हेतु। दया, सहृदयता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव हैं जिनका कर्ता मनुष्य है। प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वो स्वार्थ है। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर ये ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा कभी गला नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत गए थे। संध्या समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादू राय और देवकी बैठी हुई थी। दोनों ऐसे क्रश हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। अब वो स्वाधीन कृषक नहीं रहे। समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं। जादू राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। कमल सा चेहरा मुरझा गया। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई। साधु ने आंखें खोल दी, बुखार उतर गया था। वो बोला, क्या हम घर आ गए मां? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडबा गईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तब घर चलेंगे। देखो, उठकर देखो, कितना अच्छा बाग है। साधु मां के हाथों के सहारे उठा और बोला, मां मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट लगी, पर धीरज रखकर बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो मैं नरम नरम रोटियां अब भी बनाए देती हूं। साधु ने मां की गोद में सिर रख लिया और बोला, मां मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख तो ना होता। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। ये वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है। ये विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक व्यापार है। इसी बीच कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आईं, उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम वहां खेमे गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देव की रोटियां सेक रही थी। साधो धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में गद्देदार कोच पर बिठा दिया और तब उसे बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीजों को कभी ना देखा था। बुखार की बेचैन कर देने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर खाया और कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी इस भोलेपन पर मुस्कुराकर बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। मां के पास ऐसी अच्छी चीजें कहां, वो तो मुझे चने की रोटियां खिलाती है। देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने मां के पास आकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं, वो बहुत अच्छे साहब हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं ना खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, अब मैं उनके साथ रहा करूंगा। मां ने समझा लड़का हंसी कर रहा है, उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं। साधु बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। ये कहकर वो फिर से खेमे की ओर भागा और रात को वहीं सो रहा। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी, उसका बुखार भी जाता रहा। वे भोले भाले किसान ये देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का भला चंगा हो गया और आराम से हो गया। साहब को परमात्मा सुखी रखे।
उन्होंने बच्चे की जान रख ली। चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का वहां पता न था। उसने समझा कहीं टपके आम ढूंढने गया होगा, लेकिन थोड़ी देर देखकर उसने जादू राय से कहा कि लल्लू यहां नहीं है। उसने भी यही कहा कि शायद कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ, तब जादू राय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं उसे ले आता हूं। जादू राय ने आसपास के सब बागों को छान लिया और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु ना मिला, ये देखकर देवी दाढ़े मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े की टापों के निशान देखते हुए चले जाते थे, यहां तक कि वे एक सड़क पर आ पहुंचे। वहां गाड़ियों के बहुत सारे निशान थे, उस विशेष लीक की पहचान नहीं हो सकती थी। घोड़े के टाप भी झाड़ी के एक तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी, दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। देवकी विलाप करने लगी। जादू राय ने समझाना शुरू किया। अब जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो फिर से दोनों आगे चले, लेकिन अब आशा की जगह निराशा थी। घोड़े की टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से दिखाई पड़ते थे। ये दोनों दुखिया हिम्मत हार कर पेड़ के नीचे टिके रहे। उसी वृक्ष पर मैना का एक जोड़ा बसेरा लिए था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे और इस समय वो भी निराश होकर बैठे थे। देवकी और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई नहीं देती थी, इसलिए वो बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं, प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। किसी बच्चे के पैरों के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा और भय की लहरें उठने लगती, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिया जाता था। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर राम राज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह अपनी निर्दयता ना दिखाई और ना जमीन नहीं। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियां भर चली। उजड़े हुए गांव फिर बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में नजरें दौड़ाने लगे। वही चैत के दिन थे। खलिहानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक ग्राहकों का जमघट बना रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था। जादू राय के दिन भी फिरे। उसके घर पर छप्पर की जगह खपरैल हो गया। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई थी। अब वो अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं था। पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा था और बाल भी सफेद हो चले थे। देवकी की गिनती अब गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी। व्यवहारिक बातों में उसकी बहुत पूछ परख हुआ करती थी। जब वो किसी पड़ोसन के घर जाती तो वहां की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती। उसके कटु वाक्य तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बंधी थी। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वो इतनी उदासीन नहीं थी। उसके जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं था। उनकी 2 संतानें थीं। लड़का माधो सिंह अब खेतीबाड़ी के काम में बाप की मदद करता था और लड़की का नाम शिवगौरी था। वो भी माँ को चक्की पीसने में सहायता करती और खूब गाती थी। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में वो निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते। हाँ, इनमें किफायत का पूरा ध्यान रहता था। खोए हुए साधु की याद अब तक बाकी थी। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती और कभी बिना रुलाए नहीं रहती।
देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती। सांझ हो गई। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन थे, रोज पूजा होती थी। जादू राय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिवगौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रौनते चले जाते थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज सुनते ही जादू राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि अकस्मात एक नव युवक दिखाई पड़ा जो भौंकते हुए कुत्तों को दुत्कारता हुआ बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। उसने उनके चरणों पर अपना सर रख दिया। जादू राय ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधो भौचक बाइसिकल को देखने लगा। शिवगौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई, साधो से देखते ही उसके पैरों पर गिर गया। देवकी लड़के को छाती से लगाकर रोने लगी। गांव में मर्द औरतें और बच्चे सब के सब जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधु ने अपने माता पिता से कहा कि मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी में खुद बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब तुम हमें छोड़कर भागे थे तो हम लोग 3 दिन तक बेदाना पानी के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठे रहे। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया होगा जब तुम्हारी सुध न आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया और अब तुमने खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम भागे कैसे और कहां जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया कि माता जी, अब अपना हाल क्या कहूं। मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम को ही पूछ लिया था। बस पूछता हुआ दोपहर को उनके पास पहुंच गया। साहब ने पहले मुझे समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहां सैकड़ों लड़के थे। वहां बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र है। जब मुझे आप लोगों की याद आती तो मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे उन्ही लोगों में हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ और अपना पराया समझने लगा हूं तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूं। रात दिन आप लोगों की रट लगी थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला। दूसरों में बहुत दिन कटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूं। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वो अब दीजिए। गांव के बहुत से बूढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे? उन्होंने तुमको भी पादरी बना दिया होगा? साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, ये तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने जादू राय की तरफ देखकर कहा, ये बहुत कठिन बात है। साधु बोला, बिरादरी मुझे जो प्रायश्चित बताएगी मैं करूंगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूं। जगत सिंह ने फिर जादू राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में कभी ऐसा हुआ है? यूं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख ले, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक न होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुने। जादू राय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मार डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गईं, आंखों में आंसू भरे हुए कहता है कि पिताजी अपनी गोद में ले लो और मैं पत्थर

किस काम आएगी। इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकालकर बोले, ठाकुराइन, बिरादरी की तो तुम खूब मर्यादा करती हो, लेकिन लड़का चाहे किस रास्ते पर जाए और बिरादरी चूं तक ना करे। अरे ऐसी बिरादरी कहीं और होगी, हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर ये लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वो क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादू राय से रुपए उधार लिया करते थे। मधुर स्वर से बोले, भाभी, अरे बिरादरी थोड़ी कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है, हमारे सिर आंखों पर रहे, पर जरा खाने पीने और छुआ छूत का बचाव रखना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी को कहां तक दबाना चाहते हो। जादू राय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर बोला, बेटा, जहां तुमने हमारे साथ इतना सुलूक किया है वहां जगत भाई की इतनी कही और मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्या मान लो, यही कि अपनों में गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए। ना, ये मेरे किए न होगा, मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वो चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए, फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी होगी। साधु इस रहस्य को न समझ सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। वो बोला, मैं आपका लड़का हूं, आपके लड़के की तरह रहूंगा। आपके प्रेम और भक्ति की प्रेरणा मुझे यहां तक लाई है, मैं अपने घर में रहने आया हूं, और अगर ये मेरा घर नहीं है तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहां से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू, मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आईं और मुस्कुराकर बोला, मैं तो तेरी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर बोला, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या, मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो ना हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह, कितना अपनापन था। बोला, मां आया तो इसी इरादे से था कि अब कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जाति च्युत कर दिया तो मुझसे न सहा जाएगा, मुझसे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा, इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिलेगा तुम्हें देख जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह संभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं, इसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर से पानी लाई, साधु हाथ मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने मां का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। माधु ने आदर पूर्वक दंडवत की। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी मां को मुस्कुराते देखकर समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। मां खड़ी ये दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और मां बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ। वहीं जहां से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहां कोई अपना न था, देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे, हृदय में एक ऐठन से अनुभव करते हुए सोच रहे थे कि हाय हाय मेरे लाल, तुम उससे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है, और ये केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया है।

0: सुनो कहानी के इस अंक में आपने मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी सुनी। अपने अगले अंक में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद के अंतर्गत।

0: भारत के दर्शनीय स्थल
1: अतुल्य भारत।
0: श्रोताओं, इस बार भारत के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर हम आपको उस शहर में ले चलते हैं जो 1912 तक भारत की राजधानी हुआ करता था।
2: हाँ श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कौन सा होगा वो शहर।
0: चलिए एक और क्लू आपको देते हैं। इस शहर में विवेकानंद जी के गुरु रहा करते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे।
2: अरे क्यों नहीं समझेंगे भाई, इतना आसान क्लू जो आपने दे दिया है।
0: जी हाँ, अंग्रेजों का कलकत्ता और आज का कोलकाता है ये शहर।
2: हाँ श्रोताओं, एक कहावत कलकत्ता के नाम से मैं आपको सुनाता हूँ। किसी ने पूछा कि अगर किसी कलकत्तियन के पास ढेर सारा फालतू वक्त हो तो वो क्या करता है, तो उसे जवाब मिला, भाई कहीं उसे आने जाने के लिए बस या ट्राम पकड़ लेना चाहिए। अब सवाल करने वाले को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने फिर पूछा, चलो अगर मान लो उसके पास वक्त बहुत कम है, उसे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, तो फिर उसे जवाब मिला, फिर तो उसे पैदल ही निकल जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, कलकत्ता वालों ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ये जोक खुद ही गढ़ा है।
2: जी हाँ,
0: क्योंकि उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार इतनी धीमी है कि अगर किसी को कहीं जल्दी पहुंचना हो तो वे पैदल ही जाना पसंद करते हैं।
2: हाँ, कोलकाता की बात चली है तो सबसे पहला सवाल जहन में यह उठता है कि आखिर यह नाम पड़ा तो पड़ा कैसे। श्रोताओं, इतना तो आप जानते हैं कि यह शहर अंग्रेजों का बसाया हुआ था और इसे कलकत्ता कहा करते थे वे लोग। वजह यह थी कि उन्होंने जिन तीन गांवों को मिलाकर के यह शहर बनाया था उनमें से एक नाम था कलकत्ता, बाकी के दो गांव थे सुतानाटी और गोविंदपुर।
0: लेकिन ये कलकत्ता नाम भी असली नहीं है। असली नाम है काली क्षेत्रो, जिसका मतलब है देवी काली का क्षेत्र। साल 1698 की बात है। उस समय ये तीनों गांव मुगल साम्राज्य में हुआ करते थे और इनकी जागीरदारी एक चौधरी परिवार के पास हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी और उसे बंगाल में किसी स्थायी ठिकाने की तलाश थी। तो किसी तरह हाथ पांव मारकर उसने इन गांवों की जागीरदारी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली।
2: बिल्कुल ठीक, और कंपनी को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने भी सोच समझ करके इसको बसाया और यह काम किया था एक समझदार अफसर जॉब चारनाक ने। उसने देखा कि इन तीनों गांवों के पश्चिम में हुगली नदी है, उत्तर में एक सकरी खाड़ी है और पूर्व में नमकीन झीलें हैं। हुगली नदी इस इलाके को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तो यह जगह उनके लिए बहुत ही महफूज थी।
0: इस तरह यहाँ अपनी बस्ती बसाने का फायदा ये था कि ये कुदरती तौर पर महफूज थी। इसके अलावा कोई आफत आने पर एक तो हुगली नदी बाढ़ का काम करती, दूसरे इस नदी के जरिए समुद्र की ओर भागा जा सकता था जहां अंग्रेजी नेवी की अजय ताकत इनकी रक्षा करती। चारनाक हालांकि 1693 में ही गुजर चुका था, लेकिन उसकी सलाह को कंपनी ने गांठ बांध लिया था और कोशिश करके 1698 में इस जगह की जागीरदारी प्राप्त कर ही ली।
2: बिल्कुल ठीक, और जैसा कि अंग्रेज हर जगह करते थे उन्होंने यहां भी वही किया। उन्होंने फौरन इस जगह की किलेबंदी शुरू कर दी और 1712 में यहां फोर्ट विलियम नामक एक मजबूत किला तैयार कर लिया और 1772 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी बना और इसके बाद पूरे भारत के ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी। लेकिन 1912 में यह जगह दिल्ली को मिल गई और तब से दिल्ली ही भारत की राजधानी हो गई।
0: अब कोलकाता के संबंध में कुछ दिलचस्प तथ्य और हम आपको बताते हैं।
2: बताइए।
0: अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था कि वे इसे लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा शहर कहा करते थे। आसान शब्दों में कहें तो उनकी नजर में ब्रिटिश एम्पायर के लिए लंदन के बाद सबसे अहम शहर कलकत्ता ही था।
2: श्रोताओं, आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि कलकत्ता को सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है, मगर लाख टके का सवाल तो यह है कि क्यों। वह यूं कि जब अंग्रेज लोग कलकत्ता में बसना शुरू किए तो यहाँ इमारतों के निर्माण के लिए गॉथिक, ब्रॉक, रोमन, इस्लामिक और ओरिएंटल डिजाइनों के एक ही तरह के पैटर्न का इस्तेमाल हुआ।
0: अंग्रेज अफसर खास करके पश्चिमी डिजाइनों के बड़े बड़े महलनुमा बंगले बनवाया करते थे। यहाँ तक कि यहाँ के बंगाली बाबू भी इस मामले में पीछे न रहे। जब बंगाल में जमींदारी प्रणाली आई तो जमींदारों के पास अनाप शनाप पैसा आया। इस पैसे से उन्होंने कोलकाता में शानदार हवेलियां बनवाई जिनमें हर तरह के आराम और शान और शौकत की चीजें होती थी।
2: श्रोताओं, प्रसंग बस आपको यह भी बता दें कि आज इनमें से ज्यादातर हवेलियां खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ का संरक्षण किया जा रहा है और कुछ को हेरिटेज स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है।
0: और इस तरह अंग्रेज जेंटलमैन और बंगाली भद्र पुरुषों के बल पर देखते ही देखते कोलकाता अनगिनत महलनुमा हवेलियों से भर गया और ये शहर सिटी ऑफ पैलेसेस कहलाने लगा।
2: फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर ने कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा है। कोलकातियन सही मायने में जानते थे कि जिंदगी का मजा कैसे उठाया जाए, चाहे दुर्गा पूजा हो, न्यू ईयर हो या अन्य कोई त्योहार हो। कोलकातियन इसे पूरे जोश और खरोश के साथ मनाते थे। पैसे की चाहे कितनी कमी हो, लेकिन जीवन का आनंद उठाने में कोलकाता वाले कभी भी पीछे नहीं रहते थे।
0: एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इडन गार्डन कोलकाता में ही स्थित है। इसमें 1,00,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम है जिसमें फ्लड लाइट्स लगाई गई और डे एंड नाइट मैचेस देखने की फैसिलिटी उत्पन्न की गई।
2: श्रोताओं, ईडन गार्डन की तरह ही कलकत्ता का साल्ट लेक स्टेडियम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बंगाली में इसे युवा भारती क्रीड़ा आंगन कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह मल्टीपर्पज स्टेडियम आज फुटबॉल मैचों व एथलेटिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रोताओं, हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें एक साथ 1,20,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सोचिए जरा,
0: भारत की पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि 1984 में कोलकाता में ही शुरू हुई और ये भारत की पहली अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस भी थी। कोलकाता शहर की 3 निशानियां और भी हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और ट्राम।
2: हाँ श्रोताओं, कोलकाता इस मायने में भी भारत के सभी शहरों से अलग है कि यह देश का पहला एकमात्र शहर है जहां सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह समंदर पर नहीं है बल्कि किसी नदी पर स्थित है। जी हाँ, कलकत्ता सी पोर्ट हुगली नदी पर स्थित है। इस पोर्ट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही की गई थी।
0: और हैंड पुल्ड रिक्शा, जी हाँ, इसे भी शायद सबसे पहले कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया। रिक्शा शब्द जापानी भाषा के जिन रिक्शा शब्द से आया है जिसका मतलब होता है इंसान के द्वारा खींचा जाने वाला रिक्शा। दुनिया को रिक्शे का चलन इसी देश ने दिया है। जब 1868 में मेइजी काल के जापान में ये शुरू हुआ तो इसे उस जमाने की तेज सवारी माना गया क्योंकि इसने पालकियों की जगह ले ली थी।
2: खैर, रिक्शे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पुल रिक्शा। इनमें से पुल रिक्शा ही जापानी जिंग रिक्शा है। इसे आप रिक्शा न कहकर के एक टांगा कह सकते हैं जिसमें घोड़े की जगह इंसान जुटता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि टांगे में घोड़े को हाँकने के लिए एक कोचवान होता है जबकि पुल रिक्शा में इंसान ही घोड़ा और इंसान ही कोचवान होता है।
0: आज से 200 साल पहले चीन के जरिए कलकत्ता आए इस पुल रिक्शे ने हर वक्त कलकत्ता को ऑन व्हील्स ही रखा, चाहे बरसात की वजह से गलियों में पानी भरा हो, चाहे भारत बंद हो या चाहे जाम लगा हो। दौड़ती हुई ये पालकियां अपने लिए रास्ता निकाल ही लेती हैं। इसीलिए कलकत्ता में कहते हैं कि मरीज को अगर अस्पताल ले जाना हो तो इससे भरोसेमंद कोई साधन नहीं।
2: फिल्म निर्माता भी अपनी फिल्म में अगर कलकत्ता दिखाना चाहते हैं तो वे इंसानी घोड़े वाला यह तांगा दिखाना नहीं भूलते, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिकल फिल्म हो, चाहे 2 बीघा जमीन हो या नए जमाने की परिणीता हो। यह साबित करने के लिए कि यह सीन असली कलकत्ते में फिल्माई गई है, पुल रिक्शा को कैनवास पर उभारना ही पड़ता है।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं कोलकाता शहर की एक और निशानी यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल की। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एक बहुत ही खास टूरिस्ट स्पॉट है।
2: जी हाँ,
0: जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया है। ये साल 1902 की बात है जब क्वीन विक्टोरिया का निधन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय हुआ करते थे और कलकत्ता भारत की राजधानी। उन्होंने ही सुझाव रखा कि महारानी की याद में कोलकाता में एक म्यूजियम बनाया जाए, इसलिए इसे लॉर्ड कर्जन का ब्रेन चाइल्ड भी कहा जाता है।
2: श्रोता, विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में मुगलिया व ब्रिटिश आर्किटेक्चर का मिला जुला इस्तेमाल किया गया है। इसके भीतर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल इसे बनाने के लिए इसके आर्किटेक्ट विलियम इमर्सन ने ताजमहल का मॉडल सामने रखा था। 1921 में इसका उद्घाटन हुआ और उस जमाने में इसके निर्माण की लागत आई थी 1,05,00,000 रुपए।
0: मित्रों, आपको बता दें कि इस इमारत को बनाने में अंग्रेज सरकार ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। सारा का सारा पैसा या तो भारत के देशी राजाओं ने दिया या कुछ अमीर लोगों ने, जो इसी बहाने अंग्रेज सरकार का फेवर पाना चाहते थे।
2: विक्टोरिया मेमोरियल में आप ब्रिटिश राज घराने के ढेरों यादगार पेंटिंग्स में मुगल स्टाइल के पेंटिंग्स देख सकते हैं। बंगाल के नवाब का सिंहासन भी इसका एक खास आकर्षण है। इसके खूबसूरत बगीचे में हर शाम लेजर शो, ऑडियो विजुअल शो का आयोजन होता है, जो यहाँ आने वालों के लिए एक यादगार इवेंट होता है। अगर आप विक्टोरिया में जाएं, तो इसे देखना बिल्कुल न भूलें।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत, जिसमें आज हम आपको सैर करा रहे हैं कोलकाता शहर की। तो चलिए अब चलते हैं कोलकाता शहर के न्यू मार्केट में। भोपाल के न्यू मार्केट की ही तरह कोलकाता में भी एक न्यू मार्केट है, लेकिन बस इसका नाम ही केवल न्यू है। वैसे ये काफी पुराना है। 1874 में शुरू हुआ ये मार्केट उस समय हॉग मार्केट कहलाता था। ये नाम उस वक्त के कलकत्ता कमिश्नर स्टुअर्ट हॉग के नाम पर था। आजादी के बाद इसका नाम बदल कर न्यू मार्केट रख दिया गया।
2: इस मार्केट के बारे में कहा जाता है कि यह कोलकाता का शॉपिंग इंस्टीट्यूशन है और जिस किसी चीज के बारे में भी आप सोच सकते हैं वह आपको यहाँ मिल जाएगी। कीमतें कम होती हैं और क्वालिटी हाई, लेकिन शर्त यह है कि आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। श्रोताओं, अगर आप नए हैं तो आप नहीं जानते कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, तो फिक्र न कीजिए, न्यू मार्केट घूमने के लिए गाइड भी उपलब्ध हैं।
0: श्रोताओं, कोलकाता शहर काली मंदिर के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। देवी काली शक्ति के 108 रूपों में से एक है, जो अपने भक्तों को हर तरह की आपदा से बचाती है। आपको तो याद होगा कि कोलकाता का नाम वस्तुतः कालीकता से आया है और कारण यह है कि ये क्षेत्र माँ काली का एक खास स्थान है और यहाँ आज भी आपको ढेरों काली मंदिर मिलेंगे, जैसे कि अयोध्या में ढेरों राम मंदिर मिलते हैं।
2: लेकिन इनमें से हम आपको 2 खास मंदिरों की जानकारी देना चाहेंगे और वो है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर और काली घाट का काली मंदिर। लोग भ्रमवश कभी कभी इन दोनों मंदिरों को एक ही समझ बैठते हैं। दोनों की ही भारी मान्यता है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जहाँ कलकत्ता के उत्तर में स्थित है, वहीं काली घाट का काली मंदिर दक्षिण में स्थित है।
0: श्रोताओं, माँ काली का एक रूप है भवतरिणी। इस रूप में वे कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान है। उल्लेख मिलता है कि 1847 के आसपास कोलकाता में एक रानी रोशमोई हुआ करती थी, जो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी।
2: हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि माँ काली के दर्शन करने के लिए वे वाराणसी जाएंगी। लेकिन उसी रात माँ काली उनके स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि मेरे दर्शन के लिए वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम गंगा के तट पर एक मंदिर बनवा करके उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित कर दो, मैं स्वयं उस मंदिर में विराजमान हो जाऊंगी।
0: इस पर रानी ने एक अंग्रेज जॉन हेस्ट से 20 एकड़ का शाहबान बगीचा खरीदा और उस पर यह मंदिर बनवाया। ये बगीचा एक कछुए के आकार का था। कहा जाता है कि इस आकार की भूमि शक्ति पूजा के लिए बहुत ठीक थी। उस जमाने में 9 लाख रुपए खर्च करके रानी रोशमोई ने मंदिर बनवाया। 1855 में इसका निर्माण पूरा होने के बाद इसमें माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई।
2: श्रोताओं, इसके आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम जिस पुरोहित ने संपन्न कराया था, उसका नाम था राम कुमार चट्टोपाध्याय। जल्द ही इस मंदिर में उनके छोटे भाई, जिनका नाम गदाई था, आकर के शिफ्ट हो गए। आपको बता दें कि गदाई और कोई नहीं रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्हें विवेकानंद जैसे महान पुरुष ने उन्हें अपना गुरु बनाया था।
0: रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता था कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थी, और देती भी क्यों ना, वे माँ में इतने तन्मय रहते थे कि वे अपनी पत्नी शारदा को भी माँ कहते थे और माँ के रूप में ही उनकी पूजा करते थे।
2: आखिरी समय में रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, जिससे उन्हें अपार कष्ट होता था। कई लोगों ने उनसे कहा कि आप तो माँ काली के भक्त हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो यह बीमारी ठीक हो जाएगी। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, नहीं, यह कर्म फल है, इसे तो भोगना ही अच्छा है। अगर बिना भोगे दुनिया से चले गए तो इसे भोगने के लिए मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
0: और अब चर्चा काली घाट के काली मंदिर की। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, आपको याद दिला दे कि शक्तिपीठ वे स्थल हैं जहां देवी सती का कोई ना कोई अंग गिरा था। तो जिस जगह पर ये मंदिर स्थित है, वहां पर देवी के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था।
2: श्रोता, सुनने में आता है कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जंगल हुआ करते थे। एक बार किसी भक्त ने यहाँ पर रोशनी की एक किरण देखी। जब उसने इसका स्रोत ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि यह रोशनी पत्थर के अंगूठे से आ रही है। इस अंगूठे के पास ही एक स्वयंभू शिवलिंग भी था। इस पर भक्त ने उस स्थान पर उपासना आरंभ कर दी।
0: श्रोताओं, जहाँ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के निर्माण काल के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, वहीं काली घाट के मंदिर की प्राचीनता का सही अनुमान हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राएं तक मिली हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है।
2: हाँ, कहते हैं कि ओरिजिनल काली मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी मात्र थी, जिस पर आज से 500 साल पहले किसी राजा मानसिंह ने पक्का मंदिर बनवाया। लेकिन जिस रूप में यह मंदिर आज हमें मिलता है, उसका निर्माण तो सन 1809 में बरिशा के चौधरी परिवार ने करवाया था।
0: श्रोताओं, कोलकाता की दुर्गा पूजा तो आपने सुनी है कि कितनी भव्य और कितनी विशेष होती है। पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना का चलन बहुत पुराना है और दुर्गा जी तो शक्ति के 108 रूपों में से सबसे प्रबल है। वे एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सिंह की सवारी करती हैं, जिनकी आराधना करके राम जी ने रावण को मारा, जिनका स्मरण करके कृष्ण जी ने कंस का संहार किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसकी स्तुति करते हैं, उनकी शान में बंगाली लोग अपना सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं।
2: बंगाली जन दुर्गा पूजा को अकाल बोधन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शक्ति का असमय जागरण। कोलकाता में तो यह त्योहार इतने बड़े पैमाने पर इतने जोश और खरोस के साथ मनाया जाता है कि देश विदेश के सैलानी भी इसे देखने के लिए यहाँ डेरा डाल देते हैं।
0: 10, 20, 50, 100 नहीं, कई हजार पंडाल यहाँ बनते हैं और भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो बेकाबू हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाती है, कई बार तो पैदल चले बिना पंडाल तक पहुँचना संभव ही नहीं रहता।
2: श्रोताओं, वैसे तो दुर्गा पूजा की परंपरा राम ने शुरू की थी, परंतु आज जिस तड़क भड़क के साथ ये त्योहार मनाया जाता है ना, उसका आरंभ सन 1606 में तरहपुर व नादिया के राजाओं ने शारदीय दुर्गोत्सव के नाम से शुरू किया था।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है संस्कृति संवाद, जिसके अंतर्गत आज हम भारत के दर्शनीय स्थलों में आपको सैर करा रहे हैं कलकत्ता शहर की। और चलिए अब बात करते हैं कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज की। श्रोताओं, रुडयार्ड किपलिंग नाम तो आपने सुना ही होगा, वही जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, जिसमें मोगली नाम का एक मशहूर करेक्टर है, जिस पर किसी जमाने में एक हिंदी सीरियल बना और जिसका एक गाना बच्चे गुनगुनाया करते हैं कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है।
0: किपलिंग एक जगह लिखते हैं, अरे ये लंदन यहाँ कैसे, इसे देखने के लिए तो भारत आना बनता है।
2: किपलिंग ने ये लाइनें हावड़ा ब्रिज को देखकर ही लिखी थी। कोलकाता की यह पहचान है कि जिस तरह भोपाल का नाम आते ही भोपाल की झील आंखों में तैरने लगती है, उसी तरह कोलकाता का नाम आते ही हावड़ा ब्रिज भी आंखों के सामने तैरने लगता है। वैसे ये कोलकाता का मोनोग्राम भी है।
0: कोई कोलकाता जाए और ये ब्रिज न देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि वो कोलकाता गया ही नहीं। यमलोक में जिस तरह यमराज होते हैं और क्षीर सागर में विष्णु, उसी तरह कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, इस शहर के शरीर में धड़कते हुए दिल की तरह। किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि बाकी दुनिया को कोलकाता की पहचान बताने का काम ये ब्रिज ही करता है।
2: हाँ श्रोताओं, हावड़ा ब्रिज एक सस्पेंशन टाइप कैंटिलीवर ब्रिज है, जो हुगली नदी के दोनों किनारों पर जुड़वा नगरों कलकत्ता और हावड़ा को आपस में जोड़ता है। इसे बनाने का श्रेय अंग्रेजों को है, उन्होंने इंजीनियरिंग की बेहतरीन कारीगरी दिखाते हुए इसे 6 सालों की कठिन मेहनत के बाद 1942 में तैयार किया और 1943 में ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया।
0: उस वक्त ये न्यू हावड़ा ब्रिज कहलाता था, लेकिन आजादी के बाद 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। मगर हकीकत तो यह है कि जनता आज भी इस नामकरण को शायद नहीं मानती, वो तो आज भी इसे हावड़ा ब्रिज ही कहती है।
2: श्रोताओं, बाय द वे, सस्पेंशन ब्रिज उसे कहते हैं जिसमें ब्रिज का डेक सस्पेंशन केबल के नीचे लटका रहता है। ब्रिज के दोनों सिरों पर सस्पेंशन टावर होते हैं जिनमें स्टील केबल बंधी हुई होती है, और इस तरह के ब्रिज ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में दो ऊंची पहाड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, और सबसे पहले ये तिब्बत व भूटान में बनाए गए थे आज से लगभग पूरे 500 साल पहले।
0: दूसरी ओर कैंटिलीवर ब्रिज उसे कहते हैं जो कैंटिलीवर्स के सहारे हवा में लटकता रहता है बिना किसी नट बोल्ट के। मतलब ये हुआ कि हावड़ा ब्रिज लोहे की मजबूत रस्सियों के सहारे एक छोर से दूसरे छोर तक हवा में लटका हुआ है, न कोई नट बोल्ट और ना ही ब्रिज को टेक देने के लिए कोई पिलर वगैरह।
2: देखा जाए तो पैदल चलने वालों के लिए छोटे छोटे और हल्के फुल्के कैंटिलीवर ब्रिज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के दोनों किनारों को जोड़ती हुई 8 लेन वाली 705 मीटर लंबी संरचना, चौड़ाई 71 फीट और ऊंचाई 269 फीट, जिसे बनाने में 26,500 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जिस पर से रोज 1.5 लाख गाड़ियां 4 लाख पैदल लोग गुजरते हैं। वास्तव में कैंटिलीवर नाम का यह एक अजूबा ही है।
0: ये दुनिया का सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है और पूरी दुनिया में 10 सबसे लंबे कैंटिलीवर ब्रिजों में 6वें नंबर पर है। ये केवल हावड़ा और कोलकाता को ही नहीं जोड़ता बल्कि पुराने कलकत्ता और नए कोलकाता को भी जोड़ता है। तभी तो शायद एक व्यक्ति ने अपनी डायरी में लिखा, सालों बाद कलकत्ता आना हुआ, सब कुछ बदल चुका था सिवाय हावड़ा ब्रिज के।
2: श्रोताओं, कलकत्ता की हम बात करें और वहां की ट्राम सर्विस की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, ट्राम सर्विस भी कलकत्ता की एक अनोखी पहचान है। हालांकि किसी जमाने में यह मुंबई, दिल्ली, कानपुर जैसे कई शहरों में हुआ करती थी, लेकिन आज आप इसे और कहीं नहीं देख पा सकते। इसके अंतर्गत पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रामें कारें लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं।
0: कोलकाता की ट्राम सर्विस को अगर आप ट्रेन जैसी दिखने वाली बस सर्विस कहें तो ज्यादा ठीक होगा। सड़कों पर ही बिछी लोहे की पटरियों पर ट्रामें दौड़ती रहती हैं। न कोई रेलवे फाटक और ना ही कोई बाड़बंदी। आती हुई ट्राम के सामने से लोग आराम से ही निकलते रहते हैं।
2: श्रोताओं, ये बात है साल 1873 की, जब सियालदह और आर्मेनियन घाट स्ट्रीट के बीच लोहे की पटरियों पर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन पर्याप्त सवारियां ना मिलने की वजह से 8-10 महीने में ही यह सेवा बंद हो गई।
0: लेकिन सन 1900 में एक ब्रिटिश कंपनी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड ने इसकी फिर से शुरुआत की। इस बार ट्राम को घोड़ों से नहीं खींचा जाता था बल्कि ये बिजली से चलती थी। देखते ही देखते ये नई ट्राम सेवा कोलकाता की पहचान बन गई और आज इसे इस शहर की एक जिंदा विरासत माना जाता है।
2: श्रोताओं, कोलकाता को इस आधे घंटे के प्रोग्राम में समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए कोलकाता से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां, जैसे वहां का वस्त्र उद्योग, वहां का पहनावा, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान और वहां का रसगोला, इन सब की चर्चा हम करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
2: श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुगम संगीत।
4: उस आश्रम भजनावली में कुछ श्लोक हैं, उनमें से 4 चुनिंदा श्लोक वो लेकर उपस्थित हो रही हैं और इन्हीं श्लोकों से शुभारंभ।

अर्थात हाथ से या पैर से, वाणी से या शरीर से, कान से या आंख से मैं जो भी अपराध करूं, वो कर्म से उत्पन्न हो या केवल मानसिक हो, अमुक करने से हो या अमुक न करने से हो, हे करुणा सागर, कल्याणकारी महादेव, उन सब के लिए तू मुझे क्षमा कर। मेरे हृदय और जीवन में तेरी ही जय जयकार हो।

हे ईश्वर, तू ही एक शरण लेने योग्य आश्रय का स्थान है। तू ही एक वर्णीय इच्छा करने लायक है। तू ही एक जगत का पालन करने वाला है और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। तू ही एक इस सृष्टि को पैदा करने वाला, पालने वाला और इसका संहार करने वाला है। और तू ही एक निश्चल और निर्विकल्प है।

गांधी जी का कहना था कि डर शरीर की बीमारी नहीं, ये आत्मा को मारता है और प्रार्थना हमें निर्भय बनाती है। दरअसल हमारी आध्यात्मिक यात्रा साहस की यात्रा है। प्रस्तुत करने जा रहे हैं अभिषेक नागराज।

गांधी जी ने कहा था, मुझे यकीन है कि एक मनुष्य के आध्यात्मिक लाभ के साथ सारी दुनिया का लाभ होता है, और ठीक इसी तरह एक मनुष्य के अधः पतन के साथ उसी हद तक सारे संसार की अधोगति भी होती है। इसीलिए पराई पीर को समझने वाले करुणा से और प्रेम से भरे हुए मनुष्य को वैष्णव जन कहा गया। आइए सुनते हैं बापू का प्रिय भजन, प्रस्तुत कर रही हैं तापसी नागराज, रचना नरसी मेहता की।

जब हम गांधी जी के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनका पूरा जीवन अपने अंतःकरण के प्रक्षालन का जीवन रहा। वो लगातार सत्य के साथ प्रयोग करते रहे। उनके विचार, वाणी और कर्म में हमेशा एक रूपता रही। जब शब्द आचरण से मंडित होता है तो वो मंत्र की शक्ति प्राप्त कर लेता है। मीराबाई की यही भक्ति रचना सुनते हैं। प्रस्तुत कर रही हैं तापसी नागराज।

जिस तरह सुबह और शाम का आना जाना है, ठीक उसी तरह जीवन में सुख और दुख का आना जाना भी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न राग न विराग। सिर्फ उस विराट की एक झलक पा लेने का जो अनुभव है, वो ही ऐसा है जो मिटता नहीं। जीवन की नश्वरता की ये चेतना ही हमें उस परम सत्ता से जोड़ती है। संत कबीर ने भी कहा, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इसी तरह नजीर अकबर आबादी कहते हैं, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। आइए सुनते हैं ये रचना, गा रहे हैं अभिषेक नागराज।

जिसे उस परमात्मा की झलक मिल गई, उसके लिए ये सारा संसार मिट्टी हो जाता है। ईश्वर की वीणा जिसके हृदय में बज उठी, उसके लिए सारी आवाजें शोर हो जाती हैं। सूफी परंपरा भी उसी विशुद्ध प्रेम की गुनगुनाहट है। निजामुद्दीन औलिया की रचना आइए सुनते हैं। गा रही हैं तापसी नागराज।

दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय भेंट स्वरूप बहुत से गहने उन्हें दिए गए थे। बा स्त्री सुलभ स्वभाव की वजह से उन गहनों को रखना चाहती थी, लेकिन गांधी जी इससे इनकार कर रहे थे। बा ने अंत में रोते हुए कहा कि अच्छा एक तो रख लूँ, लेकिन गांधी जी नहीं माने। बा हार कर उन गहनों का उन्होंने त्याग किया। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अंधेरे में हो और उसे खींच कर हम उजाले में ले आए। अपरिग्रह का जो व्रत गांधी जी का था उसका पालन उन्होंने अपनी जिंदगी में किया था और अंततः बा उससे सहमत हुई। संत कबीर का भक्ति पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

गांधी जी का मानना था कि अंतःकरण की शुद्धता और सदाचरण से ही हमारे सांसारिक जीवन का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है। इसलिए गांधी जी ने एकादश व्रत का सूत्र दिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, स्पर्श भावना और साहस। ये व्रत हमारा भीतर और बाहर शुद्ध कर देता है और तब हमारे भीतर प्रार्थना का फूल खिलता है और उसकी सुगंध हमारे भीतर फैल जाती है। संत रैदास की ये भक्ति रचना प्रस्तुत कर रहे हैं प्रशांत सोनी।

वो हमारी दृष्टि है जो इस संसार को अलग तरह से छूती है और सृष्टि का कण कण हमें ईश्वर की अनुभूति से भर देता है। अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी हर रचना हमें छूती है। इसी प्रेम से भरकर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इस संसार को आनंद यज्ञ कहा। प्रस्तुत है गुरुदेव की रचना।

गांधी जी ने कहा था कि यदि हम धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि से मैं और मेरा निकाल सकें तो हम शीघ्र ही स्वतंत्र हो सकेंगे और पृथ्वी पर स्वर्ग उतार सकेंगे। ऋग्वेद में एक प्रार्थना है कि जैसा संकल्प होगा वैसा ही कर्म होगा, जो तय किया गया है परिणाम वैसा ही होता है। इसलिए हे परमेश्वर, हमारे मन को शुभ संकल्प वाला बनाओ। तो आइए समापन करें स्वस्ति गान से। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की मंगल कामना का हिंदी अनुवाद किया है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ने। प्रस्तुत कर रही हैं तापसी नागराज।

0: इसके साथ ही आज की ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है।
1: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने सुगम संगीत सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं और अब हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। स्वागत है आप सभी का हमारी सायंकालीन सभा में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 122 से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घतमस, देवता हैं विश्वे देवा, छंद है त्रिष्टुप और विराग रूपा त्रिष्टुप।
2: प्र वह पांतम रघुमन्यवोंधो यज्ञम रुद्राय मीडहुषे भरध्वम दिवो अस्तोष्य सुरस्य वीरै ऋषुध्येव मरुतो रोदस्योः। हे अक्रोधी ऋत्विजो, आप हर्ष प्रदायक रुद्रदेव के निमित्त अन्न रूपी आहुति प्रदान करें। जिस प्रकार धनुर्धारी वाणों से शत्रु पक्ष का विनाश करते हैं, वैसे ही दिव्य लोक से आकर असुरता के संहारक दिव्य लोक और भूलोक के मध्य शूरवीरों के साथ वास करने वाले मरुद्गणों की हम प्रार्थना करते हैं। पत्नीव पूर्वहूतिम वावृधध्या उषा सानक्ता पुरुधा विदाने स्तरीर्नात्कम व्युतम वसाना सूर्यस्य श्रिया सुदृशी हिरण्यैहि। जिस प्रकार धर्मपत्नी अपने पति का सदैव सहयोग करती है, उसी प्रकार देवी उषा और रात्रि हमारी पूर्व प्रार्थनाओं को जानकर हमें प्रगति मार्ग पर अग्रसर करें। अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्यदेव के समान स्वर्णिम वस्त्रों से सुसज्जित सूर्यदेव की सुषमा से सुशोभित तथा दर्शन में अति रूपवती देवी उषा हमें समुन्नति के शिखर पर पहुंचाएं। ममत्तु नह परिजमा वसरहा ममत्तु वातो अपाम वृषणवान शिशीतमिंद्रा पर्वता युवम नस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः। तिमिरनाशक और दिन लाने वाले सर्वत्र विचरणशील सूर्यदेव हमें सभी सुखों को प्रदान करें। वायुदेव जल वृष्टि करके हमें आनंदित करें। इंद्रदेव और मेघ आप दोनों को एवं हमें परिष्कृत करें तथा सभी देवगण हमें ऐश्वर्यों से संपन्न बनाएं। उतत्या में यशसा श्वेतनायै व्यंता पांतौषिजो हुवध्यै प्रवो नपातमपाम कृणुध्वं प्रमातरा रास्पिनस्यायोः। उषिक पुत्र कक्षीवान द्वारा अपनी यशस्विता और तेजस्विता उपलब्ध करने हेतु सर्वत्र गमनशील पालनकर्ता अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की जाती है। हे मनुष्यों, आप सत्कर्मों के संरक्षक अग्निदेव के निमित्त श्रेष्ठ प्रार्थना करें तथा स्तुति करने वालों के माता पिता के सदृश दयावा पृथ्वी की भी प्रार्थना करें। आवो रुवण्यु मौषिजो हुवध्यै घोषेव शंसमर्जुनस्य नंसे प्रवह पूषणे दावन आम अच्छा वोचेय वसुता तिमग्ने हैं। हे देवो, जिस प्रकार घोषा नामक स्त्री ने रोग निवारण के निमित्त अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, उसी प्रकार उषिक पुत्र कक्षीवान अपने दुखों की निवृत्ति के लिए आपके आवाहन हेतु सस्वर स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। आपके साथ ही धनदाता पूषा देव की भी प्रार्थना करते हैं। अग्निदेव द्वारा प्रदत्त संपदाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। श्रुतम मे मित्रा वरुणा हवे मोत श्रुतम सदने विश्वतः सीम श्रोतु नः श्रोतु राति सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिंधुरद्भिः। हे मित्र और वरुणदेव, आप दोनों हमारा निवेदन सुने तथा यज्ञ मंडप में चारों ओर से उच्चारित प्रार्थना को भी सुने। सुविख्यात दानशील जलवर्षक देव हमारी प्रार्थना को सुनकर जलराशि से हमारे खेतों को सिंचित करें। स्तुषे सावाम वरुण मित्र रातिर गवाम शता वृक्षयामेषु पज्रे श्रुतरथे प्रियरथे दधाना सद्यः पुष्टिम निरुंधानासो अगमन। हे वरुण और मित्र देवो, हम आपकी प्रार्थना करते हैं। जहां अश्व तीव्र गति से चलाए जाते हैं, ऐसे संग्राम में शूरवीर ही असंख्य गौवों रूपी धन को उपलब्ध करते हैं। आप दोनों उस विख्यात एवं अपने प्रिय रथ में बैठकर शीघ्र यहां आकर हमें पुष्ट करें। अस्य स्तुषे महिमघस्य राधः सचा सनेम नहुषः सुवीराः जनो यः पज्रेभ्यो वाजिनीवान् श्वावतो रथिनो महियं सूरिः। जो सामर्थ्यवान मनुष्य घोड़ों और रथों से सुसज्जित योद्धाओं को हमारे संरक्षणार्थ प्रेरित करते हैं, ऐसे महान वैभवशाली मनुष्यों का धन सभी जनों द्वारा सराहा जाता है। श्रेष्ठ शौर्यवान हम सभी मनुष्य एक साथ संगठित हों। जनो यो मित्रा वरुणा वभिद्रु गपो न वाम सुनोत्यक्षण याद्रुक स्वयं स यक्ष्मम हृदये निधत्त आप यदीम होत्राभिर रितावा। हे मित्र और वरुण देवो, जो मनुष्य आपसे निष्कारण द्वेष करते हैं, जो सोमरस निष्पादित करने से वंचित हैं तथा यज्ञी भावना से रहित हो कुमार्ग पर चलते हैं, वे अनेक प्रकार के मानसिक और हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य सत्मार्ग पर चलते हुए मंत्रों द्वारा यज्ञ संपन्न करते हैं, वे सदैव आपकी कृपा को प्राप्त करते हैं। सव्राधतो नहुषो दंसुजूतः शर्धस्तरो नराम गूर्तश्रवाः विसृष्ट रातिर्याति बाढ़ श्रित्वा विश्वासु पृत्सु सदमिच्छुरः। हे देवो, यजन करने वाले साधक अश्वों से युक्त होकर शत्रुओं के भयंकर विनाश करता अति तेजस्वी याचकों के प्रति उदारता युक्त तथा महान बलशाली होते हैं। वे सभी युद्धों में अति सामर्थ्यवान शत्रुओं का भी विध्वंस करते हुए अग्रसर होते हैं। अधग्मन्ता नहुषो हवम सूरे स्रोता राजानो अमृतस्य मन्द्राः नभो जुवो यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते। हे आकाशव्यापी देवो, आप अपनी सामर्थ्य से अकल्याणकारी दुष्टों की संपदा को प्रशंसा के योग्य श्रेष्ठ रथधारी शूरवीरों के लिए हस्तांतरित करते हैं। तेजवान, हर्षदायक और अमृत स्वरूप यज्ञ की ओर प्रेरित करने वाले हे देवो, मनुष्यों की स्तुतियों को सुनकर आप यहां पधारें। एतम शर्धम धाम यस्य सूरे रित्यवोचन दशतस्य यस्य नंशे द्युम्नानि येषु वसुताति रारन विश्वे सन्वन्तु प्रभृतेषु वाजम्। जिस स्तुतिकर्ता द्वारा 10 चमस पात्रों में रखे गए सोम के लिए आपको बुलाया गया है, आप उसकी सामर्थ्य शक्ति को बढ़ाएंगे, ऐसा देवों का कथन है। जिन देवताओं में तेजस्विता युक्त ऐश्वर्य सुशोभित हो, ऐसे सभी देव हमारे यज्ञों में आकर हविष्यान्न का सेवन करें। मंदा महे दशतयस्य धासेर द्विर यत पंच बिभ्रतो यन्त्यन्ना किमिष्टाश्व इष्ट रश्मिरेत ईशाना सस्तरुष रिंजते नृन। याज्ञिक 10 चमस पात्रों में रखे सोमरूपी हविष्यान्न को लेकर आते हैं। उन पात्रों में रखे सोमरस रूपी अन्न से हम प्रशंसित हैं। जो अश्वों को लगामों द्वारा भली प्रकार नियंत्रित करने की कला में निपुण हैं, ऐसे शत्रु संहारक देवों के होते हुए श्रद्धालु मनुष्यों को पीड़ित करने में भला कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी उनका अहित करने में सक्षम नहीं है। हिरण्यकर्णम मणिग्रीव मरणस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः अर्यो गिरः सद्य आ जगमुषी रोस्राश्चा कन्तु भयेष्वस्मे। संपूर्ण देवता, हमें कानों में स्वर्ण आभूषण तथा कंठ में मणियों को धारण किए हुए सुसंतति प्रदान करें। ये श्रेष्ठ देवता हमारे द्वारा उच्चारित प्रार्थनाओं एवं घृतादि आहुतियों को दोनों प्रकार के यज्ञों में शीघ्र ही ग्रहण करें। चत्वारो मा मशर्षारस्य शिश्वस्त्रयो राज्ञ आयवसस्य जिष्णोः रथो वाम मित्रा वरुणा दीर्घाप्साः स्युमगभस्तिः सूरो नाद्यौत विजयी तथा शत्रु संहारक मशरशार राजा के चार काम क्रोध लोभ और मोह पुत्र को अन्नों के अधिपति आयवस नरेश के तीन पुत्र त्रिताप दैहिक दैविक और भौतिक हमें पीड़ित करते हैं। हे मित्र और वरुण देवो, आप दोनों का विशालकाय सुखकारी रश्मियों से युक्त रथ सूर्य देव के सदृश आलोकित हो।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 122 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। आइए आज की इस शुभ संध्या पर हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे मन में सदैव प्रेम, करुणा और भक्ति बनी रहे। हमारा हर कार्य प्रभु के आशीर्वाद से प्रेरित हो और हर दिन एक नई आस्था की किरण लेकर आए।

मकान हो या इंसान, हमेशा टूट के ही नया बनता है। इसलिए कभी टूट जाने पर ये मत सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि ये सोचना कि एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है।

आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव बना देती है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनते जाते हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत, और इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, PWD में काम करते, PWD में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बताए तेरे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।
1: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है करतार सिंह सराभा की जयंती पर।

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। सराभा पंजाब के लुधियाना जिले का एक चर्चित गांव है। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को सराभा गांव में हुआ था। करतार सिंह के बचपन में ही उनके पिता मंगल सिंह का निधन हो गया और करतार सिंह और उनकी छोटी बहन धनकौर को उनके दादा बदन सिंह ने पाल पोस कर बड़ा किया। करतार सिंह के तीन चाचा बिशन सिंह, वीर सिंह और बख्शीश सिंह ऊंची सरकारी नौकरियों पर काम करते थे। करतार सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना के स्कूल में हासिल की। बाद में उन्हें उड़ीसा में अपने चाचा के पास जाना पड़ा। उड़ीसा उन दिनों बंगाल प्रांत का हिस्सा था जो राजनीतिक रूप से अधिक सचेत था। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उनके परिवार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अमेरिका भेजने का निर्णय लिया और 1 जनवरी 1912 को सराभा ने अमेरिका की धरती पर पांव रखा। और अमेरिका प्रवास के प्रारंभिक दिनों में सराभा अपने गांव के रुलिया सिंह के पास ही रहे थे। उनके जीवन के ऐतिहासिक अंश उनके अमेरिका प्रवास के दौरान ही शुरू हो गए, जब उनके भीतर एक आजाद देश में रहते हुए अपनी राष्ट्रीय अस्मिता, आत्मसम्मान और आजाद देश के नागरिक की तरह जीने की इच्छा पैदा हुई। अमेरिका के 2-3 महीने के प्रवास में ही जगह जगह पर मिले अनादर ने सराभा के भीतर सोई चेतना जगानी शुरू कर दी। एक बुजुर्ग महिला के घर किराएदार के रूप में रहते हुए उन्होंने देखा कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिला ने अपने घर को फूलों और वीर नायकों के चित्रों से सजाया था। सराभा ने जब इसका कारण पूछा तो महिला ने बताया कि अमेरिका के आजादी दिवस पर अमेरिकी नागरिक ऐसे ही घर सजाकर खुशी का इजहार करते हैं। तब सराभा के मन में भी ये भावना जागृत हुई कि हमारे देश की आजादी का दिन भी होना चाहिए।

करतार सिंह सराभा गदर पार्टी आंदोलन के लोकनायक के रूप में अपने बहुत छोटे से राजनीतिक जीवन के कार्यकलापों के कारण उभरे थे। कुल 2-3 साल में ही सराभा ने अपने प्रखर व्यक्तित्व की ऐसी प्रकाश किरणें छोड़ी कि देश के युवकों की आत्मा देशभक्ति के रंग में रंग गई। करतार सिंह सराभा भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करने के लिए 1913 में अमेरिका में बनी गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। गदर आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था, ये सशस्त्र विद्रोह था। अमेरिका की आजादी से प्रेरित होकर अपनी धरती को स्वतंत्र करवाने का ये शानदार आह्वान 1857 के प्रथम संग्राम से प्रेरित था और ब्रिटिश हुकूमत ने जिसे गदर नाम दिया था, उसी गदर शब्द को सम्मानजनक रूप देने के लिए अमेरिका में बसे भारतीय देशभक्तों ने अपनी पार्टी और उसके मुखपत्र को ही गदर नाम से विभूषित किया। विश्व स्तर पर चले इस आंदोलन में 200 से ज्यादा लोग शहीद हुए। गदर और अन्य घटनाओं में 315 से ज्यादा ने अंडमान जैसी जगहों पर काले पानी की उम्र कैद भुगती और 122 ने कुछ कम लंबी कैद भुगती थी। करतार सिंह सराभा अपने गांव के रुलिया सिंह के पास कुछ समय एस्टोरिया में रहे। 1912 के आरंभ में पोर्टलैंड में भारतीय मजदूरों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें बाबा सोहन सिंह भकना, हरनाम सिंह टुंडीलाट और काशीराम जैसे लोगों ने हिस्सा लिया। ये सभी बाद में गदर पार्टी के महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे थे। इसी समय करतार सिंह की भेंट ज्वाला सिंह उठिया से हुई जिन्होंने उन्हें बर्कले विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया जहां सराभा रसायन शास्त्र के विद्यार्थी बने। बर्कले विश्वविद्यालय में उस समय करीब 30 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। ये सभी विद्यार्थी दिसंबर 1912 में लाला हरदयाल के संपर्क में आए जो उन्हें भाषण देने गए थे। लाला हरदयाल ने विद्यार्थियों के सामने भारत की गुलामी के संबंध में काफी जोशीला भाषण दिया। भाषण के बाद हरदयाल ने विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की। लाला हरदयाल और भाई परमानंद ने भारतीय विद्यार्थियों के दिलों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ भावनाएं पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। भाई परमानंद बाद में भी सराभा के संपर्क में रहे। इससे धीरे धीरे सराभा के मन में देशभक्ति की तीव्र भावनाएं जागृत हुई और विदेश के लिए मर मिटने को संकल्पित हो गए। भारत में एक बड़ी क्रांति की योजना के सिलसिले में उन्हें अंग्रेजी सरकार ने कई अन्य लोगों के साथ फांसी की सजा दी थी। 16 नवंबर 1915 को 19.5 साल के युवक करतार सिंह सराभा को उनके 6 अन्य साथियों बख्शीस सिंह, हरनाम सिंह, जगत सिंह, सुरैन सिंह और विष्णु गणेश पिंगले के साथ लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया।

करतार सिंह सराभा की गजल भगत सिंह को बेहद पसंद थी। वे इसे अपने पास हमेशा रखते थे और अकेले में अक्सर गुनगुनाया करते थे। यहीं पाओगे मशहर में जबां मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूं है हिंदोस्ता मेरा।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा। खेलना क्यों जरूरी है, इस विषय पर बता रही हैं मनीषा चतुर्वेदी।
0: हमें आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
0: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। और फिर बाल सभा लेकर आपको तो पता ही है, मैं हर सप्ताह आपसे मिलती हूँ। बच्चों की बातें, बच्चों की दुनिया, उनके मन से जुड़े हुए विषय, और एक बार फिर से उन सब विषयों पर बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं आज का विषय क्या है? आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है। बच्चों, खेल बचपन की ना सबसे सुंदर पहचान होते हैं, क्योंकि खेल केवल समय बिताने के माध्यम नहीं है, बल्कि ये खेल बच्चों को स्वस्थ, आत्मविश्वासी और मिलनसार बनाते हैं। खेल में एक बात और होती है बच्चों, वो होती है जीवन की छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सीखें। अब आप सोचोगे कि खेल से कैसे सीख मिलती है, तो ये तो बच्चों आपको पता ही है कि मैं आपसे कोई भी बात, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, वही बात करती हूँ जिसमें कोई ना कोई सीख छुपी होती है। क्योंकि बच्चों, हमेशा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे

0: हैं वो मीनिंगफुल हो, थॉटफुल हो, जो हम देख रहे हैं उसका कोई अर्थ निकले, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। अगर हम सिर्फ एवं कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों वो समय का दुरुपयोग है, और इस विषय पर हमने पिछली बाल सभा में बात की थी। आज जो बच्चा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आने वाला था, उसका मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया, बोला दीदी मैंने ना आज ही सुबह बहुत ज़रूरी काम से जाना है। मैंने कहा किस काम से जाना है, तो उसने बताया कि एक कॉलोनी में उनकी खेल प्रतियोगिता है, उसमें जाना है। तो बोला दीदी सॉरी मैं आज स्टूडियो ना आऊँ, आज मैं अपनी खेल प्रतियोगिता में चला जाऊँ, बस वहीं से मुझे ये विषय मिल गया। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ प्रतियोगिता में, ना सिर्फ खेल के आओ बल्कि जीत के आओ। और आज मैं अपने सभी श्रोताओं से, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने श्रोताओं से बात करूंगी कि खेलना क्यों ज़रूरी है, और क्यों मैंने उस बच्चे से कहा कि हाँ यहाँ बच्चों से बात करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जो प्रतियोगिता में तुम नाम लिखवा चुके हो पहले जाकर उसमें खेलो, और ना सिर्फ खेलो बल्कि जीतने का प्रयास भी करो। क्योंकि बच्चों ये तो आप जानते हैं कि आज के समय में जब बच्चों का अधिक समय स्क्रीन पे जा रहा है, और ये बात बिल्कुल सच भी है, छोटे छोटे बच्चों को मैं इतने छोटे बच्चों को देखती हूँ, 4 साल के 5 साल के जो खाना खाते वक्त अपनी मम्मा से ये बात ज़रूर कहते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन दे दीजिए, मतलब भाषा में तोतलापन है, मतलब आप सोचिए मम्मा पानी पीना है लेकिन स्क्रीन देखते हुए पीना है। कितने बच्चे छोटे छोटे वजहों से स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल ऑनलाइन स्टडी भी है उसका एक रीज़न है। लेकिन बच्चों जितना ज़रूरी है उसके अलावा हमें स्क्रीन पर समय नहीं बिताना है, बल्कि हमें खेलने जाना है। अब मैं पूछूं आप लोगों को कौन कौन से खेल पसंद हैं, तो वहाँ से आवाज़ आएगी कि मुझे कबड्डी पसंद है, क्रिकेट पसंद है, रस्सी कूद पसंद है, है ना, जो मैं अपने दोस्तों के साथ रोज़ खेलता हूँ या खेलती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को खेल खुश भी रखते हैं, पता है आपको। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाले समय में ले जाऊँ, जब हम लोग खेलते थे, ये सारे खेल तो खेलते ही थे, इसके साथ साथ कुछ और भी खेलते थे बच्चों। क्या होता था कि मम्मियाँ ना दोपहर में काम करके थक जाती थी। अब जब थक गई तो उन्हें एक चीज़ ये भी है कि दोपहर में धूप बहुत है, तो धूप में एकदम बाहर तो खेलने आपको नहीं जाना है, लेकिन जब तक मम्मी सो रही हैं, जब तक माँ और घर में दादी नानी ये लोग सो रही हैं, तब तक बच्चों का हल्ला करना, शोर करना बिल्कुल मना था। और हम लोग अपनी पेरेंट्स की ना बात बहुत मानते थे, तो अब ऐसे में क्या खेल खेलें कि आवाज़ भी ना आए, तो छोटे छोटे से खेल बना लेते थे हम लोग, जैसे आंगन में गए और अष्टाचंगा खेलने लगे। अब आप सोचो अष्टाचंगा क्या होता है, इमली बहुत खाते थे बच्चे गर्मियों में ना, इमली खा रहे हैं तोड़ तोड़ के पेड़ों से, उसके जो बीज निकल रहे हैं उससे हम लोग खेलते थे। आप लोग जैसे पासा और ये सब खेलते हो, लूडो खेलते हो आप लोग, उसी तरीके से हम लोग पत्थर पे किसी चीज़ से, चौक से और पेंसिल किसी ऐसी चीज़ से जिससे वहाँ पर निशान बन जाए, एक चौकोर खाना बना लेते थे और उसमें अष्टाचंगा खेलते थे। सारे दोस्तों को बहुत मज़ा आता था, और फिर जैसे ही सब लोग जग जाते थे और हमें परमिशन मिल जाती थी थोड़ा शोर मचाने की, थोड़ा ऊधम करने की, तो हम लोग पिट्ठू खेलते थे, कंचे बहुत खेलते थे बच्चे। हाँ, उससे एक चीज़ होती थी बच्चों, जो कंचे कई जगह उसे अंटा भी बोलते थे, उससे ना निशाना बहुत अच्छा साध पाते थे। तीरंदाजी बच्चे छोटी छोटी सी जगहों पे बहुत करते थे, गुलेल खेलते थे आप सोचो, और तो और पिट्ठू के अलावा खो खो खेलते थे। खो खो तो अभी भी अब बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। एक खेल हुआ करता था गिल्ली डंडा, उसमें छोटी सी लकड़ी से बच्चे अपने लिए वो बना लेते थे, और तो और जो साइकिल के पुराने टायर होते थे ना बच्चों, उसको भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे छोटी सी लकड़ी से बहुत दूर दूर तक दौड़ा कर ले जाते थे। अब आप सोचिए कि इस खेल में क्या है, इस खेल में जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि बहुत सारा खर्चा नहीं है, है ना, ठीक है। हमको हर चीज के लिए बाजार का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है, हम अपने खेल न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि उनको बना भी खुद रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो बच्चा साइकिल के पुराने टायर को एक लकड़ी से दूर तक दौड़ाता हुआ ले जा रहा है, उसका फोकस कितना अच्छा हो जाता होगा, सोचिए सोचिए, क्योंकि ये सोचना जरूरी है बच्चों। अगर वो बच्चा अपनी मम्मा से रोज कहे कि आज मुझे ये खेल खेलना है, कल मुझे वो खेल खेलना है, आज ये बाजार से ले आइए, आज वो बाजार से, तो पता चलता है कि गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी पापा का बजट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। तो हमको ये नहीं करना है, हमको ऐसे खेल खेलने की कोशिश करनी है जिसको हम थोड़े थोड़े खुद भी बना सकें। और सच बताऊं बच्चों, इसमें मजा भी बहुत आता है। एक और खेल हम लोग खेलते थे, वो पता है क्या था? उस खेल का नाम था किल किल कांटे। अजीबो गरीब सा नाम है ना, पर मुझे आज था कि मैं स्टूडियो में जब आप लोग के साथ खेलों की बात करूंगी तो वो सारे खेल आपको बताऊंगी जो हम लोग खेला करते थे, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन तब बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होते थे बच्चों, है ना, कि छोटी छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग बाजार भाग जाए, नहीं होता था। इनफैक्ट बाजार में भी इतने खेल नहीं थे जैसे आजकल मैं देखती हूँ, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों काम करें उसके लिए नए नए गेम्स आ रहे हैं, नई नई बुकलेट्स आ रही हैं। ठीक है, बाजार में नई चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आप जब खुद कोई खेल बनाते हैं उसमें जो मजा आता है, उसमें जो आपका ब्रेन यूज होता है ना, वो कहीं नहीं होता और कभी नहीं होता, सच मानिए। जैसे वो किल किल कांटे में हम लोग क्या करते थे कि आपको खूब सारी लाइनें खींचनी है लेकिन ऐसी जगह जो दूसरे को पता ना चले, वो फिर आपकी लाइनें ढूंढता था कि आपने कहां बनाई है और उसको काटता था। तो जो आपने लाइन बनाई है उसने अगर सारी काट दी तो वो जीत गया, और नहीं तो बाकी बच्चे ना एक कपड़ा लेते थे और उसकी पीठ पर कपड़े से मारते थे, तो चोट भी नहीं लगती थी, मजा भी आता था और खूब दौड़ा भागी होती थी। ऐसे ही खो खो खेलते वक्त हम लोग बोलते थे कि घोड़ा जब मार खाए पीछे देखा मार खाए, तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा हमारी भाषा को भी समृद्ध करती थी। इसलिए मैं आज आपसे खेलना क्यों जरूरी है इस विषय पर बातचीत करना चाह रही थी। एक बात और थी कि मेरी कुछ दोस्तों को ना गुड़िया के कपड़े बनाना बहुत पसंद था। अब वो अपनी मम्मी से पुराने कपड़े लेती थी, उसमें फिर सुई धागा लेती थी और हाथों से छोटे छोटे से कपड़े बनाती थी कैंची से काट काट के, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट उनमें से एक दोस्त थी जिसको लगता था कि गुड़ियों को थोड़े से वेस्टर्न कपड़े पहनाने चाहिए, तो वो पता है किससे कपड़े बनाती थी? आश्चर्य करोगे, वो बैलून से कपड़े बनाती थी, वो गुब्बारे को पहनाकर गुड़िया को सजाती थी। और मैं आज आपको बताते हुए बहुत गर्व भी हो रहा है कि मेरी वो दोस्त इंडियन फैशन इंस्टीट्यूट में है। तो आपके बचपन के खेल की यात्रा कहाँ तक जाएगी बच्चों, ये किसी को नहीं पता, है ना। और आपको पता है आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे चूंकि स्क्रीन टाइम बहुत है और चूंकि आंखों की बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, पहले हरियाली देखना, घूमना, टहलना, दूर दूर निशाना साधना, तो आपने देखा होगा कई बच्चों को आजकल बहुत कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं। पहले हमारे यहाँ सुई धागा रेस भी होती थी, सुई में धागा डालो। अब सोचो आप सुई में धागा डालना, अब अगर आप आज कोशिश करना कि अपनी मम्मी पापा को बोलो कि एक सुई और धागे की आपसे रेस करवाएं, कितने लोग सुई में धागा डाल पाएंगे ये आप मुझे अगली बाल सभा में जरूर बताना, ठीक है। या तो आप मुझे, जो बच्चे यहाँ स्टूडियो में आएंगे वो बताएंगे, या तो मैं कैसे ना कैसे अपने बच्चों से पूछ ही लूंगी, आज पार्क जाऊंगी शाम को तब भी पूछूंगी और ये बोलूंगी कि घर पे जाके एक्सरसाइज करो। अब आप देखिए कि सुई में धागा डालना कहने को बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन उसमें भी बच्चों आपका फोकस काम आता है ना। आप कितने ध्यान से सुई में जो छोटा सा बहुत बारीक सा छेद है उसको देख पा रहे हो और उसमें धागा पिरो पा रहे हो, है ना। ये छोटी छोटी सी चीज है, जैसे बैलेंसिंग के लिए एक बहुत अच्छी होती थी, चम्मच में नींबू को रखकर और फिर रेस करवाते थे, तो ये मैंने अभी भी बहुत देखी है, अभी भी बच्चे बहुत खेलते हैं। तो इससे क्या होता था, इससे बैलेंसिंग आती थी। अब ये संतुलन, ये फोकस, ये हर चीज क्या आपकी जिंदगी में काम नहीं आती बच्चों? आती है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमें ये समझना होगा कि खेलों से दरअसल हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है, क्या खास बात हम सीख पा रहे हैं, है ना, क्योंकि बैलेंस तो वैसे भी बहुत जरूरी है लाइफ में। अब जैसे एक छोटी सी बात बताऊं आपको, एक बच्ची है, वो जहां मैं रहती हूँ उसके पास में ही रहती है। अब उस बच्ची में मैं हमेशा देखती हूँ कि थोड़ा व्यवहार में संतुलन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जैसे उसे बाहर खेलना पसंद है तो वो पूरे समय बाहर खेलना चाहती है, ठीक। अब उसका देखिए बैलेंस्ड बिहेवियर कैसे डगमगा रहा है कि मैंने देखा कि कल वो बहुत धूप में भी ना सबके घर जाकर बच्चों को बुला रही थी, बाहर आओगे खेलने आओगे। अब क्या हुआ कि एक दो घरों में गई वो, मैं वापस लौट रही थी कहीं से कुछ सामान लेकर, तो मैं चुपचाप खड़े होकर उसकी गतिविधियां देख रही थी। तो उसने किसी एक का दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा अभी हम नहीं भेजेंगे क्योंकि धूप बहुत है। फिर उसने क्या किया, बगल वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया, आंटी उसको भेज दीजिए ना, मुझे उसके साथ खेलना है। तो उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं बेटा धूप बहुत है अभी नहीं भेजेंगे, शाम को आना। अब जब दो तीन घरों में उसे मना किया गया, तो चूंकि मैं सिर्फ उसी को देख रही थी, वो बच्ची थोड़ी देर बाद ना रुआंसी हो गई, तो मैं उसके पास गई क्योंकि मैं जानती हूँ, और मैं, आप लोगों को तो पता ही है मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, कोई बच्चा दुखी हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसके पास गई, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा क्या हो गया, जबकि मैं देख सब रही थी, समझ सब रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, उसने मतलब ऐसा लगा जैसे वो रोने के लिए तैयार बैठी थी, वो रो पड़ी एकदम से, आंटी मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता। मैंने कहा सब तो आते हैं, कहाँ आया आंटी, मैं पिछले कितनी देर से सबके घर पे जाके बैल बजा रही हूँ, कोई नहीं आया। मैंने कहा बेटा टाइम देखो कितना बज रहा है, तो उसने टाइम देखा, उसने बताया कि 3 बज रहा है। फिर मैंने कहा कि इस वक्त धूप देखो, तो ऊपर देखा उसने, मैंने कहा ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है सच में, मतलब ऐसा लगता है थोड़ी देर अगर खड़े हो जाओ बाहर तो जैसे जल रहे हैं। मैंने कहा इतनी धूप में आप कहाँ खेलोगे। बोले वो आंटी पेड़ के नीचे खेलूंगी। मैं कहा ये जो इतना धूप से एक्सपोजर होगा आपका उसका क्या, और कई बार लू जैसी भी स्थिति हो जाती, गर्म हवा भी चलती है धूप में। तो वो रोने लगी, बस उसको एक ही जिद थी कि नहीं मुझे अगर मैं बुलाऊं तो तुरंत दोस्त आ जाने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो वो अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर रखना ही पड़ेगा, आपको टाइम देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने आपसे मना किया है तो क्यों मना किया है। कई बार बच्चों हम सोचते हैं ना कि हमारे किसी दोस्त ने या दोस्त की मम्मी ने या उसकी बड़ी दीदी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, तो मैं देखती हूँ बच्चे तुरंत बोलते हैं वो अच्छी नहीं है, उसकी दीदी अच्छी नहीं है, उसकी मम्मी मेरी बात नहीं मानती है। आजकल मैं ये वाले चर्चाएं बहुत सुन रही हूँ बच्चों से। तब मुझे लगता था कि मैं बाल सभा में बैठूंगी तो आपसे ज़रूर बैलेंस्ड बिहेवियर की बात करूंगी बच्चों, है ना। पता है इसके लिए आप लोग छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए। मैं जो बाद में आपसे संकल्प के वक्त करवाती हूँ ना कि हम एक धीमा संगीत सुनेंगे, शांति से बैठेंगे, संकल्प लेंगे कि हम कुछ अच्छी चीज़ें करें, हम क्या करें और क्या ना करें, तो बच्चों सबसे पहले आप अपने अंदर धैर्य लाइए, सबसे पहले अधीर होना बंद कीजिए, है ना। थोड़ा शांति से 2 मिनट सोचना शुरू कीजिए। जो आपका कंसंट्रेशन टाइम है ना बच्चों, वो बहुत कम होता जा रहा है। मैं देखती हूँ एक बच्चा एकदम बैठता है, फिर दूसरे काम में लग जाता है, दूसरे काम से तीसरे काम में लग जाता है, और जब तक उसको उसके मन की चीज़ ना दे दी जाए वो तब तक शोर करता है। ऐसे कितने बच्चों की कहानियाँ हैं मेरे पास बच्चों, पर मुझे पता है जो बच्चे मेरी बाल सभा सुनते हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में आते हैं, और जो हर बार मुझे बहाने बहाने से कहीं कभी स्कूल जाती हूँ मैं तब बच्चे बताते हैं कि बाल सभा सुनकर दीदी हमने ये सीखा, तो बच्चों जो भी मुझे सुन रहा है ना एक चीज़ ज़रूर सीख लेना, अधीर होना नहीं अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको किसी ने कुछ चीज़ के लिए मना किया है तो आप खुद भी आत्म मूल्यांकन कीजिए बच्चों, रुकिए ठहरिए सोचिए कि आपको इस काम के लिए मना क्यों किया गया। कोई ना कोई कारण जरूर होगा। वापस अपने विषय पर आ जाएं कि खेलना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से बच्चे आपने देखा ही है कि किस तरीके से अभी जो बातें मैं बता रही हूँ, एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, एक बहुत खास बात है खेल भावना की विकास होता है खेल खेलने से। इसमें जो सबसे बड़ी सीख है ना, जब बच्चे टीम में खेलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल हो, या आपने देखा होगा कि फुटबॉल हो, या इवन वॉलीबॉल हो, ये जो आउटडोर गेम है और जो टीम गेम है, आपने देखा होगा कि सिर्फ जो गोल करता है या जो बॉल को बास्केट में डालता है वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, वही चैंपियन नहीं है। जो बॉल को पीछे से लेते चला रहा है, लाता चला रहा है, नेट के पास तक जो बॉल को लाया है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, है ना। तो कई बार हमें ये होता है ना, अरे ये काम मेरे कारण हुआ। कई बच्चे आपने देखा होगा जब बहुत अच्छे आप जाते होगे, खेलते होगे पार्क में, कहीं टीम में, स्कूल टीम की तरफ से आप खेल रहे होगे, या आपने देखा होगा स्कूल में भी कई बच्चों को ना हल्का सा, बहुत छोटा सा ही सही, पर अहंकार जैसा आ जाता है, अरे उस मैच में तो मैंने गोल मारा था, अरे उस वाले गेम में तो मैंने सिक्स मारा था। नहीं, पूरी टीम का सपोर्ट था आपके उस सिक्स के पीछे। पूरी टीम चाहती थी कि आप जब नेट तक बॉल पहुंच जाए तो आप उसको बास्केट में डाल दें। सब चाहते थे, समझ रहे हैं आप? तो बच्चों, कभी भी ये मत सोचिएगा कि खेल सिर्फ खेल है। खेल में बहुत छोटी छोटी छोटी छोटी सी इतनी इतनी माइक्रो सीख छुपी हुई है कि आपको ना अपने दिमाग का लेंस लगाना पड़ेगा कि अरे इसमें तो ये भी छुपा था। जैसे अभी मैंने बताया ना कि टीम में जब आप रहते हो तब आप सपोर्ट सिस्टम सीखते हो। दूसरा, जिन बच्चों को लगता है कि हार गए तो झगड़ लिए, आपने कई जगह देखा होगा कि कई बच्चे एकदम से खेलते खेलते अगर हार रहे तो बैट पटक देते हैं या झल्ला जाते हैं या उनका टोन ऑफ वॉइस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता फिर। तो बच्चों, हमें वो चीज़ें भी सीखनी है और हमें वो चीज़ें भी सोचनी है। अब अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही मुझे एक बच्चे के पापा बता रहे थे कि वो बहुत मोबाइल पे खेलता है, मतलब हर खेल मोबाइल पे खेल लेता है, और बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अब कौन कौन से गेम खेलता है, तो आजकल तो क्रिकेट भी आप मोबाइल पे खेल सकते हो, आजकल तो आप फुटबॉल भी मोबाइल पे खेल सकते हो, आप गाड़ी की रेस मोबाइल पे लगाते रहते हो। लेकिन आप बच्चों बस मुझे ये बताओ कि हाथ में स्क्रॉल करते करते आप कितना भी खेल लेना, उससे क्या होगा? उससे आप बैठे बैठे अनफिट होते जाओगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी फूड क्रेविंग बढ़ती है ना? फिर आप सोचोगे कुछ पैकेट में आपको खाने को मिल जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप कुछ खा लोगे, फिर आप टॉफी चॉकलेट मुंह में डाल लोगे, और फिर थोड़ी देर बाद आप थक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं खेल रहे हैं, खेल कोई और ही रहा है जो वो खेल बना रहा है मोबाइल के लिए, है ना, और आप उसमें बंधते जा रहे हो, ठीक है? और बच्चों, फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप रियलाइज करना आप अकेले होते जाते हो, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे, मोबाइल बात तो कर नहीं सकता आपसे, है ना, बस वो आपके लिए खूब सारी गाड़ियां दौड़ाता जा रहा है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो और आपको लग रहा है आप खेल रहे हो। और ये बात मैं कर रही हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों की, 7 साल के 8 साल के 9 साल के ऐसे बच्चों की। तो बच्चों, ये बात आपको बहुत समझना जरूरी है कि जब आप बहुत समय मोबाइल पर गेम खेलते हुए बिताओगे, आपका दोस्त कौन बचेगा? सोचो, आप किसके कंधे पर हाथ रखोगे? अगर आप स्कूल जाते वक्त आपके दोस्तों से बात नहीं करोगे तो आप बात करने का तरीका ही भूल जाओगे। सच्ची मानिए, मैंने बहुत बच्चों में ये चीज देख रही हूँ कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या बात करें। हेलो, बस चुपचाप बैठ गए, ये नहीं पूछते आज तुमने क्या पढ़ा, कहानी पढ़ी क्या कोई, और आज तुम खेलने गए थे, कौन सा खेल खेल रहे हो? तो क्या बताओगे आप, मैं मोबाइल पर गाड़ियों की रेस लगा रहा हूँ? क्या बताओगे आप, मैं मोबाइल पे वो खेल रहा हूँ क्रिकेट, मैं मोबाइल पे ही बास्केटबॉल खेल रहा हूँ? तो ठीक है, आपके टीम प्लेयर्स कौन है? वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप अकेले रहते हो। जब आप स्क्रीन पे खेलते हो तब आप अकेले होते हो, और जब आप बाहर खेलते हो तो आपके साथ पूरी टीम होती है जो आपको एक संवेदनशील नागरिक बनाने में बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि जब कोई गिर जाता है तो आप उसका हाथ पकड़ के उठाते हो, जब किसी के चोट लग जाती है तो आप उसको पानी से साफ करते हो, उसके घर तक उसको लेके जाते हो। तो इससे आपको बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगते हैं, आप अचानक से हेल्पिंग होने लगते हो, आप अचानक से बहुत मीठा बोलने लगते हो, आप अचानक से फ्रेंडली हो जाते हो, है ना। लेकिन ये सब कब आता है? जब आप घर के दरवाजे खोलते हो, अपने अकेलेपन से बाहर निकलते हो, जब आप लोगों के बीच उठते बैठते हो। नहीं तो क्या होता है? नहीं तो एक कमरा, आपकी स्क्रीन, आपका हाथ, और उससे आपका सारा खेल, खेलते जा रहे हो। तो बच्चों, मैं नहीं सुनूं अब कि कोई भी बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा ले रहा है। मैंने आज खेल क्यों ज़रूरी है इस विषय पे बात ही इसलिए रखी थी कि ये जो छुट्टियां चल रही हैं इसमें आप कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलोगे, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, जूडो हो, कराटे हो, कुछ भी हो, सेल्फ डिफेंस से लेकर गेम जो भी जुड़े हुए हैं वो आपको ज़रूर सीखने चाहिए, वो भी आपको काम आते हैं, है ना। वो खेल ज़रूर खेलिए, क्योंकि यही खेल बच्चों आपको न सिर्फ फिट करेंगे बल्कि आपको, मैं बार बार बोलती हूँ कि खेल से खेल भावना का विकास होता है, और खेल भावना से आप एक बहुत अच्छे बच्चों में बढ़ते जाते हो, तब्दील होते जाते हो। आपकी अचानक से सारी कमजोरियां आपको बाय बाय कहने लगती हैं, है ना। और अब ऐसी ही एक, आपको तो पता ही है एवरेस्ट की बातें हम लोग कर रहे हैं आजकल, तो अब हम फिर से आपको सुनाते हैं बचेंद्री पाल जी का आगे का हिस्सा कि उनका जो प्रथम अभियान था एवरेस्ट का वो कैसा रहा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिसमें वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। काठमांडू में कुछ दिन बिताने के पश्चात हम जीरी चले गए, जो वहां से 4-5 घंटे की यात्रा पर था। जब हमने नामचे बाजार तक की 8 दिन की यात्रा आराम से की, पर्वतों के स्वभाव के विपरीत हम रोज लगभग 1000 मीटर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते, जिससे हम में मजबूती आई और ऊंचाइयों के वातावरण और जलवायु के अनुकूल स्वयं को ढालने में हमें मदद मिली। रास्ते में हमें हसमुख और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ उस क्षेत्र के व्यक्ति विशेष शेरपा मिले। नामचे बाजार शेरपा लैंड की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरी क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को यहीं से निहारा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था। मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से लगभग 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ का पत्थर उड़ता रहता था। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। हम पर्वतीय लोग सदा से पर्वतों की पूजा करते आए हैं, अतः इस भय मिश्रित प्रेरणा स्प्रद दृश्य के प्रति मेरे ऊपर हावी भावना एक प्रकार से श्रद्धा भाव की थी। मैंने अपने हाथ जोड़े और सागर माथा की तरफ श्रद्धा से सिर झुकाया। एक दिन के बाद हम प्रसिद्ध थ्यांग बोके मठ तक पहुंचे, जहां मूर्तिमान थामा ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सफलता तथा सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। थ्यांग बोके न केवल सुंदर था, बल्कि उसकी 4000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई हमारी जलवायु अनुकूलता प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थी। तो बच्चों, ये पर्वत पर जाने की, आप जो हिमालय तक पहुंचने की यात्रा सुन रहे हैं बचेंद्री पाल जी की, वो भी हमें हर पल यही संदेश देती है कि हमें जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, थोड़ी हिम्मत करना ज़रूरी है। तो बस एक बार जो आप सोच लें उसे पूरा करके दिखा दीजिए। और यहाँ जो बच्चे अभी हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट टीम में हो, किसी स्टेट टीम में हो, या फिर हमारे यहाँ के कुछ बच्चे नेशनल भी खेल रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जूनियर, सब जूनियर, ऐसे बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। और एक बार आप स्कूल का जो खेल विभाग है बच्चों, उसमें ज़रूर जाना। और जो आपके कोच, जो आपके स्पोर्ट्स टीचर जो भी होंगे, उनसे मिलकर कहना कि आपको कोई ना कोई खेल ज्वाइन करना है। और जब आप कोई खेल खेलने लगोगे तो सच बोल रही हूँ, आपकी मनीषा दी को बहुत अच्छा लगेगा। और यही बाल सभा में मेरी आपसे बातें करने का जो पूरा मंतव्य है, वो यही है कि हम यहाँ जो बोलते हैं ना बच्चों स्टूडियो में बैठ के, बस उसका असर बच्चों पे पड़े, है ना। तो अगर आप में से 2 बच्चों ने भी अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया, 2-4 बच्चे अगर किसी खेल टीम में चले गए, तो सच मानिए मेरा तो पर्पस पूरा हो गया। और रेडियो आज़ाद हिंद भी यही चाहता है कि जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमको सुनते हैं ना, बस वो धीरे धीरे अच्छे मार्ग पर चलें, है ना। एक बात चलते चलते और बताऊंगी कि जो पारंपरिक खेल थे ना, जिनके बारे में आज मैंने चर्चा की थी आपसे, उसके बारे में अपनी मम्मी से, अपने पापा से पूछना कि आप लोग कौन से खेल खेलते थे जब छोटे थे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ मज़ेदार कहानी किससे बताएंगे। और तो और एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ना, धीरे से अपनी दादी, दादा, नाना, नानी से भी पूछ लेना, दादू आप छोटे थे तो कौन सा खेल खेलते थे, देखना कितनी मज़ेदार कहानियाँ निकल के आएंगी और देखना कितने अच्छे अच्छे खेल आपको पता चलेंगे। और फिर आप उन पारंपरिक खेलों को खेलने की कोशिश करना, उससे क्या होगा, अच्छी चीज़ें अगली पीढ़ी तक ऐसे ही पहुँचेंगी। तो बच्चों, चलने का वक्त आ गया है, आपको पता ही है हमारा आपसे जो अंतिम संवाद होता है वो होता है संकल्पों का। तो वो संवाद शुरू करते हैं एक धीमा संगीत और उसके बाद अपनी बातें। शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अब आज खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप कोई ना कोई खेल जरूर खेलेंगे। जो भी बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो अगर वीडियो गेम या स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, उसे कम करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक इंडोर गेम साथ ही साथ एक आउटडोर गेम में महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले में या जहां भी आप रहते हैं, आसपास बच्चों की एक टीम बनाएंगे और सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोई ना कोई टीम गेम खेलेंगे ताकि आप में खेल भावना का विकास हो। अब आंखें आप खोल सकते हैं और अब मुझे बाय बाय भी कह सकते हैं क्योंकि बाल सभा का समय पूरा हो चुका है। बच्चों, चलती हूँ, अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए और ये प्रॉमिस कीजिए भले ही चाहें तो रेडियो के पास आ जाइए। अगर आप मुझे कार में सुन रहे हैं, मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो अपने मन ही मन खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे और कोई ना कोई खेल में हिस्सा ज़रूर लेंगे। तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, गर्मी से खुद को बचा कर रखिए, थोड़ा सा धूप में कम निकलिए जैसे मैंने उस बच्चे की कहानी सुनाई थी और शाम को खूब जम कर खेलिए। बाय बाय और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।
1: बाल सभा।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था खेलना क्यों ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त मनीषा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं विश्व सिजोफेनिया जागरूकता दिवस पर विशेष कार्यक्रम।
2: मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओं, 24 मई ये तारीख मानवीय स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये दिन विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है और इसे 24 मई को मनाने का क्या उद्देश्य है। हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल, जो कि प्रोफेसर और एचओडी हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में। सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: सर। प्रश्न सबसे पहले यही आता है कि सिजोफ्रेनिया क्या है।
3: सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो हमारे व्यवहार, काम करने के तरीके, सोचने के तरीके को सीधे तौर पे प्रभावित करता है।
2: अच्छा।
3: इसके बारे में जागरूकता की कमी रहती है। इसका बहुत से लोग जिनको बीमारी है, उनके परिजन भी उन्हें इलाज के लिए समय पर नहीं ला पाते हैं, और इलाज नहीं मिलने की दशा में बीमारी के लक्षण बढ़ते हैं और बीमारी धीरे धीरे लाइलाज हो जाती है।
2: अच्छा।
3: उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सबको जागरूक करें कि क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसका उपचार है और क्या उसके बारे में ऐसे मिथक है जिन्हें तोड़ा जाना आवश्यक है, जिससे कि उसके रोगियों को उचित उपचार मिल सके। और उसी उद्देश्य के रूप के पूरा करने के लिए हर वर्ष 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस मनाया जाता है।
2: तो सर, सबसे पहले मन में यही प्रश्न आता है कि सिजोफ्रेनिया के लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि ये मरीज सिजोफ्रेनिया का है।
3: सिजोफ्रेनिया एक तरह से क्लस्टर ऑफ डिसऑर्डर्स है, उसमें कई अलग अलग तरह की बीमारियों के लक्षण या अलग अलग तरह के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, उसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो दो तरह के लक्षण हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं, जैसे एक होता है जिसे हम कहते हैं डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स मतलब ऐसा भ्रम या ऐसा विश्वास जो सच नहीं है पर वो व्यक्ति उसे सच मानता है।
2: अच्छा।
3: जैसे किसी को ये लगे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरे खिलाफ बातें कर रहा है, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन।
2: अच्छा।
3: ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि लोग जो बातें कर रहे हैं वो उसके बारे में कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस।
2: अच्छा।
3: किसी को कई बार ऐसा विश्वास होता है कि उसे पति पत्नी या किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का संबंध किसी और से चल रहा है, जबकि वास्तविकता में मान लीजिए नहीं चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी।
2: अच्छा, यानी सर मूलतः ये भ्रम है कि ऐसा हो रहा है,
3: ऐसा विश्वास हो जाता है व्यक्ति को कि ऐसा हो रहा है जबकि वास्तविकता में वैसा नहीं हो रहा। ऐसा विश्वास इस हद तक होता है कि उस व्यक्ति को कोई भी सबूत दे दिया जाए कि तुम्हारा विश्वास सही नहीं है, फिर भी वो नहीं मानता। तो बेसिकली डिल्यूजन कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी अमाउंट ऑफ रीजनिंग। वो आदमी कुछ सुनने को, कुछ मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है जैसा वो सोच रहा है, जैसा वो मानता है, जैसा उसका विश्वास है, वो बिल्कुल सत्य है। इसमें अलग अलग तरह के डिल्यूजन हैं। एक होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जहां इंसान को लगता है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, बहुत पावर है, ताकत है। या एक ऐसा होता है जहां इंसान को लगता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, में ऐसा लगता है कि कहीं उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के डिल्यूजन्स हो सकते हैं, और उसको कंट्रोल या उसको समय पर इलाज मिलने से उसका उपचार हो सकता है।
2: अच्छा।
3: इसके अलावा जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो डिल्यूजन्स के अलावा जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, एक होते हैं हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस मतलब अलग अलग तरह के हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी, गस्ट्रेटरी, टेक्टाइल, तो अलग अलग सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हेलुसिनेशंस हैं।
2: अच्छा।
3: तो जैसे किसी को कोई आवाज सुनाई दे रही है, वो आवाज वास्तविकता में कहीं है ही नहीं। किसी को कुछ चीजें दिखाई दे रही है, वो वास्तविकता में कहीं है ही नहीं। तो ऐसी चीजें सुनाई देना या दिखाई देना या महसूस होना शरीर पे, या ऐसी स्मेल आना या ऐसा टेस्ट आना जो वास्तविकता में कहीं नहीं है, तो इन चीजों को हम कहते हैं हेलुसिनेशंस।
2: अच्छा।
3: इसके अलावा ऐसा व्यक्ति कभी कभी आक्रामक हो सकता है। एजिटेटेड हो सकता है, कुछ उसके बॉडी के मूवमेंट ऐसे हो सकते हैं कि अगर उसका हाथ किसी पोजीशन में रख दिया तो उसी पोजीशन में रह जाए, ठीक है, उसे साइकोमोटर सिम्टम्स कहते हैं।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो ये मेनली पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया में कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स मतलब इंसान की जीने की उमंग है वो कम हो जाती है, उसके जो इनिशिएटिव टेकिंग है, वो काम करने की शुरुआत कैसे करता है, कैसे उत्साह से वो काम करता है, उसका मोटिवेशन कम हो जाता है, प्लेजर की फीलिंग आनी कम हो जाती है, बंद हो जाती है। तो जो सामान्य व्यक्ति में होते हैं उन चीजों का अभाव हो जाता है, इसके कारण उसे नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। तो नेगेटिव सिम्टम्स में एनहेडोनिया, अपैथी, अवोल्यूशन, अबुलिया, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, इस तरह की कई सारी लक्षण नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। किसी सिजोफ्रेनिया में प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव सिम्टम ज्यादा मिलते हैं किसी मरीज में, किसी में नेगेटिव सिम्टम्स ज्यादा मिलते हैं, किसी में मिक्स सिम्टम मिलते हैं।
2: सर मेरा यही प्रश्न था कि ये सारे मिले जुले लक्षण हो सकते हैं या नहीं।
3: तो सिजोफ्रेनिया में कभी पॉजिटिव अधिक मिल सकता है, कभी नेगेटिव अधिक मिल सकता है, कभी मिक्स भी मिल सकता है।
2: अच्छा।
3: पर ये सब सिजोफ्रेनिया के लक्षण हैं। कभी कभी उसे ऐसा विचार लगता है कि कैसे किसी ने कोई अपना विचार मेरे दिमाग में डाल दिया, उसे हम कहते हैं थॉट इंसर्शन। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे उसके जो विचार हैं, मरीज को ऐसा लगता है उसके जो विचार हैं वो रेडियो वेव्स के थ्रू या टेली वेव्स के थ्रू लोगों को पता चल रहे हैं।
2: अच्छा।
3: उसे थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं।
2: जी।
3: तो इस तरह के कई लक्षण सिजोफ्रेनिया के व्यक्ति में होते हैं। कई बार उसे ऐसे सोमेटिक पैसिविटी, पैसिविटी मतलब जैसे अगर उसका हाथ भी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी और ने उसका हाथ उठा के वहां रख दिया।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: ठीक है,
2: इतने भ्रम में चले जाते हैं।
3: बिल्कुल। तो ये एक मानसिक बीमारी है जो दिमाग के अंदर रासायनिक बैलेंस है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस है, उसके चेंज होने से होती है।
2: अच्छा।
3: और इसके कई कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी हम बात करें कि मानसिक रोग क्यों होते हैं,
2: जी जी,
3: तो मानसिक रोग के होने का जो इटियोलॉजिकल मॉडल है उसे हम कहते हैं बायोसाइकोसोशल। तो देयर आर सम बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, हेरिडिटरी हो सकते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्ले करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मानसिक रोग जैसे कि सिजोफ्रेनिया हो रहा है तो उसको एक तरह से बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली हमें उसके कारण तलाशने पड़ते हैं और उस हिसाब से उसका उपचार चालू करना पड़ता है।
2: जी, तो मतलब ये एक मानसिक अस्वस्थता के लक्षण है लगभग, है ना। तो सर जैसे आपके पास कोई उपचार के लिए आता है तो आप उनका के उत्तरों से ही समाधान कर देते हैं या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है?
3: देखिए, जैसे कोई व्यक्ति आता है तो उसको डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस बेसिकली उसके लिए हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट की, उससे भी, उसके घर वालों से भी।
2: अच्छा।
3: उसके अलावा एक हम होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एमएससी, एमएससी की जाती है। अब सिजोफ्रेनिया जैसे संबंधित लक्षण किसी और बीमारी में भी हो सकते हैं, मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर में भी उससे संबंधित लक्षण आ सकते हैं।
2: अच्छा।
3: कि कोई और ब्रेन का इन्फेक्शन उससे भी आ सकते हैं, तो उन्हें रूल आउट भी करना पड़ता है कि भाई ये किसी नशे की वजह से या किसी दिमाग की किसी और बीमारी की वजह से ऐसे लक्षण नहीं आ रहे हैं, उसे रूल आउट करने के लिए हमें कुछ टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। एक बार हमारा डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो गया कि सिजोफ्रेनिया है, उसके बाद उसका उपचार चालू होता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार भर्ती करके उपचार की जरूरत पड़ती है।
2: अच्छा।
3: ऐसे व्यक्ति के अंदर खासियत कई बार ये होती है कि वह व्यक्ति खुद को बीमार नहीं मानता।
2: जी।
3: तो जो व्यक्ति खुद को बीमार नहीं मानता वो इलाज लेने से भी कई बार
2: मना कर देते हैं। जी।
3: तो कई बार उसे हमें कानून का पालन करते हुए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है 2017 का, उसके प्रावधानों के अंतर्गत भर्ती करना पड़ता है।
2: अच्छा।
3: तो भर्ती करने का भी अलग अलग प्रकार हो सकता है कि एक होता है कि जहां व्यक्ति के अंदर खुद की डिसीजन लेने की कैपेसिटी इंटैक्ट है तो उस हिसाब से एडमिट करते हैं, जहां व्यक्ति खुद के लिए डिसीजन लेने की उसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है वहां पे हमें सपोर्टेड एडमिशन करना पड़ता है।
2: अच्छा।
3: सपोर्टेड एडमिशन मतलब उसकी सूचना हमें न्यायालय को देनी पड़ती है और उस हिसाब से उस पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है। तो उपचार के लिए कुछ मरीजों को हो सकता है ओपीडी ट्रीटमेंट देके ही ठीक किया जा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: और कुछ पेशेंट्स को हो सकता है हमें भर्ती करके इलाज की जरूरत पड़े।
2: अच्छा।
3: क्योंकि दिमाग से संबंधित बीमारी है और दिमाग वैसा ही एक शारीरिक अंग है जैसे कि बाकी हमारे लीवर, किडनी, हार्ट और लंग्स हैं।
2: जी बिल्कुल।
3: तो इसके लिए विशिष्ट दवाइयां हैं जिन्हें एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है।
2: अच्छा।
3: तो वो दी जाती है समय के साथ में, जैसे जैसे मरीज ठीक होता है उसकी दवाइयों में कमी आती है, और अगर मरीज समय के साथ में पूरा ठीक हो चुका है तो कुछ समय के बाद उसकी दवाई बंद भी की जा सकती है।
2: अच्छा।
3: तो ऐसा नहीं है कि एक बार दवाई चालू हो गई तो जीवन भर चलेगी ही चलेगी।
2: जी।
3: तो आमतौर पर कई बार ऐसा भ्रम होता है कि एक बार दवाई चालू होगी तो जीवन भर चलेगी, पर अगर रेगुलर पेशेंट इलाज के लिए आ रहा है, दिखा रहा है, सुधार हो रहा है, तो धीरे धीरे उनकी दवाई बंद भी की जा सकती है।
2: सर यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि क्या सिज़ोफ्रेनिया का उम्र से भी संबंध है क्या?
3: सिज़ोफ्रेनिया आमतौर पे 15 से 25 साल की एज में चालू होता है।
2: अच्छा।
3: ये बीमारी आमतौर पे 15 से 25 साल की उम्र में चालू होती है और इसका अलग अलग तरह का कोर्स या प्रोग्रेशन होता है।
2: अच्छा अच्छा।
3: किसी किसी व्यक्ति में हो सकता है जीवन भर रहे, किसी में हो सकता है कुछ टाइम रहे और कुछ टाइम नहीं रहे, किसी में हो सकता है कुछ टाइम रहे फिर वापिस आए। तो सिज़ोफ्रेनिया का कोर्स और प्रोग्नोसिस अलग अलग मरीजों में अलग अलग हो सकता है और नियमित उपचार से अधिकांश मरीजों में फायदा होता है और एक सामान्य जीवन जी पाते हैं।
2: जी सर, यही प्रश्न आता है कि मतलब सिज़ोफ्रेनिया को इलाज के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं?
3: बिल्कुल कर सकते हैं
2: जी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति है तो सबसे पहला हमारा क्या कदम होना चाहिए उसके लिए?
3: देखिए, लक्षणों की जानकारी बहुत आवश्यक है। कभी भी आपको अपने परिवार में किसी के असामान्य लक्षण लगे कि कोई अधिक गुमसुम रह रहा है, उदास रह रहा है, अपने दैनिक कार्य भी ठीक से नहीं कर रहा, नहाना धोना, शौच जाना, खाना
2: जी,
3: कपड़े पहनना, बाहर जाना, वो भी अगर ठीक से नहीं कर पा रहा है, या वो अजीब व्यवहार कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके कोई खिलाफ काम कर रहा है, शक कर रहा है
2: जी,
3: उसे कोई भ्रम हो रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, या उसके कुछ मूवमेंट ऐसे हो गए हैं कि एक डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन में देख रहा है, एक जगह हाथ अगर उसका हमने कर दिया तो वैसा का वैसा ही हाथ रह रहा है
2: जी।
3: तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं, इवन अगर आप देखें सड़क के किनारे कई बार जो हमें विक्षिप्त से मरीज दिखाई देते हैं, जिनके कपड़े फटे हुए होते हैं, ऐसा लगता है सालों से नहाए नहीं हैं, बाल उलझे हुए होते हैं, जटाएं बनी हुई होती हैं, और थोड़ा सा पास जाओ तो कई बार वो आक्रामक भी हो जाते हैं, पत्थर मारने की कोशिश करते हैं, आमतौर पे वो सब सिज़ोफ्रेनिया बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो सिज़ोफ्रेनिया इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम विश्व के अंदर देखें तो रफली 0.3 से 0.7% लोगों में पाया जाता है।
2: अच्छा।
3: तो अगर हमारे देश की करीब करीब 150 करोड़ आबादी है
2: जी,
3: तो अगर हम 0.3% के हिसाब से भी देखेंगे तो करीब करीब आप ये मान लीजिए 50 लाख से ज्यादा सिज़ोफ्रेनिया के मरीज हमारे देश में हैं।
2: इतना गंभीर है।
3: हर साइकेट्रिस्ट बहुत से सिज़ोफ्रेनिया के मरीज डेली देखता है और भर्ती भी रहने की जरूरत पड़ती है, पर जितने मरीज हैं उतनों का उपचार नहीं हो पाता क्योंकि समाज में जागरूकता की कमी है।
2: कमी है,
3: कमी की वजह से या तो वो व्यक्ति पहुंच नहीं पाते
2: जी,
3: या कई बार वो अलग अलग सिज़ोफ्रेनिया से या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अलग अलग मिथकों के शिकार हो जाते हैं कि कोई रिश्तेदार कई बार कह देता है कि भाई दवाई दोगे तो दवाई से ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, हमेशा चलेगी, कई बार मिथकों के प्रभाव में आके इलाज छूट जाता है, कई बार परिवार का सामर्थ्य उतना नहीं होता कि वो फाइनेंशियली या इमोशनली उतना सपोर्ट कर पाए मरीज को, कई बार सोचते हैं कि भाई शायद शादी कर देंगे उससे ठीक हो जाएगा, पर ऐसा भी नहीं होता है
2: जी, जी।
3: तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, पर अगर उचित मार्गदर्शन मिले तो अधिकांश मरीजों की जिंदगी सुचारू रूप से चल सकती है।
2: तो सर प्रश्न अगला मैं यही पूछना चाहूंगी कि हम इस बीमारी के प्रति हमारा अपना नजरिया कैसे बदल सकते हैं, या हम ये कैसे समझ जाएं कि नहीं नहीं हमें ये बीमारी है या हमारे घर में या हमारे किसी परिचित को है और इसे जाना चाहिए।
3: सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है कि मानसिक रोग शर्म का विषय नहीं है
2: जी,
3: कलंक का विषय नहीं है। मानसिक रोग वैसे ही हैं जैसे शरीर के बाकी रोग हैं
2: जी, जी।
3: अगर हम किसी को ये बता सकते हैं कि हमें या हमारे परिवार में किसी को डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या किडनी की या लीवर की कोई खराबी है तो हमें ये बात में भी बताने में भी संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारे परिवार में किसी को सिज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि शारीरिक रोग मानसिक रोगों की तरह होते हैं। शारीरिक रोग अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड हो सकते हैं, वैसे ही मानसिक रोग है जो हमारा प्राइमरी कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, ब्रेन या मस्तिष्क, उससे संबंधित है। और हम अगर सबको समान दृष्टि से देखेंगे तो हम उसको स्वीकार कर पाएंगे। दूसरा, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे रोगियों को उपचार भी बेहतर हो रहा है। सरकार के भी अलग अलग प्रयास हैं जिससे मदद मिलती है लोगों को डायग्नोसिस करने में
2: जी।
3: वैसा ही एक प्रयास है मन हित करके, एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है
2: जी,
3: जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा तैयार किया है मध्य प्रदेश।
2: अच्छा, मनहित।
3: मनहित
2: जी।
3: तो मनहित ऐप के द्वारा आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं जिनके आधार पर आप अपनी जांच और ये पता कर सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कैसा है।
2: अच्छा।
3: और उसका लिंकेज टेलीमानस जो हेल्पलाइन है या जो मन कक्ष या मेडिकल कॉलेजेस के साइकेट्री डिपार्टमेंट उनसे किया गया है
2: जी।
3: तो एक तरह से सरकार का एक प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग उपचार ले पाए
2: जी। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास है सर।
3: अगर लक्षणों की पहचान होगी तो परिवार के लोगों को समझ आएगा कि हाँ इसका उपचार हो सकता है। जो मनहित है या टेलीमानस है उसके थ्रू ये पता चल सकता है कि कहाँ हो सकता है
2: जी।
3: और जैसे उपचार लेंगे वैसे वैसे मरीज बेहतर होंगे।
2: सर आज की तो इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव और चिंता से ग्रस्त जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही है। तो ऐसे समय में जिस ऐप का आप नाम ले रहे हैं मनहित का, वो हम सभी के लिए लगभग उपयोगी है सर।
3: कायदे से ऐसा ऐप सभी के मोबाइल में होना चाहिए
2: जी।
3: और प्ले स्टोर पे उपलब्ध है
2: जी।
3: बहुत अच्छी बात है कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उस ऐप के माध्यम से आप जितने भी मानसिक रोग हैं उससे संबंधित आपको जानकारी मिल सकती है। उससे जागरूकता से संबंधित वीडियोस भी हैं, पैम्फलेट्स या सामग्री भी है और सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चनर भी हैं।
2: तो
3: अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसे पता चल सकता है उसे डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है या कोई स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई नशे रिलेटेड प्रॉब्लम है या सिजोफ्रेनिया है या बाइपोलर है, तो ये पता चल सकता है, घर बैठे पता चल सकता है
2: जी। इतनी बढ़िया जानकारी है सर, इससे हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित होंगे। तो सर अगला यही प्रश्न बनता है कि सिज़ोफ्रेनिया से जुड़े सबसे बड़े मिथक कौन कौन से हैं?
3: सबसे पहला मिथक ये है कि ये ऊपरी हवा से होता है
2: जी।
3: भूत प्रेत करते हैं
2: जी जी जी।
3: हम अब 21वीं सदी के एक क्वार्टर पूरा कर चुके हैं और कोई भी रोग, सिर्फ सिज़ोफ्रेनिया की बात नहीं है, कई लोग टाइफाइड को मानते हैं कि साहब झाड़ फूक से ठीक हो जाता है।
2: जी जी जी।
3: तो कोई भी रोग किसी ऊपर की हवा से नहीं होता है, सबके वैज्ञानिक कारण हैं और सबके वैज्ञानिक इलाज है। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये भूत प्रेत या ऊपर की हवा से नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि ये दिमाग की बीमारी है, ये किसी की आदत या व्यवहार की समस्या नहीं है, तो इसे रोग की तरह समझना बहुत आवश्यक है। फिर जो हैं कि भाई शायद शादी करने से ठीक हो जाते हैं, तो ऐसे शादी करने से ठीक नहीं होते हैं
2: जी।
3: आजकल शादियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं
2: जी। बिल्कुल
3: कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि मान लीजिए आपने किसी सिज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त व्यक्ति की कहीं शादी कर दी और उनको बताया नहीं कि भाई हमारे बच्चे को इस बीमारी से प्रॉब्लम है
2: जी।
3: तो एक की जगह दो से तीन परिवार के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्या होता है कई पेशेंट बहुत अच्छे चल रहे होते हैं दवाई के ऊपर, जब उनकी शादी की जाती है तो बताते नहीं है, नहीं बताने से उनकी दवाई छूट जाती है और वापस बीमार हो जाते हैं। तो फिर वो वहां परेशान करते हैं, फिर वो वापस यहां आ जाते हैं और ऐसे ही एक की जगह दो तीन परिवारों की जिंदगी खराब होने लग जाती है,
2: कई लोग प्रभावित होते हैं।
3: तो शादी करने से ऐसी समस्या का समाधान नहीं होता। दूसरा ये है कि इलाज से संबंधित बहुत सी भ्रांतियां हैं, इलाज लंबा चलेगा। सबसे एक भ्रांति ये रहती है कि सिर्फ नींद की गोली दी जाती है, जबकि ऐसा कुछ सच नहीं है
2: जी।
3: नींद से संबंधित गोली नहीं दी जाती है, बीमारी को ठीक करने की गोली दी जाती है। क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया के मरीज का एक लक्षण यह है कि उसकी नींद कम हो जाती है
2: जी।
3: तो कई बार नींद भी करेक्शन होता है, नींद में भी ठीक कभी ठीक आती है। तो इलाज और बीमारी से संबंधित कई सारे भ्रम है, उनको एड्रेस किया जाना, उनका उपचार किया जाना बहुत आवश्यक है। ये देवी प्रकोप से नहीं होता है, ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है कि भाई ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व्ड हैं और ये थ्योरीज हैं, ये इलाज है। ये सब वैज्ञानिक आधार हैं और विज्ञान को स्वीकार करते हुए हमें मानना चाहिए कि इसका इलाज संभव है। और सिज़ोफ्रेनिया का मरीज अगर उसे उचित इलाज और उचित मार्गदर्शन मिले तो एक सामान्य जीवन जी सकता है।
2: सर यही आता है कि चलिए जो मरीज है वो आपके पास आया, तो कितना लंबा समय लगता है उपचार में और हम ये कैसे जान सकते हैं कि अब ये मरीज जो है वो ठीक हो गया है?
3: देखिए लंबा समय हर मरीज का अलग अलग हो सकता है।
2: अच्छा।
3: तो जब मरीज पहली बार आता है अगर वो मुझसे पूछे कि मेरे को कितने समय तक इलाज लेना पड़ेगा
2: जी,
3: तो इसका हमारे पास कोई स्पष्ट जवाब उस समय नहीं होता। हम ये कहते हैं कि मिनिमम 6 महीने लेना पड़ेगा कम से कम
2: जी,
3: और मैक्सिमम इस बात पर निर्भर करता है कि दवाई से आप कितने ठीक हो पाते हैं, दवाई आपको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप दवाई को
2: जी जी जी।
3: तो जो मरीज दवाई को जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं उनकी दवाई हम धीरे धीरे कम करके बंद कर सकते हैं। कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनकी दवाई कम करने से उन्हें प्रॉब्लम वापस आती है, तो उनकी दवाई बंद करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है
2: जी।
3: तो कुछ मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनको जीवन पर्यंत मेडिसिन खानी पड़े, कुछ मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनको हो सकता है 1 साल 2 साल 6 महीने के आसपास ही मेडिसिन खानी पड़े
2: जी।
3: तो इलाज की जो लंबाई है वो कई फैक्टर्स पे निर्भर करती है
2: जी।
3: उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इलाज कितना रेगुलर चल रहा है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जो दवाई खाते हैं उन्हें लगता है वो ठीक हो गए हैं और दवाई बंद कर देते हैं और बंद करने के महीने दिन महीने या दो महीने में वो वापस बीमार हो जाते हैं
2: जी।
3: और उनके इलाज की टोटल ड्यूरेशन और बढ़ जाती है।
2: अच्छा,
3: वो मरीज शायद हम एक दो साल में उसकी दवाई बंद कर सकते थे पर उसने स्वयं से सोचा और बंद किया तो उसका इलाज और लंबा खिंच गया
2: जी। यानी लगातार चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है,
3: रेगुलर ट्रीटमेंट एंड रेगुलर फॉलोअप। रेगुलर फॉलोअप भी जरूरी है क्योंकि हर दवाई के कुछ फायदे नुकसान हो सकते हैं
2: जी।
3: तो जब मरीज हमारे पास रेगुलर आ रहा होता है तो मान लीजिए हमें उसका ब्लड शुगर टेस्ट करना है कि उसका लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करना है तो हम उससे संबंधित जांचें करा सकते हैं और उस आधार पर भविष्य का इलाज दे सकते हैं।
2: तो सर एक बात तो हमें ये समझ में आई कि सिज़ोफ्रेनिया जो है वो एक मानसिक अस्वस्थता है या मानसिक बीमारी है, तो समाज में मानसिक बीमारी के मरीजों के प्रति अपना नजरिया किस तरह से बदला जा सकता है?
3: देखिए, समाज के नजरिए का बहुत फर्क पड़ता है
2: जी।
3: मेंटल हेल्थ के लिए जो ट्रीटमेंट गैप है, हमारे यहाँ एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था जिसमें यह पाया गया कि 13.9% आबादी को मध्य प्रदेश में कोई ना कोई मानसिक रोग है।
2: अच्छा,
3: पर उसमें जो ट्रीटमेंट गैप है वो 90% से भी ज्यादा है।
2: अच्छा।
3: मतलब इसमें से 90% से ज्यादा को तो कभी इलाज ही नहीं मिल पाता। वो ट्रीटमेंट गैप इस कारण ज्यादा है क्योंकि समाज में जागरूकता की कमी है या इलाज की उतनी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है। इलाज की फैसिलिटी तो धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि पहले कई जिलों में भी जैसे साइकेट्रिस्ट नहीं थे, वहां भी अब साइकेट्रिस्ट पहुंच रहे हैं, मन कक्ष बन गए हैं। तो समाज का अगर अवेयरनेस अच्छा होगा तो समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर हम समय रहते लक्षणों को पहचान पाएंगे
2: जी,
3: तो हम उसका इलाज भी करा पाएंगे
2: जी।
3: तो जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति को स्किन के ऊपर छोटे से कील मुहासे भी आते हैं, वो तुरंत डॉक्टर के पास जाने का प्रयास करता है, तो स्किन के लिए व्यक्ति बड़ा सेंसिटिव है
2: जी। जी,
3: आमतौर पे बुखार आता है तभी इंसान तुरंत इलाज लेता है।
2: बिल्कुल।
3: कोई और शारीरिक रोग होता है जो शायद इतना लंबा ना भी हो, उसमें भी व्यक्ति तुरंत इलाज लेता है
2: जी।
3: पर जब मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक रोग की बात आती है तो इंसान खुद से डील करने की कोशिश ज्यादा करता है
2: जी।
3: सबसे पहले तो वो कई बार डिनाइल में होता है या उसका परिवार डिनाइल में होता है कि कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
2: सहज स्वीकार नहीं कर सकते।
3: जब धीरे धीरे प्रॉब्लम के सिम्टम बढ़ते हैं और विकरालता दिखाई देती है बीमारी की, तब भी कई बार सामाजिक प्रेशर की वजह से या स्टिग्मा की वजह से वो इलाज को स्वीकार नहीं कर पाते
2: जी।
3: तो समाज को अपने नजरे में ये परिवर्तन लाना जरूरी है, उसका जागरूक होना बहुत आवश्यक है
2: जी।
3: उसे मानसिक रोग को शारीरिक रोगों की तरह समझना बड़ा आवश्यक है
2: जी।
3: ये बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं
2: जी।
3: तो वो समझते हुए अगर वो समय पे रहते इलाज कराएंगे तो बीमारी लाइलाज नहीं होगी। जितनी जल्दी मरीज को इलाज मिले उतना उसके लिए लॉन्ग टर्म अच्छा रहता है
2: जी। तो सर मुझे जहाँ तक ऐसा आपकी बातों से ये चीज समझ में आई कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमको शिक्षा देनी चाहिए, बचपन से ही कुछ हमारे एजुकेशन में कुछ अध्याय इस तरह के जोड़ना चाहिए जिससे हम मानसिक स्वस्थता और अस्वस्थता को पहचान सके।
3: बहुत आवश्यक है
2: जी।
3: इसी नजरिए से या इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह के दिवस जैसे विश्व सिज़ोफ्रेनिया दिवस है या विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है या वर्ल्ड बाइपोलर डे है, इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं। पर और ज्यादा करने की आवश्यकता है
2: जी।
3: मीडिया के माध्यम से भी, सरकारों के माध्यम से भी
2: जी।
3: जैसे मान लीजिए पल्स पोलियो के लिए जो अभियान चलाया गया या ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो अभियान चलाया जाता है, वैसा ही एक अभियान मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी चलाया जाना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: और आत्महत्या एक गंभीर विषय है, कई बार सिज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त व्यक्ति भी आत्महत्या कर लेता है।
2: अच्छा।
3: तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, हो सकता है वो मानसिक रोगी हो सकता है वो मानसिक रोगी ना हो, उसके अंदर आत्महत्या को कम करने के लिए भी मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझना बहुत आवश्यक,
2: बहुत जरूरी है जी। तो सर आपने सिज़ोफ्रेनिया से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसके बारे में कहा भी जाता है कि चुप्पी नहीं, समझ और सहारा ही मानसिक स्वास्थ्य की असली दवा है। तो आप स्टूडियो में आए और आपने हमसे इस बीमारी के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जो कि आधारित था सिज़ोफ्रेनिया पर। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। श्रोताओं, मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे विश्व सिज़ोफ्रेनिया जागरूकता दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम भारतीय सेना के इतिहास के उन गौरवशाली पलों को जी रहे हैं जिसमें कि हमारी सेना के तीनों अंगों, चाहे वो थल सेना हो या फिर वायुसेना या फिर हमारी नौसेना हो, उनके एक बेहतरीन समन्वय, उनके अदम्य साहस और उनके बेहतरीन रण कौशल का अद्भुत मेल हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की, जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था और एक नए देश बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ। कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने जिक्र किया है कि लड़ाई में हमारी वायुसेना ने और हमारी नौसेना ने अपनी अपनी भूमिकाएं किस तरह निभाई। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारी आर्मी यानी कि थल सेना ने इस युद्ध में किस तरह अपना पराक्रम दिखाया कि मात्र 14 दिनों के भीतर पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक बार फिर हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर।
4: नमस्कार बुरुआ जी एंड नमस्कार श्रोताओं। इट इज सेड दैट विक्ट्री लाइज अंडर द फीट ऑफ सोल्जर।
3: जी,
4: नो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री कैन बी क्लेम अंटिल बूट्स आर फिजिकली ऑन द ग्राउंड। जो विजय होती है
3: जी,
4: वो तभी मानी जाती है जब उस जमीन पे आपका
3: हक हो, अधिकार,
4: कब्जा हो,
3: जी बिल्कुल,
4: खड़े होते हैं। तो ये काम जो है आर्म फोर्सेस में आर्मी करती है।
3: जी बिल्कुल
4: ठीक। एंड आर्मी जो है तीनों अंगों में, मतलब उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इट्स अ डिसाइसिव फैक्टर।
3: जी,
4: तो सिमिलरली 71 वॉर में भी आर्मी प्लेड द डिसाइसिव रोल।
3: जी,
4: एंड उसने लैंड, एयर और सी तीनों में जो है
3: जी
4: हिस्सा लेके जो है ये ऑपरेशन पूरा किया
3: जी
4: था। जो 71 वॉर था वो हम जैसे समझते हैं कि ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ा गया था
3: जी,
4: लेकिन जो आर्मी है वो एक्टिवली सारे बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड थी, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में भी जो चाइना है
3: जी जी
4: उससे भी हमें खतरा था
3: जी बिल्कुल,
4: कि इस दौरान अगर उन्होंने वो फ्रंट खोल दिया
3: जी, पाकिस्तान तो का साथ दे दिया,
4: पाकिस्तान का साथ दे दिया
3: जी,
4: तो भी उसको हमें कंट्रोल करना है
3: जी बिल्कुल।
4: ये ऑपरेशन है 71 का, इसको हम दो भागों में जो है डिस्कस करेंगे
3: जी बिल्कुल,
4: ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर
3: जी।
4: तो ईस्टर्न सेक्टर में बांग्लादेश जो इसको कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहते थे,
3: हाँ जी,
4: जहाँ की मेन मतलब जो है जिसको आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी। तो वॉर जैसे हम सबको पता है कि 3 दिसंबर को जो है शुरू हुआ था, लेकिन उसके बारे में जो है संकेत जो है काफी पहले से आने शुरू हो गए थे और दोनों कंट्रीज जो है अपनी प्रिपरेशन कर रही थी ठीक है। बांग्लादेश में जो है काफी जो है टर्मोइल चल रहा था, रिवोल्ट चल रहा था, पाकिस्तान ने जो है काफी फोर्सेस डिप्लॉय कर रखी थी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइमरली अगेंस्ट मुक्ति वाहिनी और अवामी लीग लीडर्स के अगेंस्ट वो लोग लड़ रहे थे। 71 की शुरुआत में ईस्ट पाकिस्तान में तकरीबन एक डिवीजन की फोर्सेस थी
3: जी,
4: जो कि वहाँ उन्होंने डिप्लॉय कर रही थी कि कंट्रोल करने के लिए, और ये बढ़ते बढ़ते जो है
3: जी
4: 5 डिवीजन तक पहुंच गया था।
3: यानी उन्हें भी लगने लगा था कि स्थिति नियंत्रण से
4: बाहर जा रही है जी। उसके अलावा जो है वहाँ पे तकरीबन 75,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी
3: अच्छा
4: पाकिस्तान की। और ये जो सिचुएशन थी जब डिटोरिएट होने लग गई तो इससे क्या है इंडिया में जो है रिफ्यूजीज आने शुरू हो गए थे, और इसके अलावा जो है ये बिल्डअप जो पाकिस्तान कर रहा था वो एक कॉज ऑफ कंसर्न बन गया था इंडिया के लिए। तो इसको काउंटर करने के लिए आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टस लिली लॉन्च किया था।
3: अच्छा,
4: काउंटर बिल्डअप के लिए जो पाकिस्तान जो बिल्डअप कर रहा था उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए इंडियन फॉर्मेशन ने उसी तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन करना शुरू किया, ट्रेनिंग करनी शुरू करी, वेपन्स वगैरह जो है कलेक्शन एंड देन कंसंट्रेशन जो है बॉर्डर के ऊपर मिड अगस्त से शुरू हो गया जो है। ईस्टर्न सेक्टर जो है एक और उसमें इशू ये है कि अगर आप देखें कि उसके साथ चाइनीज बॉर्डर भी लगता है, और तो आर्मी को यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी लड़ना था
3: जी,
4: और चाइनीज के साथ भी अलर्ट रहना था जिनका बॉर्डर सिक्किम हो गया अरुणाचल प्रदेश के साथ जी, लगा जी, हुआ जी, है। साथ ही साथ उस समय नॉर्थ ईस्ट में एक और जो प्रॉब्लम चल रही थी वो थी इंसर्जेंसी की।
3: अच्छा,
4: जो कि कुछ स्टेट में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम थी
3: जी,
4: उनसे भी जो है उसको
3: निपटना
4: था क्योंकि ये भी एक तरह से अगर आप देखें खतरा रहता है कि पाकिस्तान काउंटर इंसर्जेंसी के जो ग्रुप्स थे
3: जी,
4: उनका साथ देके उनको भड़का के जैसे कि वो कर्तव्य है अगेंस्ट में खड़ा कर सकता
3: था। हाँ जी, अलगाववाद को बढ़ा दे।
4: हाँ, तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जब बांग्लादेश के साथ ईस्टर्न सेक्टर में भी लड़ रहे थे तो उस समय फोर्सेस जो थी वो और भी जगह पे एंगेज थी, उनको और भी जगह पे जो है अलर्ट रहना,
3: उतना ही सतर्क रहना
4: जरूरी था
3: जी।
4: तो अब इसमें जो प्लान किया था वो इस तरह से था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके जो इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं, इम्पोर्टेंट वाइटल लोकेशंस हैं उसको कब्जा करना है, और जल्द से जल्द जो है ढाका जो कि सीट ऑफ गवर्नेंस है उसके वहां पहुंचकर उसके ऊपर
3: कब्जा करना है।
4: और इस दौरान जो पाकिस्तान की वॉर मशीनरी है
3: जी,
4: उसको ज्यादा से ज्यादा नष्ट करना है ताकि उनका रेजिस्टेंस खत्म हो सके
3: जी।
4: अब इसमें एक अच्छी बात थी दिसंबर के महीने में कि जो ठंड का मौसम होता है जिससे जिस दौरान स्नोफॉल गिरती है तो उसमें जो हमारे हिमालयस हैं जहाँ पे नॉर्दर्न बॉर्डर चाइना के साथ बॉर्डर है
3: जी,
4: वो काफी कुछ सेफ हो जाते हैं क्योंकि बर्फ के कारण जो है रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये एक हमारे फेवर में एक बात थी। तो आर्मी लॉन्च्ड अ वेरी वेल प्लान्ड अटैक ठीक है फ्रॉम द मल्टी डायरेक्शंस
3: जी।
4: अगर आप बांग्लादेश को देखें तो वो तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है
3: जी, बिल्कुल।
4: चौथी तरफ बे ऑफ बंगाल
3: जी।
4: तो तीनों तरफ से जो है आर्मी ने जो है अटैक लॉन्च किया था। इसमें 2 कोर 4 कोर 33 कोर और 101 कम्युनिकेशन जोन एरिया, ये अलग अलग फोर्सेस थी जो अलग अलग डायरेक्शन से बढ़ी थी।
3: अच्छा,
4: और हम पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बे ऑफ बंगाल में नेवी ऑलरेडी
3: उपस्थित थी
4: और वो ऑपरेशन कैरी आउट कर रही थी है ना, और साथ साथ एयरफोर्स भी सपोर्ट में थी। तो अभी जब फोर्सेस बढ़ रही थी इनको एक और बहुत बड़ा एडवांटेज था इन द सेंस कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो सपोर्ट कर रही थी और मुक्ति वाहिनी भी जो है सपोर्ट कर रही थी। तो उनसे इनको जो है इंटेलिजेंस और गाइडेंस मतलब जो है देखिए रात के टाइम ऑपरेशंस कर रहे हैं और तो आपको अगर मालूम है कि रास्ता कहाँ है किधर से जाना है दुश्मन किधर है ऑलरेडी तो बहुत बड़ी मदद
3: आसानी है।
4: हाँ, जी, इंटेलिजेंस लोकल इंटेलिजेंस वाज अवेलेबल। वेल प्लान्ड ऑपरेशंस जो थे, लीडरशिप बहुत अच्छी थी
3: जी,
4: और हमने जैसे पहले जिक्र किया कि इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी का जो है काफी अच्छा सपोर्ट था। तो इन सबको मिला के इंडियन आर्मी वॉज एबल टू कैप्चर द ऑब्जेक्टिव ठीक है ढाका पहुंचने में सफल हुई 14 दिन के अंदर
3: जी।
4: ये हम 2-3 बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं कैसे हुआ था। इस बीच में जो है आर्मी ने हेलीबॉर्न ऑपरेशंस भी कैरी आउट किए, जैसे हमने जो है एयरफोर्स के एपिसोड में जिक्र किया था, एयरबॉर्न ऑपरेशंस भी किए, एम्फीबियस ऑपरेशंस भी लॉन्च किए थे एंड विच डेमोन्स्ट्रेटेड इन वेरी क्लियर कट टर्म्स द जॉइंटमैनशिप बिटवीन द 3 फोर्सेस,
3: तीनों का समन्वय
4: जी, और एक एक्सपर्टीज कि ये मल्टीफेसेट ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते हैं। और इसी के कारण जो है जो फोर्सेस थी उनको विक्ट्री हासिल हुई
3: जी।
4: और हम सबको जैसे विदित है कि 93,000 सोल्जर्स के साथ पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। अब जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हमने इसको बहुत ही जल्दी समेट दिया
3: छोटा
4: है,
3: कर दिया,
4: छोटा कर दिया है जैसे लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 14 दिन भी होते हैं इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है
3: जी, बहुत बड़ी व्यू रचना है सर इसके
4: पीछे, बिल्कुल बहुत
3: प्लान है बनाया हुआ पहले से ही,
4: बिल्कुल इसके ऊपर प्लानिंग है, इसके ऊपर इसमें मूवमेंट्स हैं, एक एक बटालियन को एक एक को जो टास्किंग दी जाती है और हर बटालियन को जैसे छोटे छोटे टास्क होते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स कैप्चर करेंगे, तो वो बहुत छोटे छोटे जो बैटल्स होती हैं मिलके जो है फिर वो
3: बड़ा उद्देश्य बनते हैं, बिल्कुल सर।
4: तो बहुत छोटी छोटी बैटल्स जो थी वो बटालियन लेवल पे, कंपनी लेवल पे, प्लेटून लेवल पे ये लड़ी गई। अगर आप बांग्लादेश का मैप भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे नाले और बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं
3: जी, बिल्कुल।
4: तो उनको एग्जैक्टली कहाँ क्रॉस करना है, वहां पे कई जैसे जो ब्रिज हमने देखा था कि उन्होंने तो पाकिस्तान ने ब्रिज को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो एयरबॉर्न ऑपरेशंस हेलीबॉर्न ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे, ठीक है, टांगेल में एयर ड्रॉप किया था। तो ये चाहे हमें लगे कि हमने जो है छोटा वो है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे और बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस रहे थे जिसके कारण कि हमें ये सफलता प्राप्त हुई थी। ईस्टर्न सेक्टर में जो सारे ऑपरेशन है इसमें मैं एक का जिक्र करना चाहूंगा,
3: बिल्कुल सर।
4: एक नाम है जो वीरता के तौर पे तौर के नाम पे हमेशा लिया जाता है, लांस नायक अल्बर्टिक का,
3: जी बिल्कुल,
4: 14 गार्ड्स के। तो इस बहादुर सोल्जर की कहानी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा
3: जी, बिल्कुल सर।
4: तो अल्बर्ट इक्का जी जो थे वो रांची के रहने वाले थे, 62 में उन्होंने 14 गार्ड्स ज्वाइन करी थी
3: जी,
4: और 71 वॉर में जो 14 गार्ड्स का यूनिट है उसको टास्क मिला था पाकिस्तान की एक पोजीशन जो कि गंगा सागर नाम की लोकेशन पे थी
3: जी,
4: ये अगरतला के वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, उसको ऊपर कैप्चर करने के लिए। तो जो एनिमी की जो पोजीशन थी वो काफी वेल फोर्टिफाइड थी, मतलब इन द सेंस उसमें उसको काफी मजबूती से बनाया गया था, माइनफील्ड्स लगे हुए सब कुछ था जो है, और उसमें काफी लोग थे, स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा थी। तो इसको जो है कैप्चर करना जरूरी था क्योंकि इसके कारण जो है एक और आगे लोकेशन थी अकूरा वो उसको कैप्चर करने में मदद मिल रही थी।
3: अच्छा।
4: तो जब ये अटैक 3 दिसंबर को लॉन्च किया गया तो अल्बर्ट इक्का जी जो थे वो जो लीडिंग कंपनी थी उसका हिस्सा थे, जो कंपनी सबसे आगे जा रही थी
3: जी।
4: तो जब ये लोग आगे बढ़े तो इनके ऊपर बहुत ही इंटेंस आर्टिलरी शेलिंग और स्मॉल आर्म्स फायर आया
3: जी।
4: तो उस दौरान अल्बर्ट इक्का ने ऑब्जर्व किया कि दुश्मन की एक LMG है जो कि बहुत ज्यादा जिसके कारण की उन्हें नुकसान हो रहा है, कैजुअलिटी हो रही थी। अब उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए उस बंकर के ऊपर चार्ज किया।
3: अच्छा।
4: और जो दुश्मन के जो सोल्जर्स थे उनको मार गिराया, तो इस तरह से जो उन्होंने इस LMG को बिल्कुल जो है नष्ट कर दिया, ठीक है। इसमें उनको भी काफी चोटें लगी
3: जी।
4: बट इसके बावजूद जो है बहादुरी से अपने जो साथी थे कॉमरेड्स के साथ बढ़ते रहे आगे और जो है लड़ाई लड़ते रहे, ये और आगे बढ़े। तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर जाने के बाद वो एक और अपने ऑब्जेक्टिव के पास जब पहुंचे हैं
3: जी, जी।
4: तो इनके ऊपर फिर से जो है काफी हैवी फायर आया।
3: अच्छा।
4: अब इस हैवी फायर में जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी वो मीडियम मशीन गन थी, जिससे काफी ज्यादा मतलब जो फायरिंग राउंड फायर होते हैं, तो उसके कारण जो इनका एडवांस रुक गया था। और ये जो मीडियम मशीन गन थी उसकी लोकेशन भी जो थी वो जो एक फोर्टिफाइड बंकर था जो कि बिल्डिंग के डबल स्टोरी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे थी।
3: अच्छा।
4: तो मतलब
3: ऊंचाई
4: पर ऊंचाई पे थी
3: जी।
4: वंस अगेन जो अल्बर्ट इक्का जी हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि मैं जाके इसको नष्ट करूंगा और अपनी पर्सनल सेफ्टी को दरकिनार रखते हुए जो है ये बहादुर जवान आगे बढ़े और जो है वहां तक पहुंचे। वहां तक पहुंचने के बाद उन्होंने उसमें ग्रेनेड फेंका, ठीक है, जिससे कि एक जो है था अंदर सिपाही वो मर गया और दूसरा घायल हो गया, लेकिन MMG फिर भी एक्टिव थी।
3: अच्छा।
4: तो अब उन्होंने ये देखा तो फिर उन्होंने साइड से जो है चढ़ के ऊपर पहुंच के दोबारा उसके ऊपर अटैक किया
3: जी।
4: अटैक करने के बाद जो है MMG को उन्होंने मतलब न्यूट्रलाइज करा। सुनने में आपको अभी भी लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन जब सामने से फायर आ रहा होता है दुश्मन होता है
3: जी।
4: और ये नहीं है कि उनको, आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ अकेले
3: कितने लोग
4: कितने है? लोग हैं
3: जी,
4: अंदर
3: जी।
4: कैसे हैं, और उन सब के बावजूद आप इनिशिएटिव लेके जो है आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने एक बार नहीं किया, ये दो बार तीन बार लगातार जो है करते रहे। एंड दिस ब्रेव सोल्जर लड़ते रहे
3: जी।
4: और इस बीच में इनको काफी इंजरीज हुई एंड अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो इन्होंने जो है लड़ते लड़ते देश के लिए अपने प्राण दिए थे। तो इसके लिए उनको जो है परमवीर चक्र से
3: सम्मानित
4: किया गया था। तो ऐसे और भी कई बैटल्स थे, ऐसे और भी कई जवान थे, ऑफिसर्स थे जो उन्होंने बहुत बहादुरी से ये जंग में हिस्सा लिया। और उसी के कारण जो है ये विजय हमें हासिल हुई।
3: बिल्कुल सर, बिना बलिदान के इतनी बड़ी विजय मिलना तो नामुमकिन है।
4: तो ये एक तरह से जो है ईस्टर्न सेक्टर का
3: अच्छा
4: वो था जिक्र था, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके कारण जो है हमें विजय हासिल हुई।
3: तो सर यहाँ पर तो ये कहानी तो अधूरी है, क्योंकि ये तो केवल पूर्वी भाग की बात
4: exactly.
3: है, क्योंकि युद्ध तो पश्चिमी भाग पर भी उतनी ही गति से जारी था।
4: बिल्कुल।
3: तो जब तक दोनों ओर से युद्ध समाप्त नहीं हो जाता या विजय नहीं मिल जाती, तो युद्ध समाप्त नहीं हो सकता।
4: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: तो फिर अब आप हमें ये बताइए कि ऐसे ही समय में, इसी समय पर थल सेना की क्या भूमिका थी पश्चिमी भाग में?
4: अगर हम पश्चिमी भाग देखेंगे तो उसका जो फ्रंटेज है वो काफी बड़ा है
3: जी।
4: अब आप ये देखें, लद्दाख सेक्टर से शुरू होके जो है नीचे रण ऑफ कच्छ तक, द कंप्लीट थिंग इज ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर
3: जी, बिल्कुल
4: विद पाकिस्तान जो है हमारा। तो इस पूरे के पूरे एरिया में यू कैन विजुअलाइज कि कितना डाइवर्स टेरेन है
3: जी।
4: हाई एल्टीट्यूड एरिया है, स्टीप माउंटेन्स हैं 19,000 से 20,000 की ऊंचाई पे, उसके प्लेन्स हैं पंजाब के, फिर डेजर्ट है राजस्थान का, सब कुछ आता है,
3: समुद्र भी की सीमा भी है।
4: हाँ जी। और हर एक इलाके के लिए आपको अलग अलग तरह से एक्सपर्टीज चाहिए लड़ने के लिए, अलग तरह की टैक्टिक्स चाहिए, अलग तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए, अलग तरह के हथियार चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, हर एक कुछ अलग अलग करना होता है। तो इट्स अ मैसिव जॉब टू कोऑर्डिनेट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। इसके लिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड और लीडरशिप चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग उनको जो कोऑर्डिनेट करना। एंड दिस वाज अचीव्ड बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है। तो अगेन अगर हम बात करें, वही 3 दिसंबर से शुरू हुआ था जो है। और इसका अगर मैं जिक्र करना चाहूंगा तो अगर हम ऊपर लद्दाख सेक्टर से देखें तो लद्दाख में जो है श्योक वैली जहाँ है उसको प्रतापपुर सेक्टर बोलते हैं।
3: अच्छा।
4: तो प्रतापपुर सेक्टर जो है इट इज वन ऑफ द टफेस्ट, इसी के अंदर सियाचिन ग्लेशियर आता है।
3: अच्छा।
4: ठीक है। उस समय ऑफकोर्स सियाचिन ग्लेशियर वॉज नॉट एक्टिव इन द सेंस, वहां पे ये हमारा जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं चल रहा था, वो बाद में आया था, उस समय वो एरिया डॉर्मेंट था। लेकिन उसका जो बाकी एरिया जो है LOC जो है वो तो मतलब POK का एरिया था उसमें जो है। तो उसमें जो है एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन थी, दिसंबर का महीना था और माउंटेन्स जो है मतलब 16,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई पे है वहां पे। तो वहां पे लद्दाख स्काउट और नुब्रा गार्ड्स थे, उनके अंडर में एक बहुत ही हाईली डेकोरेटेड सोल्जर थे, ऑफिसर थे मेजर सी रंजन।
3: अच्छा।
4: जो ऑलरेडी महावीर चक्र और सेना मेडल से
3: सम्मानित
4: थे।
3: जी, बिल्कुल।
4: तो उन्होंने जो है POK एरिया में अटैक लॉन्च किया था। और ये देखे कि कितना मतलब उन्होंने जबरदस्त अटैक करके जो है एक के बाद एक उन्होंने ऑब्जेक्टिव कैप्चर करके ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 5 गांवों के ऊपर कब्जा किया था।
3: क्या बात है।
4: जी। तुर्तुक, त्याक्षी से होते हुए 5 गांव थे जो उन्होंने कब्जा किए थे और ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर की जो है टेरिटरी
3: कवर करी
4: उन्होंने
3: जी।
4: एक और मजेदार बात यह है कि जो 5 गांव थे जिसमें मुस्लिम्स रहते थे उन सबने जो है इंडियन सोल्जर्स का वेलकम किया था।
3: यानी वो पाकिस्तान से त्रस्त है सर।
4: त्रस्त है
3: जी।
4: तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है
3: जी,
4: जो है
3: बिल्कुल।
4: और इसके अलावा वहां पे उन्होंने एक पोस्ट पे भी कैप्चर किया था जो कि 19,000 की हाइट पे थी। तो उस मौसम में जहाँ सांस नहीं आती है
3: जी, जी, जी।
4: और उन दिनों तो इवन साधन भी नहीं होते थे इतने ज्यादा, उस वक्त इतनी ऊंचाई पर लड़ना काबिले तारीफ है,
3: बिल्कुल अविश्वसनीय है।
4: अविश्वसनीय है
3: जी।
4: मैं खुद इन हाइट्स पर रहा हूँ, सचिन में रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल अभी के हालात में जबकि हमारे को इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल, तब 71 के टाइम पे मतलब जो है इसमें लड़ना बहुत बड़ी बात थी। एंड इसके कारण नो डाउट ये जो ट्रुप्स थे इन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहादुरी का काम किया था। उसके लिए मेजर इंचन साहब को एक बार फिर से महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और भी जो है काफी सारे जो लीडर्स थे, जवान थे, उनको जो है गैलेंट्री अवार्ड्स मिले थे। उसके पश्चात अगर हम थोड़ा वेस्ट में आते हैं तो कारगिल सेक्टर आता है। तो अगेन कारगिल सेक्टर वी ऑल नो के इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट सेक्टर, ठीक है, हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसमें सबसे हमारे लिए सबसे जरूरी है कि पूरा लद्दाख जो है उसी रोड से जुड़ता है जो कि श्रीनगर से ले जाती है
3: जी।
4: और उसको डोमिनेट जो है कुछ पोस्ट करती थी पाकिस्तान की। तो इसको सेक्टर को समय भी 1-to-1 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ग्रुप जो है इसके डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था।
3: अच्छा।
4: और ब्रिगेडियर एम एल विग जो थे वो इसको कमांड कर रहे थे, ठीक है। तो इस सेक्टर में ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किए थे इंडियन आर्मी ने और पाकिस्तान की 80 में से जो है 36 पोस्ट पे कब्जा किया था।
3: 80 में से 36
4: जी। और एक तरह से मतलब जो है पाकिस्तान का जो डोमिनेशन था इस रोड के ऊपर वो एक तरह से पूरी तरह खत्म कर गया। इफ यू सी इट इज अ मेजर अचीवमेंट
3: जी, बिल्कुल
4: मेजर सक्सेस, ठीक है। एंड इसी दौरान जो है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से ऊपर, स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर जो है पाकिस्तान के टेरिटरी भी कब्जा किया था। और जो पाकिस्तान की वहां की जो डिफेंसेस थी
3: जी
4: उसको एक तरह से खत्म कर दिया,
3: पीछे हट गए वो
4: बिल्कुल
3: जी।
4: इसके लिए जो ब्रिगेड कमांडर साहब थे तो उनको जो है महावीर चक्र से
3: सम्मानित
4: किया गया था। एंड वेरी राइटली ही डिजर्व्ड दिस ऑनर
3: जी, बिल्कुल,
4: फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लीडरशिप एंड ब्रेवरी, ठीक है। एंड और भी जो ऑफिसर्स जो थे जिसियोस और जवान लड़े थे भावी से उनको भी अवार्ड्स मिले थे जो है
3: जी।
4: इसी तरह से और हम वेस्ट में आते हैं तो श्रीनगर वैली उरी सेक्टर में जो है वी वर डिप्लॉयड इन डिफेंसिव रोल, ठीक है। यहाँ पे भी ऑफेंसिव ऑपरेशंस लॉन्च करके जो है डिफेंसिव पोस्चर्स को इम्प्रूव करा गया था। एंड पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर जो है कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली जो है प्रेशर बनाए रखा था। सबसे ज्यादा जो मेजर ऑफेंसिव पाकिस्तान ने लॉन्च किया था वो पुंछ सेक्टर में 3 दिसंबर को किया था, जिसमें कि उन्होंने हमारी लोकेशन थी थानपीर और मंडी हाइट्स उस पर कब्जा किया था। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो है उसके ऊपर जो है काउंटर ऑफेंसिव करके वो दोबारा कैप्चर कर ली थी। एंड उसके बाद जो है पुंछ में
3: जी
4: उनका जो है अटैक नहीं आया था, सीधा आउट हो गया था, खत्म हो गया था। फिर पाकिस्तान का और सबसे जो है फियर्स अटैक आया था वो था छम सेक्टर, जहाँ पे कि दे सक्सीडेड कैप्चरिंग मंडियाला हाइट्स, ठीक है। और उसके बाद फिर से जो है पाकिस्तान लॉन्च मेजर अटैक एंड कैप्चर छम। और इस सफलता के बाद पाकिस्तान ने जो है मुनव्वर तवी रिवर के अक्रॉस जो है ऑपरेशन लॉन्च करा था। यहाँ पे जो इंडियन आर्मी ने उनको जो है काफी फियर्स फाइट दिया था। एंड जो इसमें जो है पाकिस्तान के काफी सारे टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए थे, एंड जिससे कि पाकिस्तान जो फोर्सेस है उनको पीछे हटना।
3: यानी सर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के इलाके में यदि हम देखें तो लगभग सारे क्षेत्र में भारतीय सेना युद्ध में हावी रही थी और लगभग उसकी विजय थी
4: आप कह सकते हैं
3: जी,
4: क्योंकि हमने जो ऑपरेशंस वहां करे थे उसमें क्लियर कट जो है कारगिल सेक्टर, प्रतापपुर सेक्टर में हमें जो है विजय हासिल हुई थी
3: जी।
4: ऑफ कोर्स जैसे अभी हमने जिक्र किया कि छम सेक्टर में वी लॉस टेरिटरी, एंड इसके अलावा भी श्रीनगर में जो उरी सेक्टर था, ठीक है, उसमें इट इज नॉट दैट कि वी लॉस्ट एनीथिंग बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट मेड मेजर सक्सेस। तो ये एक तरह से इस तरह का ऑपरेशन वहां पे चला था जो है। मेजर जो लड़ाई हुई थी उसके बाद वो थी शकरगढ़ बल्ज पंजाब में
3: जी। तो सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी कि ये शकरगढ़ बल्ज कहाँ है और ये बल्ज क्या होता है?
4: देखिए बल्ज का मतलब होता है कि जमीन जो है वो एक तरह से हमारी तरफ अंदर से उठी हुई, जैसे आपने गुब्बारे में अगर हवा भरी होती है तो किस तरह से फूलता है
3: जी।
4: उसी तरह से जमीन का जो हिस्सा है जो एक तरह से पाकिस्तान का हिस्सा है जो हमारे अंदर आया हुआ है।
3: अच्छा अच्छा।
4: जिसमें कि मतलब इनफैक्ट अगर आप देखें जैसे अगर एक गुब्बारा है उसके मतलब गुब्बारे के जो पूरी बॉर्डरी है
3: जी जी जी
4: उसपे इंडियन फोर्सेस लगी हुई हैं और अंदर जो एरिया है वो पाकिस्तान का है।
3: अच्छा जी जी।
4: उसको हम बल्ज बोलते हैं।
3: मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे देश के क्षेत्र में अंदर तक आया हुआ है
4: जी। और ये गोल शेप में
3: जी
4: है तो उसको हम बल्ज कहते हैं।
3: ओके।
4: तो ये शकरगढ़ बल्ज का जो एरिया है ये चिनाब और रावी रिवर के बीच में पड़ता है।
3: अच्छा अच्छा।
4: और इसका जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ये है कि इससे जो है हमारी जो मेन कम्युनिकेशन लाइन है जो जम्मू से जुड़ती है
3: जी,
4: जो रोड है वो इसके पास से गुजरती है।
3: अच्छा।
4: तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है कि वहां से अपने फोर्सेस लाके अटैक करके सांबा के पास हमारा जो रोड कम्युनिकेशन है उस पे कब्जा कर। तो अगर वो ऐसा कर पाने में सफल होता तो उससे जम्मू सेक्टर नदन सेक्टर को वो पूरा काट सकते थे जिससे कि हमारे लिए काफी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। तो ये एक्सपेक्टेड था एक तरह से कि पाकिस्तान वहां पे अपना ऑपरेशन ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करेगा।
3: जी।
4: उसके कारण जो है हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो भी इस एरिया में काफी सजग थी,
3: पूर्व तैयारी में थी जी।
4: काफी सजग थी एंड एक तरह से जो है इंटेलिजेंस अवेलेबल भी यही थी। जैसे अभी मैंने कहा कि पाकिस्तान ने अपना आर्मर डिवीजन और एक इन्फेंट्री डिवीजन ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए इस सेक्टर में डिप्लॉय करा हुआ
3: जी,
4: है
3: जी।
4: और पाकिस्तान ने जो बल्ज है इसकी जो डिफेंसेस भी बहुत स्ट्रांग बनाई हुई थी क्योंकि उसको भी एक खतरा है कि अगर हम चारों तरफ हैं तो हम भी अंदर आ सकते हैं और या उसको कट कर सकते हैं। और उन्होंने काफी एक्सटेंसिव माइंड फील्ड उसमें वहां पर लगा रखी थी ताकि किसी तरह से भी उनको टेरिटरी लॉस ना हो मतलब पराजय का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस इलाके में जो है पाकिस्तान ने ऑपरेशन नहीं लॉन्च किया।
3: अच्छा।
4: इन स्पाइट ऑफ दिस कंफर्मेशन की उनकी फोर्सेस थी उन्होंने ऑफेंसिव नहीं लॉन्च किया। इंडियन आर्मी लॉन्च दिस ऑफेंसिव।
3: अच्छा। यानी पहले मौका भारतीय सेना को मिल गया।
4: हाँ,
3: ले लिया भारतीय सेना ने।
4: तो 5 दिसंबर को जो हमारी वन कोर थी उसके साथ जो है इंडियन आर्मी लॉन्च ऑफेंसिव विद द एम ऑफ कैप्चरिंग शकरगढ़ बल्ज, मतलब इस बल्ज को कैप्चर करने के लिए लॉन्च किया था। और इस ऑफेंसिव में अगेन जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था अब कि एक जैसे अब हम बात कर रहे हैं बल्ज पर अगर अटैक किया है तो इसमें अलग अलग डिविजन्स को टास्क दिए गए थे तो उसमें जो है अलग अलग जो यूनिट डिविजन के अंदर ब्रिगेड्स थे उनके टास्क थे फिर यूनिट्स के टास्क थे तो बहुत सारी बैटल्स मतलब जो है लड़ी गई थी।
3: अच्छा।
4: एक ही टाइम पे जो है कई जगह पे जो है बैटल्स लड़ाई चल रही थी। इसमें जो एक बैटल लड़ी गई थी जिसको बैटल ऑफ बसंतर के नाम से जाना जाता है।
3: बेहद मशहूर है सर।
4: बेहद मशहूर है
3: जी।
4: एंड दिस वाज वन ऑफ द फियर्सेस्ट बैटल ऑफ 71 वॉर। मतलब सबसे ज्यादा जो है आप ये देखिए इस बैटल के अंदर 2 परमवीर चक्र
3: बिल्कुल
4: सम्मानित किया गया था ऑफिसर्स को। तो मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि कितना मतलब जो है फियर्स बैटल रहा था।
3: सर इस सिलसिले को हम तो जारी रखना चाहते हैं लेकिन समय अभाव है और आज के एपिसोड का यहीं पर समय जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो यदि बसंतर की इस लड़ाई को हम अगले एपिसोड में यदि आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए और हम भी सुनने के लिए बेताब रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। सर
4: ज़रूर पूर्वा जी, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे
3: जी सर
4: अगले एपिसोड में।
3: जी बिल्कुल सर, और हम भी इंतज़ार करेंगे इस बैटल को सुनने के लिए क्योंकि ये एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही बहादुरी से भरी हुई एक जंग है।
4: जी बिल्कुल सही कहा
3: जी सर। तो श्रोताओं, सन 1971 में भारत ने केवल युद्ध ही नहीं जीता बल्कि इतिहास को बदल के रख दिया, इतिहास की दिशा बदल दी और इस युद्ध ने विश्व का भूगोल ही नहीं बदला बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी बढ़ा दिया। और ये जंग जिसमें हम शकरगढ़ बल्ज तक पहुंच गए हैं इसे हम यूं ही जारी रखेंगे आगे भी और इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले हफ्ते तक। थैंक यू सर, आज आप हमारे बीच आए और इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी हमारे साथ शेयर की।
4: थैंक यू पूर्वा जी एंड थैंक यू श्रोताओं। जय हिंद।
3: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने और ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का और मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति अब इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्ते, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
2: कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक भारत के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे
3: भारतीय वायुसेना आकाश की विजेता।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: ओ दादू, ये क्या था? इतनी तेज आवाज और कितना तेज उड़ रहा था दादू। वो देखो ना, कितना छोटा दिख रहा है इतनी ऊपर, लेकिन आवाज अब भी कितनी तेज आ रही है।
2: वो कोई आम जहाज नहीं था, वो भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट था।
1: वायुसेना? दादू इसके बारे में बताइए ना, ये सेना युद्ध के समय किस तरह से काम करती है, क्या क्या काम करती है और कब कब काम करती है?
2: अरे अरे अरे रुचि बेटा, थोड़ा आराम से, एक साथ इतने सारे सवाल पूछोगी मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा।
1: सॉरी दादू। अच्छा ठीक है, अब मैं एक एक करके आपसे सवाल करूंगी।
2: ये हुई ना बात, चलो अब बाकी की एक्सरसाइज कल करेंगे। तो आज बात करते हैं वायुसेना पर। पहले मैं बेटा बैठ जाऊं कहीं?
1: हाँ दादू बिल्कुल।
2: हाँ तुम भी बैठो बिटिया।
1: हाँ दादू मैं बैठ गई।
2: हाँ अब पूछो, तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल हैं?
1: सवाल ये हैं दादाजी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वायुसेना क्या है।
2: बिटिया भारतीय वायुसेना सिर्फ विमान उड़ाने वाली फोर्स नहीं है।
1: अच्छा?
2: ये देश की हवाई सुरक्षा की ढाल है। ये आसमान में तैनात वो ताकत है जो हर पल हर दिशा से आने वाले खतरे पर नजर रखती है। तुमने तीन सेनाओं के बारे में तो सुना है ना, जिसमें से दो के विषय में हम पहले बात भी कर चुके हैं।
1: थल सेना, नौसेना।
2: वेरी गुड। थल सेना जमीन की रक्षा के लिए, नौसेना समुद्र की रक्षा के लिए, और वायुसेना
1: आकाश की रक्षा के लिए। मतलब अगर कोई दुश्मन आसमान से हमारे ऊपर हमला करे तो उसे वायुसेना ही रोकती होगी।
2: बिल्कुल सही बेटा। और वायुसेना सिर्फ दुश्मन को रोकती ही नहीं, जरूरत पड़ने पर जवाब भी देती है।
1: दादू भारतीय वायुसेना का कोई आदर्श वाक्य भी है क्या?
2: हाँ बिटिया, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम्, जिसका मतलब होता है महिमा के साथ आकाश को छूना।
1: वाह दादू ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका अर्थ और भी गहरा होगा, सही कहा ना मैंने?
2: हाँ हाँ बिटिया, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक प्रेरणा है। तुम जानती हो इस वाक्य को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, उस समय अर्जुन देखते हैं एक ऐसा रूप जो तेजस्वी है, जो अनगिनत रंगों से भरा हुआ है, जो आकाश तक फैल रहा है। और उस अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन के मन में आश्चर्य भी होता है और एक गहरा भय भी।
1: मतलब वो दृश्य बहुत शक्तिशाली रहा होगा दादाजी।
2: हाँ बेटा, उसी भावना को ये श्लोक बताता है। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेक वर्णम् व्यात्ताननम् दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं नाविन्दामि शमं च विष्णु।
1: इसका भाव क्या है दादाजी?
2: इसका भाव है बेटा, हे प्रभु आपका रूप इतना विशाल, इतना तेजस्वी है कि वो आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। आपकी चमकती आंखें और विराट स्वरूप देखकर मन भय और आश्चर्य से भर जाता है और आत्मनियंत्रण भी डगमगा सा जाता है।
1: लेकिन दादाजी, इस श्लोक का वायुसेना के आदर्श वाक्य से क्या संबंध है भला?
2: बिटिया, जैसे भगवान का वो रूप असीम शक्ति और तेज का प्रतीक था, वैसे ही भारतीय वायुसेना भी अपनी ताकत, गति और तकनीक से दुश्मन को अभिभूत कर देती है। वायुसेना का उद्देश्य है आकाश में इतनी ताकत से उड़ना और पहरा देना कि कोई भी दुश्मन भारत की ओर देखने से पहले कई बार सोचे।
1: दादाजी मैं समझ रही हूँ, मतलब नभः स्पृशं दीप्तम् सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि वायुसेना की आत्मा है।
2: बिल्कुल बिटिया, ये उस ऊंचाई की पहचान है जहां सिर्फ ताकत नहीं, हम भारतीयों का गौरव भी दिखाई देता है।
1: दादू, अब मैं जब भी आसमान में देखूंगी ना, मुझे वही दीप्त शक्ति याद आएगी।
2: और याद रखना बिटिया, जो आकाश को छूने का सपना देखते हैं, वही इतिहास बनाते हैं।
1: दादू, पहले के जमाने में तो लोग तलवार और बंदूक से लड़ा करते थे, तो फिर ये वायु सेना कब और कैसे बनाई गई?
2: देखो बेटा, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसी तरह समय के साथ युद्ध का तरीका भी बदल गया। पहले युद्ध जमीन पर ही हुआ करते थे, फिर तोपें और जहाज आए, और फिर युद्ध आसमान तक पहुंच गया। जब दुश्मन आसमान से हमला करने लगा तो जरूरत पड़ी एक ऐसी ताकत की जो आसमान में जाकर दुश्मन का मुकाबला कर सके।
1: अब समझी मैं। दादू, आपने बताया था कि वायुसेना बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर से वही सवाल कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये भी तो बताइए।
2: बिटिया, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी।
1: मतलब आजादी से पहले ही?
2: हाँ बिटिया, और इसकी पहली उड़ान हुई थी 1 अप्रैल 1933 को। उस समय वायुसेना बहुत छोटी थी, सिर्फ 6 अधिकारी और 19 वायु सैनिक थे।
1: मतलब बहुत छोटी सी शुरुआत थी दादाजी।
2: हाँ बेटा, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। उस समय जो विमान थे वे थे वेस्टलैंड वापिती, और इनसे बनाया गया पहला स्क्वाड्रन।
1: दादाजी, ये स्क्वाड्रन क्या होता है?
2: बेटा, स्क्वाड्रन मतलब विमानों और सैनिकों की एक टीम जो मिलकर मिशन पूरा करती है। कुछ ही सालों में 1936 से 1938 के बीच वायुसेना ने उत्तर पश्चिम के इलाकों में भारतीय सेना की मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने मीरान शाह उत्तरी वजीरिस्तान से उड़ान भरकर उस समय के अभियानों में सहयोग दिया।
1: मतलब ये शुरुआत से ही सारी सेना एक साथ काम कर रही थी।
2: हाँ बिल्कुल, फिर धीरे धीरे वायुसेना की ताकत बढ़ती गई और ए फ्लाइट से सन 1936 में बी फ्लाइट बनी, और फिर सन 1938 में सी फ्लाइट, और इस तरह नंबर 1 स्क्वाड्रन पूरी ताकत में आ गया।
1: यानी धीरे धीरे एक पूरी टीम तैयार की गई थी।
2: हाँ बेटा, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय भारतीय वायुसेना सिर्फ एक ही सक्रिय यूनिट थी, लेकिन तब तक 16 अधिकारी और लगभग 600 से ज्यादा जवान इसमें शामिल हो चुके थे।
1: दादू, ये सेना हमारी रक्षा के लिए समय के साथ बनी, और इतनी छोटी शुरुआत से आज इतनी बड़ी ताकत बन गई दादाजी।
2: बिल्कुल बेटा, बहुत बड़ी ताकत बन गई है।
1: दादू, इतनी बड़ी वायु सेना को कौन संभालता है? इतने सारे विमान, अधिकारी, ये सारा सिस्टम मला कैसे चलता है?
2: बताता हूँ बेटा, अच्छा सवाल है। हर बड़ी ताकत को चलाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व जरूरी होता है। वायुसेना का सिस्टम भी ऐसा ही काम करता है। सबसे ऊपर होते हैं एयर चीफ मार्शल, यही पूरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख होते हैं।
1: मतलब ये पूरे सिस्टम को चलाते हैं और पूरी वायुसेना की कमान इनके ही हाथ में होती है।
2: बिल्कुल सही बेटा, लेकिन बिटिया, इतनी बड़ी सेना को एक इंसान अकेले नहीं चला सकता, इसलिए उनके नीचे अलग अलग अधिकारी होते हैं जो अलग अलग काम संभालते हैं।
1: वो कैसे दादाजी?
2: ये विभाग तय करता है बेटा कि कहां, कब और कैसे कार्यवाही करनी है। हर विभाग प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करता है। ट्रेनिंग विभाग में जवानों को, पायलट्स को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। तकनीकी विभाग विमान, मशीन और उपकरण सही हालत में रहें, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह लॉजिस्टिक्स, ईंधन, हथियार, खाना, जरूरी सामान सब समय पर पहुंचे, ये काम इस विभाग का होता है।
1: मतलब हर काम के लिए अलग अलग टीम होती है दादाजी।
2: बिल्कुल, यही वजह है कि वायुसेना इतनी सटीक और मजबूत तरीके से काम करती है। और सबसे जरूरी बात, पूरी वायुसेना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है बेटा।
1: मतलब ये सिर्फ सेना नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है दादाजी।
2: हाँ बिटिया, ये सिर्फ एक संगठन नहीं, ये देश की सुरक्षा की रीढ़ है। रीढ़,
1: दादू, जब कोई खतरा आता है तो वायुसेना कैसे काम करती है?
2: देखो बेटा, मान लो रडार पर कोई संदिग्ध विमान दिखाई देता है, तुरंत कंट्रोल रूम अलर्ट होता है, पास के एयरबेस को सूचना दी जाती है, पायलट्स को आदेश मिलता है, कुछ ही मिनटों में फाइटर जेट उड़ान भरता है और फिर हवा में जाकर उस खतरे को पहचानता है और जरूरत हो तो कार्यवाही करता है।
1: वाह दादू, ये तो फिल्मों के जैसा लगता है।
2: अरे बेटा, फिल्में तो हमारे देश के इन असली हीरोज से प्रेरणा लेकर बनती हैं।
1: दादू, आपने बताया था कि वायुसेना आसमान से देश की रक्षा करती है, वो कैसे भला? और इनके पास कौन कौन से जहाज होते हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं, जरा ये भी तो बताइए।
2: बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। देखो, वायुसेना की असली ताकत है उसके आधुनिक विमान और घातक हथियार। सबसे पहले लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट्स के बारे में सुनो। ये लड़ाकू विमान वो जेट होते हैं जो सीधे दुश्मन से लड़ते हैं, जैसे भारतीय बेड़े की सुखोई 30 MKI। ये बहुत ताकतवर और लंबी दूर तक उड़ सकता है।
1: जी दादू, टीवी पर अक्सर इसके बारे में मैं सुनती रहती हूँ।
2: फिर है बेटा राफेल, जो बेहद ही आधुनिक तकनीक वाला बहुत सटीक हमला करता है। इसके बाद आता है सुखोई, जो भारत का स्वदेशी जहाज है और सबसे तेज और हल्के जेट में आता है।
1: मतलब ये आसमान में ही दुश्मन से लड़ लेते हैं दादाजी?
2: बिल्कुल, यही हमारे आसमान के पैनी नजर वाले योद्धा हैं बेटा।
1: दादू, भारतीय वायुसेना के बेड़े में और कौन कौन से जहाज हैं?
2: ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिनके बारे में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ बेटा। इसके अलावा दो बेहद ही खास विमान भारतीय वायुसेना के पास हैं, C-17 ग्लोबल मास्टर तृतीय, जो भारी सामान ले जाने के लिए है, और C-130 जे सुपर हरक्यूलस, जो कि बेहद ही खास मिशन के लिए उपयोग किया जाता है।
1: ओ, मतलब ये सेना की मदद करते हैं।
2: बिल्कुल बेटा, इसके अलावा HAL ध्रुव रेस्क्यू और सपोर्ट के लिए AH-64 अपाचे दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निगरानी और रडार, इन विमानों का जखीरा भी हमारे पास है।
1: अच्छा दादाजी, एक सवाल और आता है दिमाग में।
2: पूछो बेटा।
1: क्या कुछ ऐसे विमान भी होते हैं जो सिर्फ नजर रखने का काम करते हो?
2: हाँ बिल्कुल बेटा, DRDO नेत्र और इवाक्स ऐसे ही विमान हैं। ये आसमान में आंख की तरह होते हैं, दुश्मन को पहले ही पहचान लेते हैं।
1: और हथियार?
2: वायुसेना के पास कई तरह के आधुनिक हथियार होते हैं बेटा, जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र, हवा से हवा में मार के लिए बहुत तेज और सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल है। वहीं लेजर गाइडेड बम, स्मार्ट बम, जो खुद लक्ष्य पहचान लेते हैं और सही जगह जाकर गिरते हैं।
1: साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग दादू।
2: यस इट इज बेटा। आज की वायुसेना सिर्फ ताकत नहीं, तकनीक भी है। GPS सिस्टम, नाइट विजन, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में गिनी जाती है बेटा। एक बात और बेटा, वायुसेना के पास कई तरह के विमान होते हैं।
1: जैसे?
2: जैसे कि फाइटर जेट्स, जो दुश्मन से लड़ने के लिए बहुत तेज और फुर्तीले होते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो सैनिक और सामान ले जाने के लिए उपयोगी होते हैं। हेलीकॉप्टर, जिनका उपयोग रेस्क्यू, मेडिकल सहायता, पहाड़ी इलाकों में सपोर्ट के लिए किया जाता है। और निगरानी विमान, जो दुश्मन पर नजर रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: दादाजी, क्या वायुसेना के पास आज के जमाने की ड्रोन और आधुनिक तकनीक भी जुड़ चुकी है?
2: हाँ बिटिया, क्योंकि अब वायुसेना सिर्फ लड़ती नहीं, दुश्मन को देखती है और जरूरतमंद को बचाती है और मदद करती है।
1: दादू, जब वो पायलट इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं या मौसम खराब होने पर कभी कभी तो किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में उन्हें ऊपर से जंप भी करनी होती होगी, तो क्या उन्हें डर नहीं लगता?
2: डर तो बेटा हर इंसान को लगता है, लेकिन सैनिक वो होता है जो डर के बावजूद अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: जो पायलट इतने तेज जेट उड़ाते हैं, उनके पायलट बनने के प्रशिक्षण की शुरुआत कैसे होती है, थोड़ा ये भी तो बताइए।
2: बताता हूँ बेटा, कोई भी पायलट बन सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए चाहिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और मजबूत इरादा।
1: ये तो मैं जानती हूँ दादाजी। आप ये बताइए, वायुसेना में जाने के कौन कौन से रास्ते हैं?
2: बेटा, अगर तुम 12वीं के बाद जाना चाहो ना, तो एक एग्जाम होता है NDA। उसमें पहले पेपर देना होता है, फिर इंटरव्यू और फिर मेडिकल।
1: और अगर कोई कॉलेज के बाद जाना चाहे तो?
2: तब आता है CDS, यानी ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम देना होता है, फिर इंटरव्यू और बाकी सारी प्रक्रिया।
1: और दादू, वायुसेना का अपना भी कोई एग्जाम होता है क्या?
2: हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं FCAT, यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये खास वायुसेना के लिए होता है बेटा, जिससे तुम पायलट भी बन सकती हो और ग्राउंड ड्यूटी में भी जा सकती हो। लेकिन बिटिया, इन सब में एक चीज सबसे खास होती है, SSB इंटरव्यू।
1: वो इतना खास क्यों है दादाजी?
2: क्योंकि वहाँ सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देखा जाता, वहाँ देखा जाता है तुम्हारा आत्मविश्वास, सोचने का तरीका और मुश्किल समय में तुम कैसे फैसले लेती हो।
1: मतलब वहाँ होती है इंसान की असली पहचान।
2: बिल्कुल, वहीं तय होता है कि तुम वर्दी के लायक हो या नहीं।
1: अच्छा दादू, किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट होने के बाद फिर क्या होता है?
2: असली सफर तो तभी शुरू होता है मेरे बच्चे, जब एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है और यहीं से तैयार होते हैं भारत के भविष्य के पायलट्स।
1: अच्छा दादाजी, ट्रेनिंग के कितने फेज होते हैं और क्या ये आसान होती है?
2: नहीं बिटिया, बिल्कुल आसान नहीं होती। ट्रेनिंग धीरे धीरे एक एक कदम करके होती है। सबसे पहले उन्हें किताबों से समझाया जाता है कि विमान कैसे उड़ता है, हवा में संतुलन कैसे बनाता है, रास्ता कैसे तय करते हैं। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान थ्योरी, एरोडायनामिक्स, नेविगेशन पढ़ाया जाता है।
1: मतलब पहले दिमाग की ट्रेनिंग होती है?
2: हाँ, और फिर आता है सबसे मुश्किल पार्ट, जिसमें पायलट ट्रेनिंग की शुरुआत छोटे छोटे विमान से होती है, धीरे धीरे बड़े और तेज जेट तक पहुंचने के लिए।
1: हो, मतलब धीरे धीरे एक्सपर्ट बनाते हैं। दादाजी, ये तो बड़ा मजेदार है। फिर अगले फेज में क्या होता है?
2: इसके बाद सिखाया जाता है कि अगर युद्ध हो जाए तो क्या करना है, यानी हथियार कैसे इस्तेमाल करने हैं, दुश्मन का सामना कैसे करना है।
1: मतलब असली जंग की तैयारी यहीं से शुरू होती है।
2: हाँ बेटा, यहाँ अपने जीवन को बचाने की तैयारी कराई जाती है। मानो कि अगर पायलट कहीं फंस जाए तो खुद को कैसे बचाए, समुद्र में, जंगल में, पहाड़ों में, हर जगह उन्हें जीना सिखाया जाता है बेटा।
1: मतलब उन्हें हर लिहाज से कठोर बनाया जाता है।
2: बिल्कुल बेटा, इसी ट्रेनिंग से एक आम इंसान एक मजबूत सैनिक बनता है, क्योंकि एक पायलट को सिर्फ उड़ना नहीं है बल्कि हर स्थिति में निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए।
1: अच्छा, अब तो आप जान गए होंगे कि मेरा अगला सवाल क्या होगा।
2: पूछो, मैं कैसे जानूंगा जब तक तुम बताओगी नहीं बेटा।
1: दादाजी, मेरा वही सवाल कि क्या लड़कियां भी फाइटर पायलट बन सकती हैं?
2: अच्छा, तो बेटा मेरा भी वही पुराना जवाब, आज की बेटियां तो सारा का सारा आसमान जीत रही हैं बेटा। महिलाएं अब फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट, इंजीनियर, यहाँ तक कि ग्राउंड ऑफिसर भी बन रही हैं। वो कहते हैं ना कि आज की नारी सब पर भारी, वो सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि देश की रक्षा भी कर रही है।
1: दादाजी, मतलब मैं भी एयरफोर्स में जाकर एक फाइटर जेट उड़ा सकती हूँ ना, और एक वायु सैनिक भी बन सकती हूँ?
2: बिल्कुल बन सकती हो बेटा, जरूर, और बनोगी भी।
1: दादू, वायुसेना में कौन कौन सी पोस्ट होती है?
2: बिटिया, वायुसेना में इन्हें पोस्ट नहीं, रैंक कहा जाता है, रैंक।
1: और इसकी शुरुआत कैसे होती है?
2: फ्लाइंग ऑफिसर, यहीं से एक ट्रेनिंग का करियर शुरू होता है बेटा। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन, फिर एयर मार्शल, और सबसे ऊपर होते हैं एयर चीफ मार्शल।
1: मतलब जैसे जैसे रैंक बढ़ती है काम भी बदलता रहता है।
2: बिल्कुल बेटा, जितना ऊपर रैंक जाता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है।
1: ओह, मतलब हर रैंक के साथ भरोसा और जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है दादाजी।
2: बिल्कुल बिटिया, यही अनुशासन और जिम्मेदारी वायुसेना को मजबूत बनाती है।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: क्या वायुसेना सिर्फ युद्ध में ही काम आती है?
2: नहीं बिटिया, असली महानता सिर्फ युद्ध में नहीं सेवा में भी होती है। जब कहीं बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, लोग किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, तब सबसे पहले वायुसेना उनकी मदद को पहुंचती है।
1: जैसे हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाना, खाना और दवाइयाँ पहुँचाना, ये भी वायुसेना करती है दादाजी।
2: हाँ बेटा, ये सिर्फ लड़ते नहीं लोगों की जान भी बचाते हैं।
1: आगे आने वाले भविष्य में वायुसेना कैसी होगी दादाजी?
2: आज की तुलना में कई गुना और भी शक्तिशाली होगी बेटा। और भी शक्तिशाली से मेरे कहने का मतलब है कि ड्रोन युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब भविष्य की वायुसेना का हिस्सा होंगे और हमारा भारत ज्यादा सुरक्षित होगा।
1: दादाजी, क्या वायुसेना में भी वीरता पुरस्कार मिलते हैं?
2: हाँ बिटिया, बिल्कुल मिलते हैं। अब तक देश के लिए बहुत से वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कईयों ने वीरता से देश के लिए युद्ध लड़े हैं, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र, वीर चक्र मिलते हैं। और ये बस मेडल नहीं है, बल्कि देश के लिए उन वीरों के बलिदान की असली पहचान है।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: आपने युद्धों की बात की, क्या वायुसेना ने कभी कोई बड़ा ऑपरेशन भी किया है?
2: बिल्कुल किया है बिटिया। एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, ऑपरेशन सफेद सागर।
1: ये कब हुआ था दादाजी?
2: देखो बेटा, ये ऑपरेशन हुआ था 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, जब दुश्मन ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था।
1: इतनी ऊंचाई पर लड़ाई? वहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल होता होगा दादाजी।
2: हाँ बेटा, यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी। ऑपरेशन में वायुसेना की भूमिका बहुत अहम थी। भारतीय वायुसेना को जिम्मेदारी दी गई कि वो दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाए और भारतीय सेना की मदद करे। और इसके अलावा वायुसेना का एक और काम था, पहाड़ों में छिपे दुश्मन को बाहर निकालना।
1: लेकिन दादू, इतनी ऊंचाई पर हमला करना आसान तो नहीं रहा होगा?
2: बिल्कुल नहीं बिटिया, वहाँ हवा बहुत पतली होती है, तापमान बहुत कम होता है और लक्ष्य साफ दिखाई नहीं देता है बेटा। फिर भी हमारे वायुसेना के जाबाजों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सटीक हमले किए।
1: अच्छा दादाजी, इस ऑपरेशन में कौन कौन से विमान इस्तेमाल किए गए थे?
2: इस ऑपरेशन में कई विमानों का इस्तेमाल हुआ बेटा, जैसे MiG-21, MiG-27, Mirage-2000। तुम्हें पता है, इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका Mirage-2000 की रही, जिसने सटीक बमबारी करके दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: इस ऑपरेशन की और भी खास बातें होंगी ना, वो भी तो बताइए।
2: खास बात तो यही है कि ये पहली बार था जब इतनी ऊंचाई पर एयर पावर का इस्तेमाल हुआ बेटा, और हमारी वायु वीरों को हर सेकंड खतरे का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस युद्ध में अद्भुत साहस और कौशल दिखाया।
1: मतलब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ाई लड़ी दादाजी। ऑपरेशन सिंदूर भी तो इसी तरह के साहस का प्रतीक है ना?
2: हाँ बिटिया, यही असली वीरता है। ऑपरेशन सफेद सागर ने कारगिल युद्ध में भारत की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर हमारे गौरव की रक्षा के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। ये ऑपरेशन बताता है कि हम कोई भी सीमा पार करके दुश्मन को उसके घर में जाकर सबक सिखा सकते हैं बेटा।
1: दादू, अब समझ में आया कि वायुसेना सिर्फ आसमान में प्लेन्स नहीं उड़ाती, बल्कि जीत और हौसलों के पंखों से देश की रक्षा भी करती है।
2: बिल्कुल मेरी प्यारी बच्ची, जब देश को जरूरत होती है तो ये आकाश के योद्धा इतिहास रच देते हैं।
1: अच्छा दादाजी, ये पासिंग आउट परेड क्या होती है? मैंने कई बार पहले इसके बारे में सुना हुआ है।
2: पासिंग आउट परेड वो खास दिन होता है जब एक कैडेट की कठिन ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, और उसी दिन वो आधिकारिक तौर पर देश की सेना का हिस्सा भी बन जाता है।
1: मतलब ये उनका फाइनल एग्जाम जैसा होता है?
2: हाँ, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम नहीं होता, ये उनके संघर्ष, मेहनत और सपनों का जश्न होता है बेटा। इस दिन सभी कैडेट्स एकदम अनुशासन में एक जैसी चाल में परेड करते हैं।
1: अच्छा दादाजी, उनके परिवार वाले भी इसमें शामिल होते हैं क्या?
2: हाँ बेटा, माता पिता, परिवार सभी आते हैं। अपने बच्चों को वर्दी में देखकर उनकी आंखों में गर्व के आंसू होते हैं बेटा।
1: दादू, ये पल बहुत भावुक पल होता होगा ना?
2: हाँ बेटा, सबसे खास पल होता है, जब कैडेट को उसके विंग्स या रैंक मिलते हैं, उसी पल वो एक प्रशिक्षु नहीं बल्कि देश का रक्षक बन जाता है।
1: मतलब उस दिन उनका सपना सच हो जाता है और सारी मेहनत सफल हो जाती होगी दादाजी।
2: हाँ बेटा, पासिंग आउट परेड सिर्फ एक समारोह नहीं, ये उस वादे का दिन है जब एक जवान कहता है अब मेरा जीवन देश के नाम।
1: दादू, अब समझ में आया, ये सिर्फ परेड नहीं एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है।
2: और याद रखना बिटिया, वर्दी पहनना आसान नहीं है, इस सम्मान को तो ता उम्र निभाना होता है और वही असली वीरता है।
1: दादू, आपने बताया था कि वायुसेना हर समय आसमान पर नजर रखती है, लेकिन अगर अचानक कोई खतरा आ जाए तो क्या होता है?
2: जब भी आसमान में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो सबसे पहले उसे रडार सिस्टम पकड़ता है। अब तुम पूछोगी कि रडार सिस्टम क्या होता है दादू?
1: हाँ दादू, रडार सिस्टम क्या होता है?
2: रडार सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो बहुत दूर से ही विमान की दिशा, गति और ऊंचाई बता देता है।
1: मतलब बिना देखे ही सब पता चल जाता है?
2: हाँ, उसी समय कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी स्थिति का आकलन करते हैं। अगर खतरा लगे तो तुरंत आदेश दिया जाता है स्क्रैम्बल।
1: स्क्रैम्बल, ये क्या होता है दादू?

0: अधिकारी पायलट को हर पल निर्देश देते हैं, जैसे किस दिशा में जाना है और कितनी ऊंचाई रखनी है और लक्ष्य कहां पर है।
1: मतलब पायलट अकेले फैसला नहीं लेते?
0: नहीं बिटिया, ये एक टीम वर्क होता है। रडार, सैटेलाइट, कंट्रोल रूम और पायलट सब मिलकर मिशन पूरा करते हैं।
1: और जब दुश्मन सामने आ जाता है तब क्या होता होगा?
0: तब पायलट पहले लक्ष्य को लॉक करता है, यानी अपने सिस्टम से दुश्मन की सटीक पहचान करता है। उसके बाद आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाती है।
1: दादू, ये तो बहुत खतरनाक होता होगा ना?
0: हाँ बिटिया, ये बहुत जोखिम भरा होता है, लेकिन पायलट को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है तेज निर्णय लेना, दबाव में शांत रहना और सटीक हमला करना।
1: एक शिकारी बाज की तरह सोच समझ कर हर कदम उठाते होंगे।
0: बिल्कुल, और जब मिशन पूरा हो जाता है तो पायलट सुरक्षित वापस लौटते हैं। इसे कहते हैं मिशन सक्सेस।
1: दादू, अब समझ में आया वायुसेना के इन हीरोज को वायु योद्धा क्यों कहते हैं?
0: बिल्कुल बिटिया, वायुसेना की असली ताकत सिर्फ उसके विमान नहीं बल्कि उसकी सोच, तकनीक और टीम वर्क है।
1: सही दादू। जब तक ये आसमान के पहरेदार आसमान में उड़ान भर रहे हैं, तब तक हम सब बेफिक्र रह सकते हैं।
0: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो बेटा, मैं थक गया हूँ, घर चले।
1: चलिए दादू, घर चलते हैं।
0: चलो।
2: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे आकाश की विजेता भारतीय वायुसेना पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
0: और मैं दीपक नेमा।
2: इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद। इसके अंतर्गत आज जानिए खामती विद्रोह के बारे में।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार, मैं इतिहास हूं। मैं एक आम आदमी की तरह स्वतंत्रता स्वाधीनता में विश्वास रखता हूं और आदमी द्वारा आदमी का खून बहाए जाने का पक्ष नहीं लेता, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के लिए खुद का बलिदान कर देने वाली जाति और आदमी का कदरदान हूं। तारीख गवाह है कि ऐसे बलिदानियों का नाम मैंने आम आदमी की तरह मिटने नहीं दिया, उन्हें अमर कर दिया है।
2: नमस्कार, मैं तारीख हूँ और इतिहास के इस बयान की गवाह हूँ। आज मैं इतिहासविद डॉक्टर लाहिड़ी द्वारा संकलित खामती विद्रोह की गाथा आपको सुनाना चाहती हूँ।
1: हाँ, ये

0: 1857 की मुहिम बनाने वाली गाथा है
1: और अंग्रेजों की कूटनीति का खुलासा भी।
0: अपनी कूटनीति के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बनकर आई और शासक बन बैठी।
1: पहले ये तो बताओ कि अंग्रेजों की कूटनीति कैसी थी।
0: फूट डालो और राज करो, रजवाड़ों व सरदारों के असंतोष का फायदा उठाओ।

0: अच्छा, पर खामती लोग कौन थे पहले ये तो बताओ।
1: खामती जाति बर्मा के इरावदी घाटी के बोरखा मंती अंचल से आसाम आई थी। अहोम राजा ने इन्हें बसा लिया। बाद में उन्होंने सरहद की चौकी सदिया पर कब्जा कर लिया और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। सदिया खबा गोहाई कहलाने लगे,
0: यानी कि सदिया का शासक।
1: ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम में पैर पसारे तो खामती लोगों से एक संधि की 1826 में। उन्होंने स्वतंत्र राज्य रहने दिया, परंतु सिर्फ 200 सैनिक रखने का अधिकार दिया, उनसे कर भी नहीं वसूला।
0: अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया?
1: उनकी कूटनीति ये थी कि जब असम की अन्य जातियां सर उठाएं, तो खामती सरदारों को साथ लेकर उनका दमन कर सकें।
0: इसीलिए 1820 में जब सिंगफो जाति ने अंग्रेजों पर हमला किया तो खामती ने अंग्रेजों की मित्रता निभाई और उनके दमन करने में भाग लिया।
1: परंतु 1835 के बाद जब सदिया खवा गोहाई के बेटे ने राज्य संभाला तो अंग्रेज उनके विरोधी हो गए।
0: अचानक ही?
1: नहीं, कारण था, सदिया के बेटे बौद्ध धर्मी थे, हिंदू धर्म की जानकारी थी। अंग्रेजों ने कहा कि अब ये हिंदुस्तान का पक्षपाती है।
0: अच्छा, तब कौन था जो अंग्रेजों की शरण में गया?
1: मुत्रुक जाति का सरदार था। उसका खामती गोहाई से जमीन को लेकर झगड़ा हुआ और वो मुकदमा अंग्रेज शासन के सामने ले आया, परंतु गोहाई ने मुकदमा न लड़कर युद्ध करके जमीन हासिल कर ली।
0: ब्रिटिश शासक तो तिलमिला गए होंगे।
1: कंपनी ने जिस राजनीतिक प्रतिनिधि कैप्टन लाइट को असम में नियुक्त किया था, उन्हें ये एक बड़ा अवसर मिल गया। उन्होंने गहोइयों से सारे अधिकार छीन लिए, उन पर भी कर थोप दिए गए।
0: खवा गोहाई का बेटा अकेला न था, सभी सरदारों तौबा गोहाई, रूनू गोहाई, कैप्टन गोहाई ने एकजुट होकर असंतोष व्यक्त किया।
1: खामती लोगों के बारे में वाइट अच्छे से जानता था कि ये जाति जोश, बुद्धि और नैतिक चरित्र में असम की सर्वश्रेष्ठ जाति है।

0: ये गहोई सरदार ज्यादा गड़बड़ी न करें, इस डर से कंपनी सरदार के एजेंट जेनकिंस ने खवा गोहाई को नजरबंद कर दिया। खवा सरदार के जरिए सभी सरदारों में फूट डालने की नीयत से उसे जासूस बनाकर राज्य लौटाने की पेशकश की।
1: यानी कि खवा गोहाई को सामने दो रास्ते दिखा दिए गए। पहला, जासूस बन के अन्य सरदारों की गतिविधियों की जानकारी दे ताकि अंग्रेज आसानी से उनका दमन कर सके, बदले में राज्य ले। दूसरा, राज्य भी खोए और अंग्रेजों की मित्रता भी।
0: हाँ, यही एक जाति है जिसका सरदार गद्दार नहीं बना, उसने साफ मना कर दिया, आजीवन कैद मंजूर कर ली। परंतु बेकार का बोझ मानकर जेनकिंस ने उसे रिहा कर दिया और बिना शर्त मित्रता की शर्त रख दी।
1: खवा गोहाई जान गए थे कि अंग्रेजों से जीतना है तो उनकी भाषा और विचार जानना जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देना शुरू किया।
0: 1835 में दूसरी ओर सिंगफो विद्रोह का दमन करने के लिए उनका साथ दिया।
1: मतलब सरदार गहोई ने विद्रोह का विचार ही छोड़ दिया था?
0: नहीं, अंग्रेजों के प्रति असंतोष का ज्वालामुखी तो दिल में दबा पड़ा था। इसका पता भी अंग्रेजों को सिंगफो विद्रोह के दौरान ही चला। उन्होंने सिंगफो सरदार को कह दिया कि अंग्रेजों से समझौता न करके उनका साथ दे।
1: यानी खामती सरदार ऊपर ऊपर से अंग्रेजों के साथ रहे लेकिन भीतर भीतर सिंगफों के सहायक बने रहे।
0: खामती सरदार बमियों और सिंगफो सरदार दाफा गाम के साथ पत्र व्यवहार के जरिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना बना रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसकी भनक मिलते ही असम में सैनिक शक्ति बढ़ा दी।
1: अच्छा, खामती सरदारों ने इनसे युद्ध किया या योजना ही रद्द कर दी?
0: नहीं, उन्होंने अवसर की प्रतीक्षा की और 1839 में खामती लोगों ने अंग्रेजों पर उस समय हमला कर दिया जब अंग्रेज पूरी तरह उन लोगों की तरफ से निश्चिंत हो गए थे, लापरवाह हो गए थे।
1: पर इतने लापरवाह कैसे हो गए वे?
0: इसलिए कि खामती विद्रोह के लिए एकजुट होने वाले सरदारों में कोई गद्दार नहीं था। अंग्रेजों को खबर तो अपनों में से ही कोई देता था, यहाँ वे ऐसा कोई खामती न पा सके।
1: मानना पड़ेगा कि कितने दृढ़ चरित्र के होते हैं खामती। फिर क्या हुआ?
0: 28 जनवरी 1839 को खामती अपने सरदारों के साथ सदिया पर टूट पड़े। अंग्रेजों की पूरी रेजिमेंट को साफ कर दिया, मेजर व्हाइट को मौत के घाट उतार दिया। बैरक, तोपों, बंदूकों सहित अंग्रेजों की सेना से संबंधित सारा लवाजमा कागजात जलाकर खाक कर दिए गए। इस होली में मेडिकल स्टोर भी जला। फिर कब्जा कर लिया सादिया पर।

0: सारा सादिया नगर खामती विद्रोहियों की मेहरबानी पर था, लेकिन उन्होंने नगर में ना लूटपाट की और ना ही किसी नगरवासी को कष्ट दिया, बल्कि अंग्रेजी शासन का हर चिन्ह मिटाकर वो तेजी से वहां से हट गए।
1: कंपनी सरदार ने नई सेना भेजकर फिर सदिया पर अधिकार किया और खामती सरदारों की खोज में जुट गई।
0: लेकिन उनके हाथ कोई नहीं आया। सभी खामती सपरिवार मिसमी पहाड़ियों में चले गए थे। सेना ने सुने गांव के गांव चला दिए।
1: कैप्टन वेच खामती सरदारों से बदला लेने पर तुला हुआ था, लेकिन कोई हाथ नहीं आया।
0: सरदारों को पकड़वाने के लिए बड़े बड़े पुरस्कारों की घोषणा की गई, पर किसी ने लालच नहीं दिखाया।
1: कोई भी अपनी जाति अपने राज्य के साथ विश्वासघात करने के लिए बिल्कुल आगे नहीं आया।

0: करता है।
1: लेकिन अंत में विद्रोही सरदारों में फूट पड़ गई। एक सरदार ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अंग्रेज अभी भी खामती का सर्वनाश नहीं कर पाए।
2: पूरे 5 वर्षों तक अंग्रेजों और खामती विद्रोहियों के बीच संघर्ष चला।
1: कितनी ही बार अंग्रेजों ने अपनी सेना मिस्की पहाड़ियों पर चढ़ाई करने भेजी। विद्रोहियों का एक दस्ता पकड़ा जाता तो दूसरा जत्था तैयार रहता लड़ाई जारी रखने के लिए। खामती विद्रोहियों के अंतिम दस्ते ने 1843 में आत्मसमर्पण कर दिया।
2: अंग्रेजों ने उन सबको फांसी नहीं दी?
1: उस समय घोर दमन की जरूरत नहीं थी, फिर भी अपनी कूटनीतिक चाल के तहत अंग्रेजों ने उन सरदारों व उनके जत्थों को एक साथ नहीं होने दिया। उन्हें इस तरह बिखेर कर बसाया कि वे फिर कभी राजनीतिक शक्ति न बन सके।
2: और माला टूट गई, मोती बिखर गए, खामती विद्रोह इतिहास में अमर हो गया। आज मुझे गुरूर है कि मैं उनकी साक्षी हूँ।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: रेडियो आजाद हिंद, आजाद हिंद।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: समाचार।
1: राध हिंद पर लीजिए, अब प्रस्तुत है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य कुंजन।

0: पिछले काव्यांश में आपने सुना था राहुल जननी की मनहा स्थिति। लीजिए अब सुनिए इसके आगे।
1: अगले काव्यांश में यशोधरा राहुल को जगाने का प्रयास कर रही है कि प्रभात हो रहा है, तुम अब जागो।
0: घुसा तिमिर अलकों में भाग, जाग दुखनी के सुख जाग, जागा नूतन गंध पवन में, उठ तू अपने राजभवन में, जाग उठे खगवन उपवन में, और खगों में कलख राग, जाग दुखिनी के सुख जाग, तात रात बीती वह काली, उजियाली ले आई लाली, लदी मोतियों से हरियाली, लो लीला शाली निज भाग, जाग दुखिनी के सुख जाग। किरणों ने कर दिया सवेरा, हिमकण दर्पण में मुख हेरा, मेरा मुकुर मंज मुख तेरा, उठ पंकज पर पड़े पराग, जाग दुखिनी के सुख जाग। तेरे वैतालिक गाते हैं, स्वस्थ लिए ब्राह्मण आते हैं, गोप दुग्ध भाजन लाते हैं, ऊपर झलक रहा है झाग, झाग दुखिनी के सुख जाग। मेरे बेटा भैया राजा, उठ मेरी गोदी में आजा, भौरा नाचे बजे हाँ बाजा, सजे शाम है यासित नाग, जाग दुखिनी के सुख जाग। जाग अरे वृषमत भव मेरे, आतू शम्य उपद्रव मेरे, उठ उठ सोए शैशव मेरे, जाग स्वप्न उठ तंद्रा त्याग, जाग दुखनी के सुख जाग।
2: अम्ब स्वप्न देखा है रात, लिए मेष शावक गोदी में खिला रहे हैं तात, उसकी प्रसू चाहती है पद कर करके प्रतिपात, घेरे हैं कितने पशु पक्षी कितना यातायात, ले लो मुझको भी गोदी में सुन मेरी यह बात, हंस बोले असमर्थ हुई क्या तेरी जननी जात, आँख खुल गई सहसा मेरी माँ हो गया प्रभात, सारी प्रकृति सजल है तुझसी भरे अश्रु अवदात।
0: बस मैं ऐसी ही निभ जाऊं राहुल, निज रानीपन देकर तेरी चिर परिचर्या पाऊं, तेरी जननी कहलाऊं तो इस परवश मन को बहलाऊं, उबटन कर नहलाऊं तुझको, खिला पिला कर पट पहनाऊं, रीच खींच कर रूठ मनाकर पीड़ा को क्रीड़ा कर लाऊं, यह मुख देख दुख में भी सुख से देव दया गुण गाऊं, स्नेह दीप उनकी पूजा का तुझ में यहाँ अखंड जगाऊं, डीठ लगे ना डिठोना देकर काजल लेकर तुझे लगाऊं।
2: कैसी डीठ कहाँ काटोना, मान लिया आँखों में अंजन माँ किस लिए डिठोना, यही डीठ लगने के लिच्छन छूटे खाना पानी, कभी कांपना कभी पसीना जैसे तैसे जीना, डीठ लगी तब स्वयं तुझे ही तू है सुदबुद होना, तू ही लगा डिठोना जिसको काट बना बिछोना, कैसी ढीठ कहाँ काटोना। लोहित बिंदु बाल पर तेरे मैं काला क्यों धूमा, लेती है जो वर्ण आप तू क्यों ना वही मैं लूमा, एक इसी अंतर के मारे मैं अति अस्थिर हूँ माँ, मेरा चुंबन तुझे मधुर क्यों तेरा मुझे सलोना, कैसी ढीठ कहाँ काटोना। रह जाते हैं स्वयं चकित से मुझे देख सब कोई, लग सकती है कह माँ मुझको डीठ कहाँ कब कोई, तेरा अंक लाभ कर मुझको जहाँ नहीं अब कोई, लेकर मुझे कलंक बिंदु तू बना न चंद खिलौना, कैसी डीठ कहाँ काटोना।
1: राहुल अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैंने तेरे कहने से काजल लगवा लिया, अब डिठोना क्यों? इस काव्यांश के बाद लीजिए अब ये गद्य में वार्तालाप सुनिए। इस वार्तालाप में पात्र हैं यशोधरा राहुल, यशोधरा की सखियां गंगा और गौतमी, यशोधरा की दासियां चित्रा और विचित्रा।
3: देवी, यदि वह घटना सच्ची हो तो तपस्विनी सीता देवी भी इसी प्रकार पति परित्यक्ता होकर आदि कवि के आश्रम में स्वामी का ध्यान करके कुश लव के लिए जीवन धारण करती होंगी।
0: मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ सखी। सीता देवी ने बहुत सहा, संभवतः मैं उतना ना झेल सकती। कहते हैं स्वामी वंचित होने के साथ साथ उन्हें मिथ्या लोकापवाद भी सहन करना पड़ा था।
3: श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों ने भी बहुत सहन किया।
0: हाय, वे उनके लिए कितनी तरसी। परंतु मुझे विश्वास है मैं अपने प्रभु के दर्शन अवश्य पाऊंगी।
3: तुम्हें देखकर मुझे स्वामी वंचिता शकुंतला का स्मरण आता है। उनके पुत्र भरत की भांति ही कुमार राहुल का अभ्युदय हो, यही सबकी कामना है।
0: अहो, अभागिनी गोपा ही एक दुखिनी नहीं है, उसकी पूज्य पूर्वजाओं ने भी बड़े दुख उठाए हैं। उनके बल से मैं किसी भी प्रकार सह लूंगी गंगा।
1: निर्दयी पुरुषों के पाले पड़कर हम अबला जनों के भाग्य में रोना ही लिखा है।
0: अरे, तू उन्हें निर्दयी कैसे कहती है? वे तो किसी कीट पतंग का दुख भी नहीं देख सकते हैं।
1: तभी ना हम लोगों को इतना सुख दे गए हैं।
0: नहीं, वे अपने दुख का भागी बनाकर हमें अपना सच्चा आत्मीय सिद्ध कर गए हैं और हम सबके सच्चे सुख की खोज में ही गए हैं।
1: देवी, तुम कुछ भी कहो, परंतु मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा सोने का घर छोड़कर उन्होंने वन की धूल ही छानी, जननी जन्मभूमि की भी उन्हें कोई ममता ना हुई।
0: अरे, सदा माँ की गोद में ही बैठे रहने के लिए पुरुषों का जन्म नहीं होता, स्त्रियों को भी पति के घर जाना पड़ता है। सारा विश्व जिनका कुटुंब है, जन्मभूमि का बंधन कैसे बांध सकता है?
1: कुमार राहुल कदाचित विश्व से बाहर थे, मोह ममता तो ऐसों को क्या होगी, किंतु उनके पालन पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा की देख रेख करना भी क्या उनका कर्तव्य ना था?
0: हमको तो उस पर भी बड़ी ममता है, हम क्या इतना भी ना कर सकेंगी। मैं कहती हूँ राहुल के जन्म ने उन्हें अमृत की प्राप्ति के लिए और भी आतुर कर दिया। परंतु अब इन बातों को रहने दें, वो आता होगा, मैं उसके सामने हंसती ही रहना चाहती हूँ। परंतु बहुधा आंसू आ जाते हैं, उसे कष्ट होता है, वह अब समझने लगा है।
3: देवी, कुमार को देखकर ही धीरज धरना चाहिए।
0: ठीक है, विपत्ति में जो रह जाए वही बहुत है। चित्रा, देख भोजन प्रस्तुत है, यही एक और उसके लिए आसन लगा। मैंने अपने हाथों उसके लिए कुछ खीर बनाई है, वह ठंडी हुई या नहीं, और जो कुछ हो आम रखना ना भूलना।
3: जो आज्ञा।
0: गंगा, तू दादाजी के यहाँ जाने योग्य उसकी वेशभूषा ठीक कर।
1: गंगा जो आज्ञा कहकर जिस द्वार से जाती है उसी से राहुल अलिंद में आता है। यशोधरा और गौतमी सामने से उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं, परंतु वो चुपके चुपके उनके पीछे आना चाहता है। सामने गंगा को देखकर उससे चुप रहने का आग्रह करता है। गंगा मुस्कुराकर चुप रहती है। राहुल सहसा पीछे से माँ के गले में हाथ डालकर पीठ पर पड़ जाता है और प्रणाम प्रणाम कहकर अपना मुंह बढ़ाकर माता के मुंह से लगाकर हंसता है।
0: जीता रह बेटा।
2: मेरी जीत हो गई है। दादाजी से मैंने कहा था मेरे प्रणाम करने के पहले ही माँ मुझे आशीर्वाद दे देती है। उन्होंने कहा तू प्रणाम करने में पिछड़ जाता है, इसलिए आज मैंने आकर पहले प्रणाम कर लिया। अब तू हार गई ना?
0: वाह, मैं कैसे हार गई? तूने छिपकर आक्रमण किया है, इसे मैं तेरी जीत नहीं मानती।
2: क्यों नहीं मानती? प्रणाम करना क्या कोई प्रहार करना है जो सामने से ही किया जाए? अच्छे काम तो अज्ञात रूप से भी किए जाते हैं। यह तूने ही कहा था, नहीं कहा था?
0: बेटा, अब मैं हार गई।
2: तू हार ना मानती तो मैंने दूसरा उपाय भी सोच रखा था।
0: सो क्या?
2: मैंने दूर द्योड़ी से तुझे देखे बिना ही माँ प्रणाम करता हुआ आता।
0: बेटा, इसकी आवश्यकता नहीं। मेरा आशीर्वाद तेरे प्रणाम की प्रतीक्षा थोड़े ही करता है।
2: परंतु मेरा विनय तो सदा गुरुजनों का आशीष चाहता है। दादाजी कहते हैं, शिष्टाचार के नियम की रक्षा होनी चाहिए। इसी कारण मेरे प्रणाम करने पर ही मुझे आशीष देना चाहिए, नहीं माँ?
0: अच्छी बात है। अब मैं तेरे प्रणाम करने पर ही मुँह से तुझे आशीष दिया करूँगी।
2: मुँह से?
0: मन से तो दिन रात ही तेरा मंगल मनाती रहती हूँ।
2: परंतु माँ, मुझे तो कितने ही काम रहते हैं, मैं कैसे सर्वदा एक ही चिंतन कर सकूँगा?
0: बेटा, तेरे जितने शुभ संकल्प हैं वे सब मेरी ही पूजा के साधन हैं। तू उपवन में घूम आया?
2: हाँ माँ, मैंने जो आम के पौधे रोपे थे उनमें नई कोपले निकली हैं, बड़ी सुंदर हैं, लाल लाल।
0: जैसे तेरी उंगलियाँ?
2: मेरी उंगलियाँ तो धनुष की प्रत्यंजा भी खींच लेती हैं। वे हाथ लगते ही कुमला कर तेरे होठों से होड़ करने लगेंगी।
3: कुमार तो कविता करने लगी है।
2: गौतमी, इसी को ना कविता कहते हैं। खान पान तो दो ही धन्य, आम और अम्बा का स्तन्य।
3: धन्य धन्य, परंतु ये तो दो ही पद हुए।
2: मेरा छंद क्या चौपाया है, क्यों माँ?
0: ठीक कहा बेटा।
3: भगवान करें तुम कवि होने के साथ साथ कविता के विषय भी हो जाओ।
2: माँ, कविता का विषय कैसे हुआ जाता है?
0: बेटा, कोई विशेषता धारण करके।
2: परंतु माँ, मुझे तो किसी काम में विशेषता नहीं जान पड़ती। सब बातें साधारण यथा नियम होती दिखाई पड़ती हैं। हाँ, एक तेरे रोने को छोड़कर तू हंस पड़ी, यह और भी विचित्र है।
0: अच्छा बेटा, अब भोजन कर। गौतमी, थाली मंगा।
2: माँ, मेरे साथ तू भी खा।
0: बेटा, पीछे खा लूंगी।
2: दादाजी मुझसे कहते थे तू माँ को खिलाए बिना खा लेता है, मुझे बड़ी लज्जा आई।
0: मैं क्या भूखी रहती हूँ? उचित तो यह होगा कि तू दादाजी को साथ लेकर ही यहाँ भोजन किया कर।
2: यह अच्छी रही, दादाजी तेरे लिए कहते हैं और तू दादाजी के लिए कहती है। यह भी कविता का विषय मुझे मिल गया। अच्छा, कल से दो बार तेरे साथ खाया करूँगा और दो बार दादाजी के साथ। आज तो तू मेरे साथ बैठ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा।
0: बेटा, हट नहीं करते। मेरी तृप्ति तभी होती है जब मैं सबको खिलाकर खाऊं।
2: तू तो खा लेगी, फिर क्या कोई खाएगा नहीं?
0: परंतु मेरे लिए ये उचित नहीं है कि जिनका भार मुझ पर है मैं उन्हें छोड़कर पहले खा लूं।
2: तो क्या मुझ पर किसी का भार नहीं?
0: बेटा, तू अभी छोटा है।
2: मैं छोटा हूँ तो क्या, बल तो मुझ में तुझसे अधिक है। चाहे परीक्षा करके देख ले, मैं घोड़े पर जमकर बैठने लगा हूँ, व्यायाम करता हूँ, शस्त्र चलाना सीखता हूँ। मेरा बाण जितनी दूर जाता है मेरे किसी समवयस्क का उतनी दूर नहीं जा सकता। तू तो मेरे साथ दो डग दौड़ भी नहीं सकती।
0: फिर भी बेटा, मैं तुझसे बड़ी हूँ।
2: मैं बड़ा होता तो?
0: तो मेरा भार तुझ पर होता।
2: परंतु मैं तो तुझसे छोटा रहूँगा माँ। अच्छा, पिताजी तो बड़े हैं, वे क्यों हमारी सुध नहीं लेते?
0: लेंगे बेटा, लेंगे। तब तक तेरा भार मुझे दे गए हैं।
2: और तेरा भार किसे दे गए हैं? दादाजी को?
0: हाँ बेटा, दादाजी को।
2: और दादाजी का भार?
0: बेटा, पुरुषों के लिए स्वावलंबी होना ही उचित है। दूसरों का भार बनना अपने पौरुष का अनादर करना है। यूं तो सबका भार भगवान पर है, परंतु मेरे लिए तो मेरे स्वामी ही भगवान हैं और तेरे गुरुजन ही।
2: तू ठीक कहती है, मैंने भी पढ़ा है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। इसी के साथ माँ आचार्य देवो भव भी है।
0: ठीक ही तो है बेटा, माता पिता जन्म देते हैं परंतु सफल उसे आचार्य देव ही बनाते हैं। हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए इसे बताते हैं वो।
2: सचमुच वे बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। आकाश तो मुझे भी गोल गोल दिखाई देता है, वे कहते हैं धरती भी गोल है। वे मुझको उसकी सब बातें बताएंगे।
0: क्यों नहीं बताएंगे बेटा?
2: परंतु मेरा एक सहपाठी उनसे ऐसा डरता है मानो वे देव ना होकर कोई दानव हो।
0: वह अपना पाठ पढ़ने में कच्चा होगा।
2: तूने कैसे जान लिया?
0: ये क्या कठिन है, ऐसे ही लड़के गुरुजनों के सामने जाने से जी चुराते हैं।
2: माँ, मैं तो एक दो बार सुनकर ही कोई बात नहीं भूलता, तो चाहे मेरी परीक्षा ले ले।
0: तेरे पूर्व जन्म का संस्कार है, तू उस जन्म में पंडित रहा होगा, इसलिए इस जन्म में तुझे सहज ही विद्या प्राप्त हो रही है।
2: ऐसी बात है?
0: हाँ बेटा, इस जन्म के अच्छे कर्म उस जन्म में साथ देते हैं।
2: और बुरे कर्म?
0: वो भी।
2: तो एक बार बुरे कर्म करने से फिर उनसे पिंड छूटना कठिन है?
0: यही बात है बेटा।
2: तो मैं आचार्य देव से कहकर बुरे कर्मों की एक तालिका बनवा लूंगा, जिससे उससे बचता रहूं।
0: अच्छा तो ये होगा कि तू अच्छे कर्मों की एक सूची बनवा ले।
2: अच्छी बातें तो वो पढ़ाते ही हैं।
0: तब उन्हीं को स्मरण रखना चाहिए, बुरी बातों का फल भी बुरा।
2: तब एक और मुझे अज्ञ भी बनना पड़ेगा, जैसे आज असमर्थ बनना पड़ा है।
0: सो कैसे?
2: आज व्यायाम शाला में कूदने के लिए बढ़ाकर एक नई सीमा निर्धारित की गई। मेरे साथियों में से कोई भी वहां तक नहीं उतर पाया। मैं कूद सकता था परंतु सबका मन रखने के लिए समर्थ होते हुए भी मैं वहां तक नहीं गया। कल ही मैंने पढ़ा था, आत्मना प्रतिकूलाणी परेशा समाचरे।
0: बड़ा अच्छा पाठ पढ़ा है बेटा तूने, परंतु उसका उपयोग ठीक नहीं हुआ। तेरा कोई साथी तुझसे अधिक योग्यता दिखावे तो क्या इसे अपने प्रतिकूल समझना चाहिए? नहीं, यह तो अपने लिए उत्साह की बात होनी चाहिए। हमारे सामने जो आदर्श हों, हमें उनसे आगे आने का उद्योग करना उचित है। इसी प्रकार हमारा उदाहरण देखकर दूसरों को भी साहस दिखाना चाहिए, नहीं तो वे भी उन्नति नहीं कर सकेंगे और तेरी बल बुद्धि भी विकसित ना हो सकेगी।
2: यह ले, मैं तृप्त हो गया। चित्रा, हाथ धुला और थाली ले जा।
0: परंतु तेरी भूल में ही सद्भावना थी, इससे संतोष ही है।
3: माँ बेटे बातों में ही भूल गए, थाली ठंडी हो रही है, उसका ध्यान ही नहीं।
0: सचमुच बेटा, अब भोजन कर।
2: भूख तो मुझे भी लगी थी पर तेरी बातों में भूल गया। चलो अच्छा ही हुआ, दादाजी को सुनाने के लिए बहुत सी बातें मिल गईं। तूने भी कहा था टहलने के पीछे कुछ विश्राम करके ही खाना ठीक होता है।
0: अच्छा अब खा, मैं चुप रहूंगी।
2: तब तो मैं खा ही नहीं सकूंगा।
0: जैसे तुझे रुचे वैसे ही सही।
2: आह, खीर बड़ी स्वादिष्ट है माँ, तू नहीं खाती तो चखकर ही देख।
0: बेटा मैं खीर नहीं खाती।
2: मोतीचूर?
0: वह भी नहीं।
2: दाल भात श्रीखंड पापड़ दही बड़े तुझे कुछ नहीं भाते?
0: बेटा मैं तो व्रत करती हूँ, फल और दूध ही मेरे लिए यथेष्ट हैं।
2: तू बड़ी अर्सज्ञ है, मैं दादाजी से कहूँगा।
0: नहीं बेटा, ऐसा ना करना, उन्हें व्यर्थ कष्ट होगा।
2: अच्छा तू उपवास क्यों रखती है?
0: मेरे धर्म का यह एक अंग है।
2: मेरे लिए यह धर्म कठिन पड़ेगा।
0: तुझे इसकी आवश्यकता नहीं।
2: क्यों?
0: धर्म की व्यवस्था भी अवस्था के अनुसार होती है, तू अभी छोटा है, बच्चे के व्रत उनकी माताएं ही पूरा किया करती हैं।
2: ऐसी बात है, तब तो बड़ी भूल हुई माँ।
0: अरे अभी खाया ही क्या है?
2: मैं कितना खाऊं, मैं क्या बड़ा हूँ?
0: इसी के लिए तू छोटा है, जैसी तेरी रुचि। आ दादाजी के यहाँ जाने योग्य वेशभूषा बना ले।
2: क्यों माँ, यह वस्त्र क्या बुरे हैं? तू फटे पुराने पहने और मैं स्वर्ण खचित पहनूं? मैं नहीं पहनूंगा। मेरे ही घूमने फिरने के और खेलने के वस्त्र क्या तेरे काशाय वस्त्रों से भी गए बीते हैं?
0: बेटा मैं काशाय वस्त्र पहने क्या तुझे भली नहीं जान पड़ती?
2: नहीं माँ, इनसे तेरा गौरव ही प्रकट होता है, फिर भी मन ना जाने कैसा हो जाता है कभी कभी। तू इतना कठिन तप क्यों करती है?
0: तप ही मनुष्यत्व है बेटा।
2: मैं कब तप करूंगा?
0: जब अपने पिता की भांति पिता बन जाएगा, मैं तो यही जानती हूँ, आगे तेरे पिता जाने।
2: माँ पिताजी की बात आने से तुझे कष्ट होता है, इसलिए मैं उनकी चर्चा ठीक नहीं समझता।
0: बेटा उन्हीं की चिंता करके मैं जी रही हूँ, तू इच्छानुसार जो कहना हो कहे।
2: अच्छा मेरे ये वस्त्र तुझे नहीं भाते? साधारण वस्त्रों में तेरा असाधारण महत्व देखकर मुझे भी रत्न खचित वेशभूषा छोड़कर साधारण वस्त्रों का भी लोभ होता है।
0: परंतु तेरी राजोचित वेशभूषा से तेरे दादाजी को संतोष होता है, उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे यह त्याग करना ही चाहिए।
2: त्याग सचमुच त्याग ही है। अच्छा पिता।
0: क्या कह बेटा क्या?
2: क्या पिताजी भी ऐसी ही वेशभूषा धारण करते थे?
0: क्यों नहीं,
2: परंतु तेरे सिरहाने जो चित्र रहता है वह तो साधु सन्यासी के रूप में ही है।
0: उसे मैंने उनकी अब की अवस्था की कल्पना करके बनाया है।
2: उनका कोई राजवेश का चित्र नहीं है?
0: क्यों ना होगा,
2: तो मुझे दिखा।
0: गौतमी है कोई चित्र?
4: वह अशोक उत्सव वाला,
0: वही ला।
2: माँ पहले तू भी ऐसे वस्त्र भूषण पहनती होगी।
0: बेटा कौन सा राज वैभव है जो तेरी माँ ने नहीं भोगा?
2: अब केवल माथे पर लाल लाल बिंदी ही तुझे अच्छी लगती है।
0: बेटा यही मेरे सुख सौभाग्य का चिन्ह है।
2: ऐसी ही बिंदी मुझे भी लगा दे।
0: तेरे लिए केशर कस्तूरी गोरोचन और चंदन ही उपयुक्त है, रोली और अक्षत पूजा के साथ लगाऊंगी।
4: कुमार लो यह देखो पिताजी का चित्र।
2: ओहो कहाँ ये राजसी वेश विन्यास और कहाँ वह सन्यास, परंतु मुख पर दोनों स्थानों में प्राय एक ही भाव है, अवस्था में कुछ अंतर है। माँ सौम्य और साधु भाव में कोई विशेष अंतर नहीं है?
0: कोई अंतर नहीं बेटा।
4: कुमार कैसा यह रूप?
2: मेरे जैसा। एक बार दादी जी मुझे देखकर चौंक पड़ी और बोली, मुझे ऐसा जान पड़ा मानो वही आ गया, मैंने भी दर्पण में अपना मुख देखा है। क्यों माँ?
0: बेटा तू ठीक कहता है। अरे मेरी आंखों में यह क्या आ पड़ा?
2: निकल गया माँ, तेरा आंचल तो भीग गया। अरे यह तो देख, पिता के पास यह कौन खड़ी है? वे उसे मरकत की माला उतार कर दे रहे हैं। वह हाथ बढ़ाकर भी संकुचित सी हो रही है, सिर नीचा है, फिर भी अधुखुली आंखें उन्हें निहार रही हैं। माँ यह कौन है?
4: कुमार तुम नहीं समझे?
2: अब ध्यान से देखकर समझ गया, माँ की छोटी बहन मेरी कौन होती है?
4: मौसी।
2: तो ये मेरी मौसी है। मुख माँ के मुख से मिलता है, इतना गौरव नहीं है परंतु सरलता ऐसी ही है। क्यों माँ, है ना मौसी ही?
4: कुमार माँ की आंखें अभी भी किरकिरा रही हैं। मैं तुम्हें बता दूं यह इन्हीं का चित्र है।
2: ओह इतना परिवर्तन।
0: बेटा बुरा या भला?
2: माँ यह मैं पहले ही कह चुका हूँ, तेरे इस परिवर्तन में तेरा गौरव ही प्रकट हुआ है। यह मूर्ति सुख में भी संकुचित सी है और तू दुखहीनी होकर भी गौरवशाली। यह पवित्र है, तू पावन। क्या इस अवस्था के परिवर्तन पर तुझे खेद है?
0: बेटा, तुझे संतोष है तो मुझे कोई खेद नहीं।
2: बस पिताजी आ जाएं तो मुझे पूरा संतोष है।
0: तूने मेरे मन की बात कह दी बेटा।
2: तब आज मुझे वही माला पहना दे जो पिताजी ने तुझे दी थी।
0: मैंने उसे तेरी बहू के लिए रख छोड़ा था। यह भी अच्छा है, उसे वह तेरे ही हाथों पाएगी। गौतमी, ले आ।
2: मेरी बहू की तुझे बड़ी चिंता है, इससे मुझे ईर्ष्या होती है।
0: क्यों बेटा?
2: वह आकर मेरे और तेरे बीच में खड़ी हो जाएगी, इससे मैं सहन नहीं कर सकता।
0: मेरी दो जांघें हैं, एक पर तू बैठेगा, दूसरी पर वह बैठेगी।
2: परंतु जिस जांघ पर मैं बैठना चाहूँगा उसी पर वह बैठना चाहेगी तो झगड़ा ना मचेगा।
0: मैं उसे समझा लूंगी।
2: काहे से समझा लेगी, मुंह तो तेरे एक ही है।
0: इतना बड़ा स्वार्थी होगा तू।
2: इसमें स्वार्थ की क्या बात है माँ, यह तो स्वतत्व की बात है।
4: परंतु कुमार, अधिकार क्या अकेले ही भोगा जाता है?
2: तुम भी माँ की ओर मिल गई।
4: कुमार, मैं तुम्हारी ओर हूँ, समय आवे तब देख लेना, अभी से क्यों झगड़ा। लो यह मरकत की माला।
2: अरे यह तो मुझे बड़ी बैठी, उतार कर माँ एक बार तू इसे पहन।
0: बेटा मैं?
2: इस हंसी से तो तेरा रोना ही भला, पहन माँ मैं देखूंगा।
4: देवी, माथे पर सिंदूर बिंदी धारण करती हुई किस विचार से तुम कुमार की इच्छा पूरी करने में असमंजस करती हो? जो ऐसा करने से पूर्व रोकता है वह धर्म नहीं अधर्म है।
0: आहा, यह राजयोग है। चित्रा, दर्पण तो लाना। रहने दे बेटा, तू ही मेरा दर्पण है। अरे विचित्रा, क्या लाई?
4: जय हो देवी, महाराज ने कुमार के लिए यह वीणा भेजी है और पूछा है कि वे कब तक आते हैं।
2: वे क्या कर रहे हैं?
4: कुमार, महाराज अभी संध्या करने के लिए उठे हैं।
2: जब तक वे संध्या से निवृत्त हो मैं पहुंचता हूँ।
4: जो आज्ञा।
0: अभी आपने सुना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का वाचन। आज के भाग में आपने सुना यशोधरा, राहुल, यशोधरा की सखियां गंगा गौतमी और यशोधरा की दासियां चित्रा विचित्रा के संवाद। आज ये भाग यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, धनांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और कलाकार थे मनीषा चतुर्वेदी, वर्षा सिंह और वत्सला चौबे। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: काव्य कुंजन में अभी आप सुन रहे थे यशोधरा का वाचन। कलाकार थे मनीषा चतुर्वेदी, वर्षा सिंह, विकास अवस्थी और वत्सला चौबे। पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको बता देते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। अक्षय निधि कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:10 से। भक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा, समय 7:20 से।

वतन का राग ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 8 बजे से। 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम सुनो कहानी। उस्ताद अली अकबर खां पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी सुनेगा सुबह 9 बजे से। विश्व कछुआ दिवस पर सुनेगा हमारा विशेष कार्यक्रम 9:30 से। 10 बजे आप सुनेंगे परिक्रमा। 10:30 पर सुनेगा कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। 11:00 पंत की जयंती पर केंद्रित कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार सुनेगा 11 बजे से। 11:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 4 कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ₹90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।